100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, वैशाख मास की 26वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 16 मई सन 2026 है। प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

सुमंगल सुप्रभात, नमस्कार। 100.7 FM रेनबो के सभी श्रोताओं का आज की इस पावन सुबह में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे सूर्य का प्रकाश निरंतर संसार को आलोकित करता है, वैसे ही हमारा मन हर क्षण ईश्वर से जुड़ा रहता है। और जब मन में शुभ विचार और मुख पर प्रभु का नाम हो तो पूरा दिन अपने आप ही मंगलमय बन जाता है। आज वट सावित्री पूजा का ये पावन दिन भी हमें याद दिलाता है कि सच्ची साधना और समर्पण का भाव हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज इसी विश्वास, शक्ति और श्रद्धा भाव के साथ आज के कार्यक्रम पुष्पांजलि का श्री गणेश करते हैं। मैं हूं आपकी साथी आयुषी। तो आइए प्रथम पुष्प अर्पित करते हैं विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति श्री गणेश की वंदना में।

नीलकंठ महादेव जिनकी जटाओं के विस्तार में आदिशक्ति गंगा का वेग समाया है और जिनके मस्तक से ही इस धरा को मुक्ति की शीतल धारा मिली है, शांत कैलाश के स्वामी महादेव की करुणा मात्र से ही जीवन का हर संताप धुल जाता है।

काल के भी काल महाकाल, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता है और जिनके डमरू की नाधी सृष्टि का संगीत है। तो चलिए मृत्युंजय शिव के चरणों में हम मिलकर शांति की प्रार्थना करते हैं।

मन में शिव, हृदय में राम, सकल गुण निधान और मर्यादा के साक्षात विग्रह प्रभु श्री राम, जिनका शांत मुखमंडल और हाथ में सुशोभित कोदंड धनुष अधर्म के विनाश का प्रतीक है, जो राजा होकर भी तपस्वी की भांति धर्म की रक्षा हेतु वनों में विचरे, उन्हीं रघुकुल शिरोमणि की चरणों में वंदना करते हैं।

अंजनी पुत्र और राम के परम दूत, जिनके रोम रोम में भक्ति का वास है और जिनकी अटूट शक्ति के आगे पर्वत भी शीश झुकाते हैं, तो आइए उनके चरणों में हम सब मिलकर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं।

ज्ञान और गुणों के सागर, जिनका मुखमंडल बाल सूर्य की आभा से दमकता है और जिनकी कृपा बुद्धि और बल का अनोखा संगम कराती है। बजरंग बली की यही जागृत ऊर्जा हमें अजय होने का साहस देती है।

जो साक्षात चैतन्य का स्वरूप है और जिनकी कृपा ही इस जीवन का अंतिम सत्य है। हरि का सानिध्य उस अमृत धारा के समान है जिसकी लय में ढलते ही जीवन का हर संघर्ष एक उत्सव बन जाता है।

देवी माँ आदिशक्ति माँ भवानी जो ममता का आंचल भी है और अन्याय के विरुद्ध सबसे बड़ी ढाल भी, उनकी जागृत चेतना ही हम सब के भीतर अदम्य साहस और आत्मविश्वास बनकर प्रवाहित होती है। तो आइए माँ के इसी स्वरूप का हम सब मिलकर जय घोष करते हैं।

अब पुष्पांजलि कार्यक्रम को यही विराम देने का समय है। इन भक्ति भरे स्वरों की मधुरता आपके साथ बनी रहे, मां अंबे की कृपा आपके साथ बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे यानी अपनी साथी आयुषी को पुष्पांजलि से अनुमति दीजिए। पर आप कहीं मत जाइए, क्योंकि 100.7 FM रेनबो पर शुरू की ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। न्यूज ब्रेक के उस पार सदाबहार गीतों के नगमे लेकर मैं आयुषी फिर जुड़ूंगी आपके साथ। अभी महिमावान अंबे का स्मरण करते हैं और पुष्पांजलि से आपकी साथी आयुषी अनुमति लेती है।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर के ताल नादौर में स्थित ये इंटरनेशनल स्टेडियम 392 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 63 करोड़ 39 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। 46 एकड़ क्षेत्रफल में बनने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ में आयोजित एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 में कल देश भर से 50 से अधिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एआई नीति और टेक्नोलॉजी विजन पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकारी कार्य प्रणालियों में एआई ट्रांसफॉर्मेशन का राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये राज्य की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को नई गति देगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक नोटिस जारी किया है। CBSE ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वे एक संरचित समीक्षा प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। CBSE ने सूचित किया कि छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपये है। इस बीच

समस्याओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन 26 से 29 मई के बीच जमा किए जा सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस के कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

7:04 हो गए हैं और देखिए किस तरह अपना वादा निभाने के लिए आ गई हूँ मैं, आपकी दोस्त आयुषी, फिर से आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम सदाबहार गीत। अब देखिए वक्त गुजर जाता है पर कुछ यादें और कुछ नगमे कभी पुराने नहीं होते, और वो जमाना जब आवाजों में एक ठहराव था, लफ्जों में गहरी शिद्दत, और आज हम उन्हीं यादों के झरोखों को फिर से खोलने जा रहे हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं आपके साथ आयुषी, और यहां पर है सुरों की चाशनी और बीते हुए दौर की हसीन कहानियां।

रूठना अगर प्यार की अदा है ना, तो मनाना उसकी सबसे खूबसूरत रस्म। कुछ रिश्तों में नाराजगी भी मुस्कुराने की वजह बन जाती है, और फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट और आंखों की प्यारी सी शरारत बस कब एक बना देती है ना।

दिल जब किसी का हो जाए तो फिर रास्तों की परवाह कहाँ रहती है। हर मोड़ पर बस हमसफर का ख्याल रहता है, निगाहें और दिल बस इसी इंतजार में रहती हैं कि कहीं वो टकरा जाएं और दिल को सुकून आ जाए।

महफिल में चेहरों की कमी तो नहीं होती, मगर दिल अक्सर उसी को चुनता है जो बिना कुछ कहे अपना सा लगने लगता है, जिसकी मौजूदगी से ही जिंदगी और हसीन महसूस होने लगे। बस वही तो होता है हर वक्त निगाह में।

वो वक्त ही कुछ और था जब कहने को कोई सामने ना हो तो खतों में दिल की बातें कह दिया करा जाता था, और वो खत पहुंचाने का, खत को छुपाने का और बार बार पढ़ने का अपना ही एक मजा था ना।

जब एक मुलाकात काफी ना हो तो ऐसा लगता है कि सपनों में भी मिलना पड़ता है और वो ख्वाब हकीकत बन जाए। दिल बस यही सोचता है और चाहता है फिर से रात हो और फिर सपनों में मुलाकात हो।

अब देखिए ना, 7:40 हो रहे हैं और सदाबहार नगमे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ। और देखिए, मंजिलें कई होती हैं प्यार में, और प्यार का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन भाई वादा करना पड़ता है और निभाने के लिए हजारों जद्दोजहद करनी पड़ती है, पर प्यार निभाना पड़ता है।

7:43 सदाबहार गीत सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ और हम बात कर रहे हैं वादों की, मोहब्बतों की और तमाम सपने जो हमने देखे हैं। और अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ सपने यानी मोहब्बत के सपने जब हकीकत बन जाते हैं तो भी हमें और कोई नज़ारा रास नहीं होता।

अक्सर दिल की दिल से बात हो जाती है, लेकिन जब दिल मिल जाता है ना, तो कभी कभी बिना लफ्ज की भी बात हो जाती है, आंखों आंखों में, इशारों इशारों में।

बहुत सी बातें हैं हमारे पास भी आपके पास भी, लेकिन सदाबहार नगमों से अब विदा लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बहुत सारी और भी बातें कहने के लिए हमें आपसे न्यूज़ ब्रेक के उस पार गुड मॉर्निंग लखनऊ में भी तो मिलना है, और मेरे साथ होंगे एक और बहुत खास साथी और उनके साथ करेंगे और भी बहुत सारी बातें। अब आप ये मत कहिएगा कि अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं, क्योंकि हमारा भी नहीं भरा। लेकिन कहते हैं ना कि एक चीज खत्म होगी तभी तो दूसरी प्यारी सी चीज शुरू होगी, और देखिए किस तरह आपको बहुत अच्छा लगेगा वो भी सुनकर। तो फिलहाल आयुषी को दीजिए सदाबहार गीत से इजाजत, और आपका दिन बना रहे हैप्पी हैप्पी।

0: आगे के जिंदगी।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है।

0: समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस

0: पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा।

0: खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
3: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
2: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
3: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
2: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
3: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: आठ बज के 17 मिनट और देखिए गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर आपके दो दोस्त हाजिर हो चुके हैं। भाई देखिए, सदाबहार और पुष्पांजलि जब कर रहे थे तब भी आप बने हुए थे और मैंने कहा था एक प्यारे से दोस्त को लेकर हाजिर होंगी मैं और उनकी प्यारी सी आवाज आप खुद सुनेंगे।
5: हाँ जी, मैं हूँ आपके साथ विनय यादव और आयशी। गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग विनय।
5: कैसी हैं आप?
4: मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप कैसे हैं।
5: हम बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मस्त।
4: और बाहर मौसम कैसा?
5: बाहर का मौसम ऐसा है कि बस हल्की हल्की धूप है, हल्की हल्की हवा बह रही है और आनंद ही आनंद है।
4: भाई देखिए, मैंने तो सुबह सुबह किसी तरह चाय को फट से मुंह में डाला और यहाँ चली आई, लेकिन आप क्या चाय वाय पी के आए आराम से, चुस्की वुस्की लेके?
5: नहीं, इतना आराम से तो हम नहीं करके आए, चाय वाय की व्यवस्था।

0: हाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए। हमें पता था कि आप जो है बड़ी मेहनत करके आई हैं सुबह और प्रोग्राम कर रही हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हैं आप, तो हमने कहा कि चले ठीक है चलते हैं। इसी के लिए कुछ चाय वाय की व्यवस्था करते हैं और भी तमाम चीजें हमारे साथ हैं और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक हमारे साथ हैं और
1: बस मुझे जिस चीज का इंतजार था वो हो गया तो सुन लेते हैं।

0: स्टे पॉजिटिव विद आज का मॉर्निंग मंत्र.
1: अब देखिए 8:24 हो रहे हैं विनय, और गुड मॉर्निंग लखनऊ में मंत्र बताने का वक्त हो गया है, क्योंकि कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, यानी बढ़िया सी नोट पर शुरुआत हो जाए तो पूरा दिन ऐसा लगता है मुकम्मल सा हो गया.
2: तो आज का मंत्र क्या है? हमने देखा ना, आप जब मंत्र की बात कर रही है तो बिल्कुल खो जा रही है मंत्र में.
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोटिवेट हो गई हूँ मंत्र पढ़कर ही. तो हम बता कहते हैं अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखना पड़ता है.
2: क्या बात है! और ये मंत्र हमें लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सपने देखते हैं बंद आंखों से या खुली आंखों से, तो उसके लिए जब मेहनत करने की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या अभी शाम को कर लेंगे, सुबह नहीं कर पाए दोपहर में कर लेंगे. वो चीज जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं से पीछे पीछे पीछे करती रहती है. तो जब आप सपने देखते हैं तो उन सपनों को अपने हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, और जिस तरह सूरज तपता है उस तरह तपना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है.
1: बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही. और भाई मुझे लगता है इतनी प्यारी बात आपने कह दी है, तो इतना ही प्यारा सा एक गाना भी सुना दीजिए.
2: हाँ बिल्कुल, सॉन्ग तैयार है? आप तैयार हैं?
1: बिल्कुल.

0: 100.7 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। 8:31 और 10 सेकंड्स का वक्त हो चला है। आप हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ में आज विनय यादव और
1: और मेरे साथ भी आयुषी हूँ मैं। हाँ। आपके साथ सुबह से बनी हुई हूँ, आपका साथ निभा रही हूँ। और भाई मैं और विनय आपके लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आए हैं, क्योंकि भाई जान है तो जहान है, और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो मस्त रहेंगे।
0: तो आयुषी, हमने देखा ना बहुत बड़ा पिटारा आपके पास है, और उस पिटारे में क्या क्या रखा है आपने? अभी तो निकाला आपने, मंत्र निकाला और जबरदस्त निकाला, इस बार क्या है?
1: देखिए, इस बार सतर्क करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज 16 मई है और भारत में मनाया जा रहा है नेशनल डेंगू डे।
0: अच्छा जी।
1: देखिए, डेंगू एक ऐसी बीमारी है ना जो भाई बहुत छोटा सा मच्छर होता है, और आपको कब वो अस्पताल पहुंचा सकता है, बीमार कर सकता है और आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस इसीलिए लक्षणों और बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक करने का ये एक तरीका है इस डे को ऑब्जर्व करने के लिए।
0: हाँ, और आशी, जैसा कि आपने बताया ना कि बहुत छोटा मच्छर है, लेकिन अभी देखा है हमने कि बहुत मच्छर जो छोटा है ना वो बहुत बड़ा हो गया, मच्छी हो गया है। और जब भी आते हैं ना तो दूर से ही पता चलता है भैया मच्छर आ रहा है हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, इसी को कहते हैं तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
0: बड़ा धमाका, बचना है। और कैसे बचना है और कैसे हमें चीजों से जागरूक रहना है वो आप बता।
1: हाँ, देखिए, एक चीज पहले बता दूं कि एडिस एजिप्टी नाम का ये मच्छर होता है, और ये डेंगू फैलाने के लिए जाना जाता है। और भाई ये आप जानते हैं कि साफ और जो ठहरा पानी होता है ना उसमें जरूर ये पनपने लगता है, और अगर आपके इर्द गिर्द ये ठहरा पानी दिखे तो आप भाई सतर्क हो जाइए, क्योंकि

0: लक्षण होते तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी और न जाने क्या क्या, और आप हो जाते एकदम परेशान, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, क्या बताएं?
1: प्लेटलेट्स गिरने की जो बात है ना, तो देखा जाता है कि ऐसे भी अगर फीवर आया तो प्लेटलेट्स गिरी, लेकिन लोग उसके प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। उसे वीकनेस है, थोड़ा सा बुखार आया है तो चलो ऐसे ही दवाई खा लेते हैं, लेकिन वो जो चीज है ना, वो धीरे धीरे आपको कमजोर कर रही होती है और आप बीमार होते जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आपके सामने होती है कि आप जब कुछ कर नहीं सकते हैं, अब आपको लगता है कि नहीं अब हमें डॉक्टर का ही सहारा है, तब आप जाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा देर हो जाती है, तो पहले देख लेना चाहिए।
0: और कई बार ये तो जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है वो स्वोपचार यानी सेल्फ मेडिकेशन के भी खतरे हैं, हम अपने डॉक्टर खुद बनने लगते हैं।
1: बिल्कुल बनने लगते हैं, तो ऐसे में आपको जब लगे कि हमें कमजोरी है, फीवर है, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसके इलाज में आगे बढ़ना चाहिए।
0: हाँ, इसी के साथ भाई देखिए, एक जरूरी बात जो स्वास्थ्य विभाग जागरूक करने के लिए बार बार कह रहा है कि साफ सफाई रखिए, पानी ना जमा होने दीजिए, और इससे जरूरत एक हमारी ये बनती है कि हम आपको ये भी बताएं कि आज

0: बीमार होते जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आपके सामने होती है कि आप जब कुछ कर नहीं सकते हैं, अब आपको लगता है कि नहीं अब हमें डॉक्टर का ही सहारा है, तब आप जाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा देर हो जाती है, तो पहले देख लेना चाहिए।
1: और कई बार ये तो जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है वो स्वोपचार यानी सेल्फ मेडिकेशन के भी खतरे हैं, हम अपने डॉक्टर खुद बनने लगते हैं।
0: बिल्कुल बनने लगते हैं, तो ऐसे में आपको जब लगे कि हमें कमजोरी है, फीवर है, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसके इलाज में आगे बढ़ना चाहिए।
1: हाँ, इसी के साथ भाई देखिए, एक जरूरी बात जो स्वास्थ्य विभाग जागरूक करने के लिए बार बार कह रहा है कि साफ सफाई रखिए, पानी ना जमा होने दीजिए, और इससे जरूरत एक हमारी ये बनती है कि हम आपको ये भी बताएं कि आज का मुद्दा क्या है, लेकिन उसके पहले जरा सुनिए तो।
0: हाँ जी।
1: ये कह रहे हैं कि मुद्दा बता देते हैं।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, मुद्दा आज का पूरे समाज का।
1: तो देखिए विनय, मुद्दे पे बात आज जरूर होनी है, और मुद्दा यही है कि अच्छा, आपने अपने घर पे तो सफाई कर ली, तो क्या जिम्मेदारी खत्म? और अगर बगल के घरों में पानी जमा हो रहा है तो क्या मच्छर उड़कर आपके यहाँ नहीं आएगा? तो बस मुद्दा यही है कि सफाई अपने घर की होनी चाहिए, या फिर इर्द गिर्द भी हमें आवाज उठानी चाहिए अगर मोहल्ले में सफाई ना हो या पड़ोसी के घर पे सफाई ना हो।
0: आयुषी, सफाई ना चारों तरफ होनी चाहिए, और जब आपको लगे कि नहीं अब जो है मुझे लगता है कि कुछ ऐसा वैसा दिख रहा है, या आप मोहल्ले में आपको लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है, तो अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं, कभी कभी आलस तो अलग की बात है, लेकिन लगता है कि यार हम अगर खुद से करेंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो किसी अपने जो आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, उनको बुलाकर, उनसे मंत्रणा करके आप चीजों को कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। हाँ, और आयशी,
1: देखिए ये मुद्दा आपको अगर समझ में आ गया है तो बस एक बार क्रिस्पली रिपीट कर दे रही हूँ कि सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ आपके अपने घर तक की है, या पड़ोस में भी अगर सफाई ना हो या मोहल्ले में सफाई ना हो तो आप आवाज उठाते हैं या नहीं, और ये हमें ईमेल करके बताना है आप।
0: हाँ, और हमारा ईमेल एड्रेस तो आप जानते हैं, fmakashwalilakhnow@gmail.com पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आज के मुद्दे पर आप हमें बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है और आप करते क्या है इसके लिए, है ना?
1: बिल्कुल। तो इसी के साथ विनय, मुझे लगता है कि भाई इंटरटेनमेंट तो हम कर ही रहे हैं, साथ में इंफोटेनमेंट भी करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट।
0: हाँ जी, बिल्कुल रेडी है।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: हाँ जी दोस्तों, ये है धड़कन लखनऊ की। 8:41 का वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज अविनय और आयुषी के साथ में। आयुषी, क्या है पिटारे में आपके?
2: भाई देखिए, मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ और कल से ही खुश हूँ, क्योंकि भाई जब मन की जो लखनऊ का नाम आए और कहीं पे जीत सुनाई पड़ जाए तो मेरा दिल एकदम बल्ले बल्ले करने लगता है।
1: क्या बात है, हमें लगता है कि कल का आपने LSG और CSK का मैच देख लिया है। टीवी पे देखा पहले ये बताइए।
2: भाई मैंने टीवी पे देखा, पॉपकॉर्न खाते हुए देखा।
1: मैं आपको बताऊं, मैंने स्टेडियम में देखा।
2: ओहो, फिर तो आप बहुत सारी न्यूज लेके आए होंगे पिटारे में।
1: बहुत सारी न्यूज की बात नहीं है, देखिए वो जो मैच है ना, वैसे तो सभी पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में धड़कता है क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और जब लखनऊ में मैच हो और लखनऊ सुपर जायंट्स और CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला, तो फिर मजे ही क्या है। और पता है जब मैच होता है ना, तो देखते ही बनता है जो जुनून होता है, जो पागलपन होता है हम फैंस के बीच में, वो देखने लायक होता है। और कल का मैच लखनऊ जीती। पहले चेन्नई ने बल्लेबाजी की 187 रन का स्कोर खड़ा किया। संजू सैमसन जो बहुत मेरे फेवरेट और ऋतुराज गायकवाड़, उरिल पटेल, कार्तिक शर्मा, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन शिवम दुबे साहब ने 16 गेंदों में 32 रन जब लगा दिए ना, 187 का स्कोर, मुझे लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि लखनऊ सुपर जायंट फिर धक धक हो जाए। लेकिन उसके बाद आयशी आपको बताएं क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है शॉन मॉर्स ने, और आपको बताएं मिचेल मॉर्स ने। मिचेल मॉर्स जो है ना, मेरे पहले से बहुत फेवरेट रहे हैं। और आपको बताऊं कि मैंने ये शॉन मॉर्स का नाम क्यों लिया, ये मिचेल मॉर्स के बड़े भाई हैं और ये भी मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और ये पंजाब से ये खेले हैं और बहुत मैचों में पंजाब को जीत दिलाई है।
2: भाई ये जो क्रिकेट की बातें हो रही हैं, अगर आप विनय को सुन पा रहे हैं तो, और उनकी अगर आवाज में आपको बहुत सारा एक्साइटमेंट और खुशी झलक रही है, तो वो सच है, क्योंकि मैं उनकी आंखों और उनके

0: चेहरे पे देख पा रही हूँ।
1: 38 गेंदों में 90 रन। मिचेल मार्श बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है और उनके भाई भी इसी तरह खेला करते थे। अभी पिछले 2-3 सीजन पहले ही वो उन्होंने पंजाब को जीत दिलाई है और बहुत देखिए एक्साइटमेंट अंदर गई क्योंकि वो मेरे बहुत जबरदस्त प्लेयर है। उनकी जो कवर ड्राइव है और जो सीधा स्ट्रोक खेलते थे वो बहुत जबरदस्त। उसके अलावा जॉस इंग्लिस ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। निकोलस पूरन ने तो क्या 17 गेंदे 32 रन। उनका तो बस देखते ही बनता है कि क्या खेल रहे हैं। खैर हम लोग तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं यहाँ पर और कल कर चुके हैं और आई होप कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन्होंने मैच को जरूर एंजॉय किया होगा।
0: जिया है आपकी तरह जिया है।
1: हाँ तो चलिए एक ट्रैक है और वो ट्रैक हम आप तक पहुंचाते हैं। आप एंजॉय कर रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। आयशी और विनय है आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
1: बज के 48 मिनट और गुड मॉर्निंग लखनऊ पर आपके तो दोस्त बने हुए हैं विनय और आयुषी आपके साथ है। और विनय भाई हम अकेले नहीं है, यहाँ हमारे साथ बहुत सारे हमारे

0: दोस्त है उसका परिचय हमें मिल जाता है जब हम ईमेल बॉक्स खोलते हैं भाई।
1: हाँ, दोस्त आते रहते हैं।
0: हाँ, बड़ा अच्छा लगता है।
1: त्याँ त्याँ करते हो।
0: अब देखिए, मैं सुबह से यहाँ पर हूँ और मेरे साथ कितने सारे दोस्त बने रहे, ब्रिजेश सिंह, दीपू उटहुआ कैसरगंज बहराइच से, और भाई पुष्पांजलि भी सुना उन्होंने, सदाबहार गीत भी सुना और बड़ा अच्छा लगा उन्हें ये सुनकर, तो मुझे भी अच्छा लगा ये सुनकर।
1: हाँ बिल्कुल।
0: इसी के साथ बस मैं नाम ले दूं, विजयपाल यादव लाल हुआ लखीमपुर खीरी से, जिला खीरी से, और इन्होंने भी हमारा सुबह से कार्यक्रम सुना, और राजेश वर्मा जी भी, और बहुत सारे दोस्त ने। और राजेश वर्मा जी ने कहां से लिखा, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से। तो भाई ये मेरे जो दोस्त सुबह से इंतजार कर रहे थे कि नाम लूं, तो मैंने ये पहले ले दिया। अब हम मुद्दे पे आएंगे।
1: हाँ जी, मुद्दे पे आएंगे। और मुद्दा आज का क्या है?
0: देखिए, मुद्दा तो यही है कि क्या आप सिर्फ अपने घर की सामने की सफाई से या अपने घर की सफाई से संतुष्ट रहते हैं, या इर्द गिर्द मोहल्ले पड़ोसियों के यहाँ सफाई ना हो तो आवाज भी उठाते हैं?
1: बिल्कुल, आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर, और जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी राय दे सकते हैं हमको। और उसके अलावा कुछ बहुत सारे मेल्स हैं ऐसे ही, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहेंगे कि शिकायत करते हैं ना लिसनर्स हमारे। हाँ, और देखिए मेल आया है मोनू कुमार जी का, अश्विन मैम नमस्ते, सदाबहार गीत बहुत अच्छे लगे आपके, और उसके अलावा इन्होंने गुड मॉर्निंग गुनगुन गुनगुन करते हुए लिख रहे, और भी मेल्स हैं जिसमें मोनू कुमार जी ने मेल किया है, और उसके अलावा घनश्याम जी ने मेल किया है, मोनू सेठ जी ने मेल किया, ऐसी जी और विनय भैया नमस्ते जी, नमस्ते, और बड़ा ही किया आपने सुबह के प्रोग्राम में, हमें सुनकर इन्हें अच्छा लग रहा है जी, आप ये बता रहे हैं तो हमें भी अच्छा लग रहा है। और घनश्याम जी ने मेल किया है, लिखते हैं एडवोकेट घनश्याम सिंह नारायण नगर ई फैजाबाद रोड लखनऊ, आयुषी जी और विनय जी को नमस्ते जी, नमस्ते, और हृदय से निकली बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को श्रद्धापूर्वक सुप्रभात, आप लोग कैसे हैं जी? हम ऐसी कैसी हैं?
0: बहुत अच्छी हूँ, अब तो मेल्स पढ़ के और भी खुश हो गई हूँ।
1: हाँ, और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, देखिए टेम्परेचर तो अब आज 16 मई हो गया है, तो टेम्परेचर तो ऐसा होना ही है घनश्याम जी, और अगर टेम्परेचर देखिए, मई का महीना जेठ का महीना ये टेम्परेचर का ही महीना होता है, और अगर टेम्परेचर नहीं होगा ना तो भी हमारी जो नेचर है वो थोड़ा सा दिक्कत करेगी। मेल
0: देखिए, इसी के साथ राजेश कुमार जी क्या कह रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमें भूल गए, ऐसा नहीं है। शोध के छात्र हैं राजेश कुमार जी, और बहुत दिनों बाद जीएमएल सुन रहे हैं। अरे, सुना करिए आप जीएमएल।
1: और उसके अलावा राम मोहन गुप्ता जी ने मेल लिखा है, लिखते हैं सूरज की तरह चमकने के लिए तपना होगा भाई, आयुषी विनय ने क्या खूब सफलता राह है सुझाई, सच है कुछ भी पाने से पहले करना होता है बहुत नियम संयम सोच सकारात्मक संग बढ़ना अथक पूर्ण विश्वास लगन से निज लक्ष्य प्राप्ति के प्रयत्न पहुंचने को अपनी मंजिल तक करने पड़ते हैं जतन तब कहीं जाकर मिलती सफलता बहुत ही भाती है मिली आत्म शांति खुशी जीवन थाती बन जाती है इसलिए सदा याद रखें गाय स्वयं दूध नहीं देती दूध की हर बूंद के लिए मशक्कत करनी होती है राम मोहन गुप्ता और लखीमपुर खीरी से आपने बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है और जो लाइन में आपने लिखा है ना वो बिल्कुल दिल को छू गया है
0: पर मैं ये कहूंगी कि दिल को तो छू गया बहुत अच्छा लिखा पर मुद्दे पर नहीं लिखा पर कोई बात नहीं हमें इंतजार रहेगा कि आप मुद्दे पर भी
1: मुद्दे पर नहीं लिखा लेकिन मंत्र आपने जो मंत्र दिया था ना हाँ। उस मंत्र पे लिखा है
0: अरे ये बहुत प्यारी बात है बहुत अच्छी बात है हाँ। देखिए ताले बंसारी जी राजा कटरा वारा बंकी से हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं पर मुद्दे पर इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा कोई बात नहीं हमें इंतजार रहेगा अभी तो बहुत टाइम बाकी है कोई बात नहीं
1: और वकील अहमद जी ने मेल किया है गुड मॉर्निंग सर आप लोगों को भी और लिखते हैं कि हम अपने घर की आसपास की सफाई रखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं इस समय हम आम की बाग में हैं वकील अहमद मंसूरी कटका हथौरी जिला सीतापुर से आपने हमें मेल किया है देखिए जो आम के बाग होते हैं ना वो जनवरी फरवरी से ही हम स्टार्ट कर देते हैं उसमें तमाम तरह की दवाइयाँ डालना और क्योंकि बौर अच्छा है हमारे तो उसमें जो है तमाम तरीके के केमिकल भी पड़ते हैं तो जहाँ आम के बाग होते हैं वहाँ पर देखा जाता है कि बहुत कम मच्छर होते हैं
0: अच्छा
1: हाँ वहाँ पे आम के बागों में तो होते हैं लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं ना कहते हैं कि यार मच्छर थोड़ा कम ही है
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई रहती है वो लोग तरह तरह की दवाइयाँ डालते हैं

0: बॉल अच्छे से आए, पेड़ हमारा अच्छा से हो, अच्छी फसल हमारी हो, तो मच्छर कम रहते हैं इसलिए। लेकिन उसके अलावा जहाँ पर भी हम रहते हैं, कहीं पर भी हम रहते हैं, तो साफ सफाई और तमाम सारी चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। ऐसे एक ट्रैक बहुत देर से उछल रहा है,
1: अरे हाँ। फिर हम ऐसा क्यों होने दे उसके साथ, बजा क्यों ना दे।
0: वो कह रहा है कि नहीं मुझे आने दीजिए, अब बहुत देर हो गई भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

8:58 हो रहे हैं और देखिए विनय जल्दी जल्दी से हमें इस फर्स्ट हाफ को करना पड़ेगा वाइंड अप, क्योंकि बहुत सारी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन बातें गाने लेकर हमें उस पार भी तो आना

0: उस बीच पे न्यूज ब्रेक भी तो है
1: हां जी न्यूज ब्रेक के उस पार हम मुलाकात करेंगे आपसे आयशी और विनय लगातार रहेंगे अभी एक घंटे आपके साथ तो बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए आपके दिल की आवाज 107 एफएम रेनबो
2: की बुकिंग
3: आकर ज्ञापन देना सुलभ और सस्ता
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर
3: 8700001 4242

नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। पेपर लीक के बाद रद्द हुई नीट यूजी की परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा की खबर आज सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि छात्रों की उलझन खत्म, 21 जून को दोबारा होगा नीट यूजी। हिंदुस्तान ने लिखा है नीट यूजी 21 जून को, अगले वर्ष से ऑनलाइन। नवभारत टाइम्स ने खबर पर शीर्षक दिया है रद्द हुआ नीट यूजी, अब 21 जून को होगा, अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगा ये एग्जाम। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है केमिस्ट्री का प्रोफेसर गिरफ्तार, सीबीआई का दावा पेपर लीक का मास्टरमाइंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे की खबर आज अधिकतर अखबारों की हेडलाइन बनी है। दैनिक जागरण ने लिखा है भारत यूएई पेट्रो उत्पादों का रणनीतिक भंडार बनाएंगे, 7 समझौतों पर मुहर। अमर उजाला ने खबर पर शीर्षक दिया है भारत में यूएई करेगा 47,500 करोड़ रुपए का निवेश, तेल गैस पर नए समझौते। स्वतंत्र भारत लिखता है यूएई पर हमले मंजूर नहीं मोदी। अब अबू धाबी पहुंचकर प्रधानमंत्री ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की खबर भी आज समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर प्रमुखता से छपी है। हिंदुस्तान ने लिखा है पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए की वृद्धि, उपशीर्षक है कच्चे तेल के कीमतों में बढ़ोतरी के चलते फैसला, सीएनजी भी 2 रुपए बढ़ी। नवभारत टाइम्स लिखता है पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर, सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी, आगे भी बढ़ेंगे दाम, अब भी पेट्रोल में 11 रुपए का घाटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के शुभारंभ की खबर भी आज अखबारों की हेडलाइन बनी है। नवभारत टाइम्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है सही वोट से सुनिश्चित होगा सुशासन। अमृत विचार ने प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मानकों का पालन न करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की खबर को पहले पर जगह दी है। समाचार पत्र लिखता है आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 100 निजी अस्पतालों को भुगतान रोका, 100 अन्य के योजना से किया निलंबित। मध्य प्रदेश में भोजशाला को लेकर दिए गए हाईकोर्ट के निर्णय की खबर भी आज सभी समाचार पत्रों की हेडलाइन बनी है। दैनिक जागरण ने लिखा है मंदिर ही है भोजशाला हाईकोर्ट। हिंदुस्तान लिखता है धार में भोजशाला, वाग देवी का मंदिर हाईकोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5

0: ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: के 3 मिनट हो गए हैं और देखिए आपके साथ आपके जो दो दोस्त हैं विनय और आयुषी। गुड मॉर्निंग लखनऊ पर आपका इस्तकबाल करने के लिए दोबारा हाजिर है भाई डबल जोश के साथ। क्या कहते हैं
3: सभी लिसनर्स को गुड मॉर्निंग और आयुषी आपको भी गुड मॉर्निंग
2: दोबारा से बहुत सारा डबल गुड मॉर्निंग।
3: और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक इंतजार कर रहा है आप सभी का, तो अब तक भेजते हैं आप इंजॉय करते रहिए 107.7 FM रेनबो।

0: भाई नो,
1: जी
0: जो भी आप कह रहे हो उसका आंसर नो है, क्योंकि 9:09 हो रहे थे।
1: ये देखिए देखिए, नो आपने बोला ना तो 10 हो गए। 9:10 और 8 सेकंड्स का वक्त, आप है विनय यादव और आयशी के साथ में एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
0: और देखिए हाँ,
1: अब आपके पिटारे में क्या है?
0: देखिए मैं बताऊं, पिटारे में बहुत कुछ है, लेकिन जब इंसान अभिभूत हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है, इतना सारा प्यार मिलने लगता है, बहुत सारे मेल्स आने लगते हैं, तो लगता है कि ये भी हमारी मौलिक जिम्मेदारी है कि थोड़ा थोड़ा मेल पढ़ते रहे ताकि कहीं किसी का मेल छूट ना जाए। भाई कोशिश तो ये रहती है ना,
1: जो मेल्स आते हैं ना, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमें मेल भेजते हैं इतने प्यार से भेजते हैं, यही तो जब हम लोग बैठते हैं यहाँ पर 2-3 घंटे 4 घंटे, यही हमारा पानी होते हैं, यही हमारा नाश्ता होते हैं, यही हमारी चाय होते हैं।
0: सही बात है, तरोताजा कर देते हैं।
1: हाँ, सब भूल जाते हैं। तो क्या कहना चाहती हैं आप?
0: देखिए भाई, मैं तो क्या कहूँ, भाई घनश्याम सिंह जी कुछ कह रहे हैं।
1: क्या कह रहे हैं?
0: उनका जो मेल का शीर्षक है वो है मुद्दा सफाई, तो उन्होंने हमारा जो मुद्दा था ना उसको डिकोड कर लिया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। पर देखिए, इसके पहले मैं मेल्स पढूं, मैं मुद्दा दोबारा बता दूं ताकि आप सब में से किसी ने अगर अभी ट्यून इन किया है तो वो मुद्दा जान ले और हमारे साथ जुड़े, अपनी बात बताएं, क्योंकि भाई आज है नेशनल डेंगू डे और हम इसकी अवेयरनेस बराबर फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा मच्छर आपकी सेहत के साथ बड़े बड़े खिलवाड़ कर जाता है और हम ये नहीं चाहते।
1: हाँ ऐसी, और हम देख रहे हैं कि मेल हमें किया है फिर से मोनू सेठ ने, और इस बार मुद्दे पे किया, आपने कहा था ना, लिखते हैं स्वच्छता ही परम पुण्यम, स्वच्छता परम तपः, स्वच्छता परमम ज्ञानम, स्वच्छतवे देवता स्थित है, अर्थात स्वच्छता ही सबसे बड़ा पुण्य है, तप और ज्ञान है, स्वच्छता में ही देवता निवास करते हैं, अपने आसपास सफाई रखता हूँ और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कहीं भी गंदगी ना करूं, इसलिए और तमाम सारी चीजों ने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू सेठ जी हमसे जुड़ने के लिए और मुद्दे पर अपनी बात कहने के लिए।
0: तो भाई मुद्दा एक बार याद दिला देते हैं कि हम कह रहे हैं आज डेंगू डे है और डेंगू अक्सर ठहरे हुए पानी से फैलता है, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप अपने घर में सफाई रखते हैं, अपने घर के सामने रखते हैं, लेकिन पड़ोसी के सामने गंदगी है या पूरे मोहल्ले में गंदगी है, तो आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं या आवाज उठाते हैं या नहीं, क्योंकि वो मच्छर वहां भी पनपेगा तो आपको भी काटने की पूरी काबिलियत रखता है।
1: हाँ, और ऐसी एक सॉन्ग वेट कर रहा है फिर से।
0: बिल्कुल, लेकिन इसके पहले बस घनश्याम जी का मैं मेल पढ़ देती हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत देर से वेट करा रखा है। तो नारायण नगर है, फैजाबाद रोड, लखनऊ से, बस ये कह रहे हैं कि काफी समय से मैं अपने घर पर खूब सफाई रखता हूँ, नाली में कचरा इकट्ठा नहीं होने देता और घर में कीटनाशक स्प्रे जरूर छिड़काव करता, और बचपन से आज तक मुझे बुखार नहीं आया। भाई अब इतनी बढ़िया बात कर दी, अब ये गाना बनता है।
1: बुखार नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई दवाई वगैरह ले रहे तो आप बताइए भाई हमें।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: देखिए विनय, 9:17 हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और अपने अपने ऑफिसेस के लिए निकल रहे हैं, उन्हें इंतजार रहेगा कि भाई थोड़ी ट्रैफिक अपडेट्स मिल जाए, तो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट और इजी रूट ले ले। और ये बताने के लिए हमारे साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM पर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, गुड मॉर्निंग।

0: लखनऊ सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज वर्तमान में मैम, चूंकि आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे में ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, तो बहुत ज्यादा शहर में ट्रैफिक लोड नहीं है मार्गों पर, यातायात सामान्य गति से गतिमान है। चूंकि शनिवार को भी इस समय जो ज्येष्ठ माह चल रहा है, ज्येष्ठ माह के दृष्टिगत जगह जगह हनुमान जी के भंडारे चलते हैं
1: जी।
0: तो ये भंडारे जो है जगह जगह प्रस्तावित हैं, तो उन के कारण थोड़ा सा हो सकता है ट्रैफिक का वो रहे, लेकिन हमारे ट्रैफिक की रेसर मोबाइल और नागरिक पुलिस की ड्यूटी लगाकर हम सुगम संचालन करा रहे हैं, कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं। बस थोड़ा सा जो हमारे भंडारा करने वाले आयोजकगण हैं उनसे थोड़ा अनुरोध यही रहेगा कि कृपया जब भी आप भंडारा का आयोजन करें, कृपया रोड साइड से थोड़ा सा हट करके पंडाल वगैरह लगाएं और ट्रैफिक मार्शल अवश्य लगाएं, अपने ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में ऐसे लोगों को चिन्हित कर ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से जो है लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो और ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे।
1: अच्छा, जैसा कि आपने
0: पार्किंग की भी व्यवस्था अवश्य रखें, रोड साइड में पार्किंग ना कराएं कहीं भी, और ये थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे, हमारा सहयोग प्रदान करेंगे, तो हम बेहतर यातायात उन्हें उपलब्ध करा पाएंगे।
1: जी, विकास जी, आपने बताया कि भंडारे का दिन है, आज भंडारे भी होंगे, तो क्या आपके आसपास भंडारे हैं, क्या अपडेट दे सकते हैं, इसकी भी हमें चाहिए क्योंकि हमारे लिसनर भी जो सुन रहे हैं ना तमाम लोग। और
0: बहुत सही प्रश्न किया है सर, जो जगह जगह जो है भंडारे हो रहे हैं, जैसे अगर आप बात करें अलीगंज का, तो हमारे अलीगंज हनुमान मंदिर के पास में, साथ ही हमारा सुभाष चौराहा परिवर्तन चौराहा जो है परिवर्तन चौराहे के पास में, हनुमंत धाम के पास में, और अगर कृष्णा नगर की बात करें, बालागंज की बात करें, तो बालागंज हनुमान मंदिर के पास में जो है भंडारे का आयोजन है। तो इस तरह से कुछ प्रमुख स्थानों पर भंडारे चल रहे हैं अभी, और बाकी मंगलवार के दिन हमारे जो प्रमुख चार मंदिर हैं वहाँ अत्यधिक संख्या में जो है श्रद्धालुओं का आवागमन होता है और भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें हनुमान सेतु, हनुमंत धाम मंदिर और अलीगंज के दोनों पुराना हनुमान मंदिर और नए हनुमान मंदिर पे अत्यधिक यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। जी
2: थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी।
1: हाँ, भंडारे की,
0: धन्यवाद
1: भंडारे की और ट्रैफिक की।
2: थैंक यू सर।
1: विकास सिंह जी,
2: तो देखिए भाई, हमारे साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी जुड़े रहे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो अब अगर आप में से किसी का ऑफिस है तो ऑफिस के लिए या फिर किसी पर्सनल काम के लिए निकल रहे हैं तो आप शॉर्टेस्ट रूट अपनाइए, और अगर जा रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करिए और प्यारा सा गाना सुनते हुए जाइए ना।

0: 9:25 हो रहे हैं। विनय जीएमएल पे गुड मॉर्निंग लखनऊ पे, विनय और आयुषी आपके साथ हैं। और भाई विनय बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे गाने सुन रहे हैं और लग रहा है कि कहीं ये ना छूट जाए, कहीं वो ना छूट जाए।
1: बिल्कुल, कैसे छूटेगा, पिटारा इतना बड़ा है आपका। मैंने तो पहले ही कहा था कि इतनी सारी चीजें आपके साथ में है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, देखो हमारा जो 100.7 FM रेनबो है ना, ये इंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिसनर्स हैं उनको देता है। तो हमारा काम है और हम एंटरटेन करना और इन्फॉर्मेशन देना।
0: बिल्कुल,
1: तो अगली इन्फॉर्मेशन क्या है
0: भाई? देखिए, अगली इन्फॉर्मेशन वो है जिसने हम सबके जीवन में उजाला कर दिया, यानी आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, जो कि यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। अब भाई उद्देश्य क्या है कि साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में लाइट की यानी प्रकाश की क्या भूमिका है, उसके प्रति जागरूकता यानी अवेयरनेस बढ़ाना है।
1: हाँ आयुष, देखो जिंदगी में लाइट की ही सारी चीजें हैं, है? अगर कहते ना भाई, कहना की क्या, कहने की ही क्या बात कहते हैं, चीजें ही लाइट से शुरू होती है, प्रकाश से ही शुरू होती है।
0: बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, फिजिक्स के यानी हम साइंटिस्ट और इंजीनियर चार्ल्स काओ को याद कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने किस तरह से उपयोग में लाया और इन्हें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के विकास के लिए जाना जाता है। अब भाई ये तो आप बताएंगे कि किस किस चीज में हम इस लाइट का, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उपयोग कर रहे हैं हम?
1: इसका उपयोग हम रोज मोबाइल को चलाने में करते हैं, उसके अलावा टीवी, इंटरनेट के सिग्नल में करते हैं, और लेजर प्रिंटर, बार कोड स्कैनर और डायग्नोसिस के उपकरण में करते हैं। यानी जो चीजें जिंदगी में रोज हम यूज करते हैं, हर पल हम यूज करते हैं, उसमें यूज होता है ये जो आपने बताया है इंटरनेशनल लाइट डे ऑफ लाइट।
0: बिल्कुल, स्पीडोमीटर्स में और क्रिटिकल सर्जरीज में भी यूज हो रहा है, मतलब जान भी बचा रहा है, जिंदगी में प्रकाश डाल रहा है, हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, टेक्नोलॉजिकली एक्टिव बना रहा है। और भाई इतनी बातें हमने बता दी, इसके साथ हम जब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं हम आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं, तो आपको किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है और हाइपर टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। यानी उच्च रक्तचाप से रिलेटेड अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द आपके साथी, आपके परिवारजन किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो कल रविवार को भाई FM रेनबो 100.7 MHz यानी इसी फ्रीक्वेंसी पर 12 बजे

0: एक बजे तक हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे डॉक्टर कोमल अग्रवाल को MBBS MD आंतरिक चिकित्सा विभाग से, जो कि हमें बताएंगी क्या बताएंगी।
1: हमें पता चलेगा कि उक्त रक्तचाप के कारण, लक्षण, नियंत्रण और स्वस्थ जीवन के उपाय।
0: बिल्कुल, तो ये जानना है अगर तो कल प्लीज ट्यून इन करिए और आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं इस प्रोग्राम से। और सुनना नहीं भूलेंगे न ये और ना अभी का गाना।
1: हाँ, अभी का गाना बहुत ही खूबसूरत है और आई होप आप सभी इंजॉय करेंगे। 9:28 और 58 सेकंड्स का वक्त, आयशी और विनय यादव के साथ है आप। गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।

0: के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: दादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: नौ बज के 14 मिनट। गुड मॉर्निंग लखनऊ पर विनय और आयुषी बने हुए हैं आपके साथ और ला रहे हैं हम बहुत सारी एक के बाद एक बहुत प्यारी प्यारी अपडेट्स। और देखिए भाई, मौसम से जुड़ा हाल अगर हमें नहीं पता चला तो भाई हम हो जाएंगे बेहाल, और ऐसा क्यों होगा। देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दानिश जी 100.7 FM पर।
3: जी गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग सर। तो ये बताइए मौसम कैसा है लखनऊ और उसके इर्द गिर्द इलाकों का।
3: देखिए मौसम की बात करें तो अब यहाँ से मौसम गर्मी की तरफ जाएगा, क्योंकि तापमान अभी कहीं ना कहीं सामान से कम चल रहा था, और आने वाले दिनों में धीरे धीरे तापमान आने वाले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है जी। और कहीं ना कहीं लखनऊ का तापमान 40 क्रॉस करेगा और दिन में अच्छी धूप खिली रहेगी, तो कुल मिला के कहें तो आने वाला दिन थोड़ा गर्मियों से भरा रहेगा। लेकिन अभी लखनऊ की अच्छी बात यह है कि कोई अलर्ट टाइप का नहीं है सिचुएशन, जैसा मई में गर्मी रहता है उस तरीके का गर्मी आने वाले दिनों में रहेगा।
2: जी सर, तो कोई विशेष तरीके की हमें सावधानी बरतनी चाहिए।
3: जी बिल्कुल, सावधानी ये है कि जब दोपहर में काफी गर्मी का रहेगा तो थोड़ा सा बच्चे और बूढ़ों को दोपहर में बचाव रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक बाहर ना निकले, और निकलते हैं तो तरल पदार्थ और अपने सर को ढककर रखें।
2: थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए।
3: ओके धन्यवाद।
2: देखिए इस हमारे साथ कौन बने थे
4: आयुषी, देखिए
2: हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी बने थे।
4: और 9:36 और 24 सेकंड का वक्त, अभी वक्त कहता है कि अब एक सॉन्ग और हो जाए भाई।
2: बिल्कुल,
4: अब इससे ज्यादा वेट होता नहीं है हमारे लिसनर्स को।

0: भाई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: 9:41 और आपके दो दोस्त आपके साथ हैं विनय और आयुषी। और आज भाई जिसका जिसका भी स्पेशल डे है हम नहीं भूले हैं, बिल्कुल भी नहीं भूले हैं।
1: हाँ, और आयुषी जिनका बर्थडे आप बताने जा रही हैं उससे पहले हमारे जितने लिसनर्स हैं ना उनका जिनका बर्थडे है उनको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
0: स्पेशल तरीके से विश करते हैं ना, स्पेशल तरीके से विश करते हैं हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: हाँ, और एक चीज है हमारे पास, सुना दिया जाए।
0: हाँ
2: आ गए आप?
3: जी आ गया।
2: जन्मदिन मुबारक हो आपको।
3: ओह हो, थैंक यू वेरी मच।

0: Very happy birthday to you.
1: And to everybody also, happy anniversary if you're celebrating your anniversary today.
0: हाँ जी, और आज हमने देखा है ना कि आयुषी आपके पिटारे में जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनके बर्थडे के कुछ चीजें आप लेकर आई हैं।
1: भाई देखिए, मूवीज तो बहुत देखती हूँ मैं और गाने भी बहुत सुनती हूँ मैं, और आज अगर इसका एक कॉम्बिनेशन आ गया मेरे पास तो मजा ही आ गया ना।
0: बिल्कुल।
1: देखिए आज किसका बर्थडे है, पहले बता दें कि धर्मेश दर्शन जी का बर्थडे है। बॉलीवुड के एक फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, और भाई 90 के दशक की बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, आपने जरूर देखा होगा।
0: हाँ, धर्मेश दर्शन को अगर हम अपने लिसनर से कहें कि आप उन्हें कैसे जानते हैं, तो 90s की जो मोस्ट रोमांटिक फिल्में हैं उनसे हम उन्हें जानते हैं, जिनमें से आप राजा हिंदुस्तानी, धड़कन, मेला, बेवफा, हाँ मैंने भी प्यार किया जैसी फिल्में शामिल हैं। और आयुषी, ये ऐसी फिल्में हैं जो 90s में आई थी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि रोज हमारे 100.7 FM पर इन फिल्मों से सॉन्ग प्ले होते ही है, और जो हमारे लिसनर्स हैं वो रिक्वेस्ट करते ही हैं।
1: भाई एवरग्रीन सॉन्ग्स है ना, फिल्में भी एवरग्रीन है, गाने भी एवरग्रीन है, और कहानी भी एवरग्रीन है।
0: हाँ जी।
1: अच्छा, इसी के साथ भाई ये सिलसिला खत्म नहीं, हम बात करने जा रहे हैं, आजकल कहते हैं युवा हार्ट थ्रॉब, आई मीन हर दिल की धड़कन है वो, विक्की कौशल जी का भी बर्थडे है।
0: विक्की कौशल जी का बर्थडे है आज, यानी 16 मई 1988 को जन्मे विक्की कौशल ने 2015 में आई फिल्म मसान से बॉलीवुड में

0: पहचान बनाई।
1: भाई देखिए उनकी भी कई सारी फिल्में हैं जो आपको याद होंगी, उरी, राजी, सरदार उधम, सैम बहादुर, जरा हटके जरा बचके, और भाई उरी के लिए तो उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला।
0: हाँ नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, और लेकिन जो हम सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं ना अभी इसी वक्त, वो हाँ धर्मेश दर्शन जी की फिल्म से है, और हम चाहते हैं कि आप सभी एंजॉय करें।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: नौ बज के 49 मिनट

0: और 10 सेकंड्स का वक्त। आयुषी, बहुत सारे मेल्स हम तक हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें पढ़ा जाए। और आकाश लोधी जी ने मलयावासी में मेल किया है, हेलो मैम एंड सर, हम अपनी पेस्टिसाइड की दुकान चलाते हैं और जैसा कि आपने बताया है कि मच्छरों से सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसके लिए एक तमाम सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बातें लिखी हैं आकाश जी। और उसके अलावा अजय कुमार सिंह जी का मेल है, गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग बोला है और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और मुद्दे पे आज यही कहूंगा कि साफ सफाई करना हमारा जीवन का दायित्व तो है, क्योंकि विनय जी आपकी हम भाई मुद्दा हमारा जो है ना वो हमने आपसे पूछा था, तारीफें तो होती रहेंगी आशी।
1: चलिए इसी के साथ सुनील कुमार जी का भी मेल ले लेते हैं और हम लोग को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, सफाई महत्वपूर्ण है और कह रहे हैं बिना सफाई के जीवन अपूर्ण है। और भाई इसके साथ इन्होंने शायद एक पोएम लिख दी है, लेकिन समय कम है इसलिए हम बस ये समझ लेते हैं कि आपने बहुत प्यारी बातें कही हैं और थैंक यू आपने मेल किया।
0: और संजय गुप्ता जी का मेल है और लिखते हैं कि आई एम संजय फ्रॉम दरियागंज मंडल सिंचाई विभाग लखनऊ से, और आपने क्या लिखा है, रेजिडेंस सी ब्लॉक इंदिरा नगर लखनऊ से आपने मेल किया है, मैं और मेरी वाइफ डॉटर प्रियंशु जो भी सिर्फ 3 इयर्स के हैं, लोगों की बड़ी फ़ैन हैं और आज के मुद्दे में कहना चाह रहे हैं कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर और पानी की टंकी की सफाई करते रहें समय समय पर। और देखिए आयुषी, ये सारी बातें हम सभी जानते हैं, हमारे लिसनर्स भी जानते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम करते कब हैं,
1: बिल्कुल सही,
0: और कितना करते हैं। तो करते रहना चाहिए और दूसरों को बताते रहना चाहिए, जैसे बता रहे हमारे लिसनर समझे।
1: इसी के साथ अभी मैं सुनील कुमार जी का पढ़ रही थी तो नाम लेना भूल गई थी, सुनील प्रांजल धर विकास नगर लखनऊ, तो भाई अब कोई शिकायत ना रहे इसलिए हमने नाम ले दिया। और छवि राम सिंह जी फरुखाबाद से लिख रहे हैं, छवि राम सिंह राजपूत पूरा नाम लिखते हैं और नियमित श्रोता है और सब अच्छा लगा इनको कार्यक्रम, सारे गाने अच्छे लगे, लेकिन मुद्दे पर कुछ नहीं लिखा, पर कोई बात नहीं।
0: तो
1: इसके साथ भाई आपने सुनील यादव सुल्तानपुरी हलियापुर सुल्तानपुर जी का तो मेल पढ़ी दिया।
0: हाँ जी बिल्कुल पढ़ दिया है। और इसके अलावा आप जो है आयुषी, एक सॉन्ग आपने नाम लिया ना विकी कौशल जी का जी। और कहा कि विनय तुमने विकी कौशल को सॉन्ग
1: नहीं बताया।
0: हाँ तो कैसे मिस कर सकते हैं भाई?
1: कैसे?

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: 9:55 और 55 सेकंड्स का वक्त। आयशी, जिन जो लोग हमसे जुड़े, जिन्होंने हमें मेल किए हैं, उनका धन्यवाद कर दिया जाए।
5: हाँ भाई, क्योंकि देखिए स्टूडियो की क्लॉक कह रही है बाप रे, जल्दी जल्दी कर दिया जाए, कम से कम नाम तो पढ़ लिया जाए, चाहे मेल ना पढ़ पाए, देखिए बहुत समय की कमी रही। पर अजय सिंह कुमार जी ने हमें मेल किया है, इसके अलावा हमें संजय गुप्ता जी ने मेल किया है और लखनऊ से किया है, सिंचाई विभाग से, और हमें नरगिस ने भी मेल किया है। इसके साथ मुनेश कुमार राजगांव भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से हमारे पास मेल आया। ब्रिजेश सिंह दीपू टहुआ कैसरगंज बहराइच ने भी बड़ा प्यारा सा, बड़ा लंबा सा मेल लिखा, पर आपकी भावना समझ रहे हम, आप सफाई भी करते हैं और हमें सुनते भी, हम समझ गए।
4: और उसके अलावा वारिस अली खान साहब ने मेल किया, राम मोहन गुप्ता साहब ने मेल किया है, और वैभव प्रकाश साहब हमसे जुड़े हैं,
5: महाराष्ट्र से,
4: नागपुर महाराष्ट्र से जुड़े हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।
5: और भाई इसी के साथ देखिए, मैं आयुषी आपसे ले रही हूँ इजाजत और अनुमति, हालांकि जीएमएल से मैं और विनय दोनों ले रहे हैं, पर विनय आपके साथ कुछ घंटे बने रहेंगे, पर आयुषी को दीजिए इजाजत और फिर मिलेंगे इसी फ्रीक्वेंसी पर।
4: न्यूज ब्रेक के उस पार मुलाकात करते हैं लेकर प्रोग्राम सुगंध माटे की।
6: सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबूधाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड पहुंचे हैं। नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पते के साथ ही परीक्षा केंद्र के चयन के लिए पहली और दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूक बढ़ाना और मानसून के पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। यह दिन मच्छरों को प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सावधानी, स्वच्छता, सजगता और समय पर उपचार से डेंगू के प्रभावी नियंत्रण संभव है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घर, आसपास और समाज को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज में महिलाएं संगम में पवित्र स्नान कर बरगद के पेड़ के नीचे पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं। महिलाओं ने आज निर्जला व्रत भी रखा है। उन्नाव में भी सुबह से सुहागने पारंपरिक श्रृंगार कर वट सावित्री का व्रत और पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की प्रार्थना कर रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को

0: अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें। वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: भैया सब जनन का राम राम प्रणाम। और कार्यक्रम शुरू होगा है आपका सबसे पसंदीदा सुगंध माटी की। हम आपके साथ हैं ना, आपके साथी, आपके संगाती विनय यादव। 10 के 5 मिनट और 20 सेकंड का समय होगा है, और ये समय कह रहा है कि जो हमारे साथ है आए हैं ओम भैया। अरे कहाँ हो दादा, इसी आगे आवा हो।
1: आए गेन भैया, सब श्रोता पंचन राम जवाहर प्रणाम नमस्ते। और भैया भुलभुला खेरे ते आए हैं।
0: बुलबुला खेत आए हो?
1: हाँ।
0: तो पानी वानी व्यवस्था करी तुमने खाते?
1: पानी देखो ये अम्मा देखो पूरा झोरा भेजा है ना, पानी बोतल और चबयानो भेजा है। कहन जो विनय भैया है सवेरे तेरे कार्यक्रम कर रहे हैं, भैया के यहाँ तनिक चबयाना चबवा दे और भैया पानी ही पिया दे।
0: अरे अम्मा का राम राम, लेकिन जो है ओम तुमका इसे ना बताई नहीं है कि जो है चबयाना चबवा पानी पिया दो। तुम तो यार हमका लगा पेट पिरवा दे भैया हमारे महाराज, ऐसे नहीं होते।
1: हाँ, देखो तिनी ध्यान तो खुदे रखे ना भैया।
0: हाँ यही मारे तो बता। देखो ओम एक बात बते, तुम्हारी याक बात हमका बहुत नीक लाग है। वो मालूम है का?
1: हाँ बताए दो भैया।
0: जो तुम सबका देखो हिया तो ठीक है, लेकिन जब मिलत हो कहूँ मिली हो गाँव गिराव में यहाँ मिली हो तो भैया जो तुम नमस्ते प्रणाम करते हो यह चीज हमका बहुत नीक लागत है। और नमस्ते करब दूसरे के प्रणाम करब और जो है अपन मुड़ तीनों झुका कर यहाँ जब
1: हाँ सम्मान करे भैया।
0: हाँ बहुत अच्छी लागत है।
1: अरे भैया बड़े बूढ़े ने देखो सम्मान करे चाहिए, ये सब देखो इतना ध्यान रखते हैं। अब जैसे अम्मा जब आना भेज दिन तो भैया भी ध्यान रखती है, तो हम पंचन पूरी या जिम्मेदारी बनत है भैया की सब क्या सम्मान करे है भैया।
0: हाँ ओम भैया सम्मान जो है सबका करे है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बराबर के हो और चाहे वो छोट हो।
1: हाँ
0: यह तो हम बताए ना कि तुम्हारे जो है बात हमका बहुत नीक
1: भैया, सम्मान करियो तो सम्मान मिली सीधी बात।
0: एक गौ नहीं बिल्कुल तैयार है, सुन लीन जाए।
1: हाँ भैया
0: लौटा जाए।
1: हाँ
0: तो बातें हुई है।
1: अरे भैया बिल्कुल

0: 93.7। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। 100.7।
4: हाँ भैया, 100.7 FM रेनबो पर आप
5: आए गए हो।
4: हाँ।
5: ओम भैया।
4: हाँ।
5: हाँ। आनंद कह रहे हो है, मजा ले रहे हो है कार्यक्रम सुगंध माटी के।
4: भैया इस गौने सुना एकदम झूम गए, एकदम नाचे ला गए। हाँ।
5: तो नचियो नचियो का।
4: अरे नाचक तो है पूरा एकदम झमाझम।
5: नहीं कहो तो हम नचवाई फिर तुमका।
4: हाँ अब तो भैया पहले
5: नहीं देखो। हाँ। नाचब गौब खाब सोब बहुत जरूरी है।
4: अरे भैया ये सब काम करे चाहिए।
5: वही तेन ज्यादा जरूरी ओम होत है आशीर्वाद ले। कैसे बताओ
4: अब आशीर्वाद भैया सम्मान करियो तो आशीर्वाद मिली।
5: हाँ।
4: आशीर्वाद नहीं मिला भैया बड़े बूढ़े का अगर परेशान करियो तो समझ लो कहा तनाए है। पहले कहा कर रहे हैं कि भैया सीधे शराब लाग जाए।
5: हाँ यह दम है आशीर्वाद भैया कि अगर कोनो शराब है ना तो वह कहीं यहाँ पलट सकते है।
4: काट देते है।
5: हाँ, काट देते है। जैसे जो ना ये तो देखो तो पहले पिचरन मैया और पिचरन मैया जो सीरियल आवत रहे ना उनके रामायण देखित रहे टीवी पर यहाँ और तमाम चीजें देखी था टीवी पर यहाँ ऐसी बाढ़ आ रही ससर वैसी बाढ़ आ रही और लड़ी और जीत गए भगवान वाली।
4: वो कह देता है भैया कि ब्रह्मास्त्र मार देने।
5: हाँ वह ब्रह्मास्त्र जो आशीर्वाद है ना वो ब्रह्मास्त्र आशीर्वाद जो है सम्मान करे मिलत है। एक तुमका हम यहाँ बात बतवाई यहाँ अपने जो है हमारी जिंदगी में यहाँ बहुत वह बात छुके निकली।
4: अरे भैया बिल्कुल जल्दी बताओ।
5: देखो पहले जो हम यहाँ आये रहन तुम्हारे आकाशवाणी में
4: अरे
5: लागत है हमको तुम घर का लगा शरमा रहे हो।
4: बताओ भैया अपने घर में आए के कोनो शरमा
5: तो देखो जहाँ हम पहले यहाँ आकाशवाणी आये रहना है तो यहाँ के ऊपर भैया बैठे थे तो उनके लगे जाई तो बातें हुए और अपन जो जब हम पंचे बैठित रहन तो वह कहे कि भैया यो बता दो ऐसे कैसे हो यो बता दो ऐसे कैसे हो तो वही बतावे। लेकिन जब हम बैठे रही तो देखी कि जब उनते को बड़ा आवे या उनते ओहदा में जब कोई बड़ा आवे ऊंचे वाला आदमी जब उनते मिले आवे तो अपन कुर्सी तिने तिरछा कर ले।
4: कहे भैया
5: अब वह तो बताई थी वह तो बात है ना तो जब तिरछा कर ले एक बार होगा दुई बार होगा चार बार होगा ओम हम बड़ा परेशान हम बहुत परेशान हम कहें कि यार ये या कौन भाई आफत हमारे सामने ऐसे सामने बैठ रही हैं जो हमारे भैया लोग।

0: और जो उन्होंने आवत रहा है उनके पंजे सामने बैठे रहा, लेकिन जब कोई बड़ा आवती है या इनते जब कोई ऊंचा आवती है
1: तो मुंह घुमा ले
0: नहीं अपन कुर्सी तिरछा ले दी।
1: अच्छा
0: जो, लेकिन हम पूछू नहीं सके थे, पूछो काहे नहीं पूछ सके।
1: अरे हाँ भैया काहे नहीं पूछो,
0: ई मारे नहीं पूछ सके कि दादा हम पूछ ले पता लगे कौन अंदर की बात हो तुमते का मतलब है।
1: हाँ,
0: तो लेकिन जब थोड़ा समय बीता उनते दिनों व्यवहार बाबा
1: हेल मेल हो गया,
0: हेल मेल हो गया। हम कहा भैया याग दिन हम पुचकार भैया पनाम नाम कीन सब बातें भाई। ओ वत्ते है समय एक जने आए उनते बड़े और उनते जो है जैसे आए तो वे उठे नमस्ते कीन अपन कुर्सी तिरछा ले। जब वे गए तो हमते रहा लेगा, हमका भैया यहाँ का बात बताओ हम बहुत दिन से परेशान हैं,
1: तड़पो तुम भैया जैसे बिना पानी मछली
0: पानी मछली हम सोचित यो आए का सबसे बड़ी बात है ना। तो कहीं का होगा, हम कहा देवता यो बताओ कि जब हम पंचे बैठे थे हम हमारा साथी जब बच्चे आओ तो तुम सामने है बैठे रहते हो, बतावा कर तो यह बात वह बात और दुनिया की दिशा निर्देश दिन कर दो और जुने आवा तो सामने बैठ रहा तो। लेकिन जब तुमते को बड़ा आवत है तुमते जो को ऊंचा आवत है तो अपन कुर्सी काहे मारे टेढ़ कह ले थो महाराज इमा का है। तो वे हंसे कहीं बिना देखो यह बात है यही सम्मान है।
1: अच्छा
0: कि जो हमसे बड़ा है जो हमसे ऊंच है वही के सामने हम सीधा कुर्सी पर कैसे बैठ सके थे। उन देखो कितनी अंदर की बात है ना
1: भैया।
0: देखो तमाम लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना सम्मान करते हैं लोगन के यहाँ, तो हम लोग जब मिले थे बातें करे थे दूसरे से जब हेल मेल होते हैं अपन बड़े हैं लड़का है चाची है बुआ है सब जनी है तो उनका भी जो है सम्मान हमका हर तरह से करे।
1: तो भैया यो बताओ इस कौन सम्मान रहा है तिरछा करके कौन सम्मान दे रहा है।
0: वो यही जो बात है ना कि जब हमसे कोई बड़ा आवा जब हमसे कोई ऊंच है ओहदा में तो उनके सामने बैठना जो है ना वो थोड़ा सा
1: भैया खड़े हो
0: लागत है अंदर जो है ना वो अच्छा नहीं लागत है। ई मारे वह कुर्सी अपन जो है तिरछा ले।
1: अच्छा
0: ये उनके मन की उनके सम्मान की जो है ना बात है। यही तना हम कहें ना कि यही तना लोग सम्मान देते हैं छोटी छोटी तना। तो चलो एक गवनई और है तैयार है बिल्कुल सुना जाए।
1: हाँ भैया बिल्कुल।

0: तो सच के 20 मिनट और 35 सेकंड का समय हुई गवाह है। आप है विनय यादव और ओम के साथ है और बिल्कुल मजा ले रहे हैं कार्यक्रम सुगंध माटी की मई। हाँ ओम भैया।
1: हाँ भैया।
0: ऐसी यार तुम ऐसी वैसी तिरछा देख रहे हो
1: भैया। बताओ कौवा कार्यक्रम चल रहा हो है और एकदम श्रोता पंच आनंद ले रहे हैं। एकदम
0: श्रोता पंच आनंद ले रहे हैं और आप जो है जुड़ सकते हैं वो हमारे साथ है।
1: अरे
0: ऐसा नहीं कि हम ही तुम आगे आगे भाग रेल गाड़ी का डिब्बा आए आगे हम पंचे बैठे इंजन बने और तमाम डिब्बा है और डिब्बा की शुरुआत कैसे हुई बताई बैठे कैसे मालूम है डिब्बा में यहाँ एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर यहाँ मेल करके
1: अपन संदेश भैया भेज दो।
0: हाँ संदेश भेजियो तो पता चली कि हाँ भाई हमारी गाड़ी मैया बिल्कुल सवारी बैठे टन टन टन टन चली जा रही है ठटक ठटक ठटक ठटक।
1: अब भैया रेलगाड़ी का नाम लेना तो तुमका बताई अपने यहाँ जो माइको चचा नहीं है।
0: हाँ हाँ
1: माइको भैया का माइको चचा कहला कि ओम भैया यू बताओ तुम तो चुप्पे चुप्पे घूम आओ थे जाए के सहरे लेकिन आग बात बताओ जो यहाँ गाड़ी चलते है रेलगाड़ी अहिमा हिचको लागत है का
0: रेलगाड़ी में हिचका।
1: हाँ
0: लागत है अगर पकड़ के ना बैठे हो
1: हाँ
0: तो तुरंत ही जो ना सीट तेने दम दी से हुई हो।
1: हाँ तो मैं को चाचा का हम ये बताएं कि इसका लागत हम कहा यू तुम पूछ कह रहे हो तो कहा लग भैया कबो भाई हम बैठे ना यहाँ रेलगाड़ी पर
0: ले अब हम कहा बताए इनका वैसे कहो रेलगाड़ी लाइन वो जो ना पटरी खुदवा दिन जाए कहा अब जो तो हम पंचे तो जोन कर रहे हैं वह कर भाई है मैं कुछ चाचक देखो मिले हूँ इनका हम कहा बताई काहे वे इतनी करा है सबकी है बताओ गांव में रह के हुए लगे है तेरे लगाड़ी निकरते हो भाई बैठवे नहीं भाई।
1: हाँ टिकट कटा लेन करें और चले जावा करें लेकिन भैया देखो अब गर्मी ही गए है एकदम चरम सीमा पर यहाँ है मौसम तो बदल रहा कबो बरखा हो लागत कबो पाथर पर लागत कबो मार एकदम गमसी हो लागत है कुछ कहे नहीं अब तो इस कबो कबो भैया लागत है कि भुरार बहने सीधा दोपहर ही हो गए
0: जेठ को महीना भोराहार यो संजा दोपहरिया रात ये रुके रहो बयाना डोलावट डोलावट ना पता हाँ। चली यह है जेठ का महीना है और कहा जाए देखो जेठ का महीना है गर्मी तो हुई आए और अगर गर्मी ना हुई देखो प्रकृति जो है अपने हिसाब से चलती है अब यो ने अरे बहुत गर्मी हो रही है मैंने गर्मी लागत है पंखा नहीं चला यो ने यू सब नहीं हुई भैया
1: नाटक करे तो कोनो काम चली है नहीं
0: जेठ बैसाख है आषाढ़ अब देखो आषाढ़ में तो भाई तीनों तीनों पानी शुरुआत हो जाते है परसे लागत है पानी लेकिन
1: अब कबो कबो भैया ये सोजात कबो कबो कहो आषाढ़ सूखे नहीं कर जाए है लेकिन तो भैया दुई जाट है
0: तो अब की दुई गुना ज्यादा तपी है देखो बहुत जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं है ओम की गर्मी पड़ रही है तो हम पंचे परेशान तो हुई होते हैं हन लेकिन वैसे जो है ना जागरूक जब रही है अपन खान पीन का ध्यान रखब लड़का बच्चन का ध्यान रखब महतारी बप्पा का ध्यान रखब तो गर्मी से निपट जाए गर्मी तो हर साल पड़ी तो गर्मी अब की परी अगले साल फिर परी पिछले साल परी रहा है तो गर्मी तो का है टेरो
1: और भैया एक ब्याना लेके साथ है चला करो जब नहीं मान लो बत्ती नहीं आ रही तो भैया ब्याना हकावे लागो साथ है और वही के साथ देखो अब गर्मी क्या जैसे मौसम चली है।

0: है तो भैया छुट्टी हो जाते हैं, आओ भैया अपने गांव घर में घूमे जाओ, हम भी आ जाओ, आम के बाग हो ना वही खटिया परी है, पानी भरा है बाग में, मतलब सगरे सुख मिल जाते हैं।
1: तुम ले पकड़े उनका लगा थी बागिया में।
0: लेकिन भैया एक काम हो जाते है, गर्मी जैसे जैसे बढ़त है वैसे वैसे भैया मसा आज डेंगू दिवस मना रहे हो।
1: हाँ मनावा तो है। हाँ, अब मना रहा।
0: हाँ, तो भैया जो है मसंत रे बचे के
1: मसंत, अब तुम ओम यहाँ बात बताई, आदमी कहा थी मसंत बचो मसंत बचो, अरे दादा मसा, अबे कहो तुम पैंट उठाओ तो कहो नीचे तेने निकरे छे, अपन गाना सुना कर।
0: हाँ, तो इस लागत कि भैया कुछ बतावे चाहते हैं।
1: हाँ, तो जिनसे जो है जागरूकता जो एक खातिर बहुत जरूरी है कि साफ सफाई रखे है और जो चीजें है
0: जैसे
1: पानी ना भरा जिसे मच्छर नहीं आवे पनपे ना वो काम करे,
0: मच्छरदानी भैया लगा लियो,
1: मच्छरदानी लगा लियो, ओढ़ ही लो चदरा दादा का बताई है। चलो अच्छा एक गवलाई तुमका और सुना दी।
0: हाँ हाँ हाँ भैया।
1: तो भाई आनंद ले रहे हैं ओम भैया हमारे साथ है और 10:25 25 सेकंड का समय हुई गवाह है
0: विनय भैया है।

0: सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ओम भैया।
4: हाँ विनय भैया।
3: पूरे 10:30 बज गए।
4: हाँ
3: पूरे 10:30 बजे हैं और आप सब जने सुगंध माटी की मैया हो। और भाई कुछ कहा चेहरे का बात है बताओ।
4: हम देख रहे हैं इतनी देर से भैया, यू बताओ तुम फोन मका देख रहे हो।
3: अरे फोन हम तुमका कहा बताए, कहा देखे थे महाराज, आजकल तो फोन ना बताओ, हम देखे थे कि कोको फोन देख रहा। ओम याक बात है।
4: हाँ
3: याक बात है, याक समस्या है।
4: समस्या जरूर बता दो भैया। समाधान तो वही निकली।
3: दादा समस्या यह है कि जो फोन चलेगा है,
4: चलिन गवा है।
3: लेकिन देखो जितने में फायदा है नुकसानों हर चीज की है। कहा ना कि अगर अति करियो तो क्षति हो जरी।
4: हाँ, तो
3: भाई लेकिन अब जो फोन ऐसी चीज है कि भाई 24 घंटा साथ है रहा, जब मनुभवा जितने खन मनुभवा तो फोन दिया खप शुरू होगा। एक बात और बताई तुमका।
4: हाँ।
3: फोन दिया खप तो ठीक था, अब तक का फोन है टे टे टे चल रहा। अब वही मां जो उन वीडियो बनावती है भैया हो रही, समझ रहे ना तुम हो जो है कहाँ पहुँच रहे हो। रील
4: भैया रील देखो देखो
3: रील की आग बात बताए।
4: हाँ बताए दो
3: जल्दी
4: जल्दी जल्दी।
3: हम जो है ना परसों गए ना काकोरी, काकोरी जाना था ना
4: ससुरारी,
3: काकोरी मौसिया रहते हैं यार तुमको हुआ है ससुरारी। अच्छा। पीछे पर
4: भैया आज कल लोग मनाई है ना, वो सीधा घर से छुटाते हैं तो सीधा ससुरारी।
3: नहीं ऐसी बात नहीं है। अब मौसिया कुआ गए, मौसिया कह रहे हैं जगन्नाथन। कहीं की जो है प्रसाद ले जावा, हमका फोन करी मौसी, फोन करी सा कहीं की जो है विनय आयो प्रसाद ले जावा। तो हमका चलो ठीक, अच्छा भाई प्रसाद ले आई चले। तो घर गए तो मौसिया मिले, मौसी मिले पहले लगाई भाई बातें भाई, और भाई चाय पानी बाबा।
4: हाँ?
3: उनके दुई बहुरिया हैं, बड़काई वाली पानी शरबत सब लेके आई, पाए लगी करें मारे आशीर्वाद दे नहीं हमका। और जानो फिर का भवा,
4: का भवा
3: हम कहा अच्छा मौसी आप चली, मौसी चला जाए भाई अब दोपहर हो रही। कहे नहीं बिना खाए तुम का जाए का नहीं है। तो हम कहा देखो अब हमारे भूख नहीं लगा, खाना वाना ना खाओ दादा।
4: हाँ।
3: पता लगा गर्मी हो
4: गर्मी नुकसान
3: लग गया। तुमका बताई रास्ता में जब हम जाते रहन तो खास तक दुकान देखे रहन
4: तो मन नहीं
3: माना भैया जो है लौटप तो खस्ता होता कस दिन जाइए वह मन में बसा रहा है। लेकिन मौसी मौसी या तो भाई मौसी जानो महतारी तना।
4: हाँ भैया और नए जमाने जो नमरत हुआ भैया वही ते तो स्वागत होते हैं चाय तेरे।
3: नहीं तो हम कहा नहीं हम खाना ना खा, वही खस्ता बसे रहा है मन में हमारे।
4: हाँ।
3: तो मौसी कहे नहीं अगर खाना ना खाइयो तो देखो सेतुआ रखे हुई तो तुम सेतुआ खा लो तीनों थोड़े से और मौसिया खाना खा ले। तो हम कहा चलो ठीक है, अच्छा भाई अब ना मनियो ज्यादा चिरौरी कह रहे तो ठीक नहीं लागत भाई मना करवाए। तो
4: पता लग पूछे वो ना करें, ज्यादा
3: नौटंकी दिखाओ तो।

0: भाई मौ मौसी हमार गए पता नहीं कहाँ बताए थे तो अब आई छोटकाई बहुरी वा उनकी खाना लेके और ड्याल हाँ तक घूंघट और हम ते तो बड़ी हम भन्नत दौरंगम पहुंच हुआ हाँ दौरंगम पहुंच हुआ
1: अच्छा
0: हाँ तो आशीर्वाद दी नहीं तो खाना धरिन और सतुआ धरिन और जब चली गई तो मौसिया जाने कहा कहा मौसी तेने
1: कहा कहना
0: यह तो काली मायके गए रहे अपने तो मौसी कहती तो मायके गए रहे तो तुम्हारे कहा होगा कहा परेशानी और तुम सबसे बड़ी बात तुम तो काली रेल

0: हम फोन हम देखें जो तुम नाम ले हो रील
1: मैया।
0: अरे दादा तुम का बताई ओम हम ना हमारे हंसे हंसाई ना रोए रोवाई।
1: अधेहन सब रुक
0: गया। देखो हम पंचे कहा है अबे भी गावन मैया गांव का है शहर की बात करें हर जगह की बात करें जो बहुरिया है बिटिया है इस सब लोग जो है अपने घर में सबका सम्मान करते हैं हर तरह से सम्मान सास ससुर का चचिया ससुर फुफुआ ससुर मौसिया ससुर चाहे जो सम्मान करते हैं
1: है?
0: और हर तना तेने जो है अपने घर का चलौती है लेकिन जो जो रील बनावे वाली जो बात कहे हो ना प्रथा चली गए तो अब देखो तुम रील बनाओ घर में ढाल हाथ घूंघट काले हो आए उमा सचियो ससुर देख रहे वो देख रहे फूफू कहे फलनवा बहुरिया दिया देखो रील चल रही है
1: तो सगरा सम्मान धरक धरे रही
0: है। हाँ तो देखो इतना सम्मान तुम्हारे जीवन मैया आप जो है बना रही हो चारों तरफ सब चीजें चल रही हैं तो वही का देखो फोनों में बहुत सारी चीजें होती
1: हैं
0: अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो है नहीं चला पा रहे हो है तो कोनो अपने दोस्त को यहाँ बुला लो साथी बुला लो उनसे कह दो कि भैया माँ इनका जो है इनका मौसिया घटाओ पापा का हटाओ चाचा का हटाओ इनका जो है ऐसी कुछ बना दो सिस्टम कि वही माँ जो है उन तक तुम्हार फोटो रील इस अपना पहुंचे।
1: अब विनय भैया यह ही गाना कि मने कहू जात है तीन को गवाह कहूँ तो भैया पहले कुछ ना करी लेकिन पहले रील बना एक दन दे डाल दी
0: हाँ।
1: तो अब कुछ पूछे जरूरत नहीं है बस देख लो कहाँ घूम रहे
0: देखो अब बड़ा मंगरू है
1: हाँ।
0: चल रहे हाँ, जय जय बजरंग बली तो चल रहा
1: हाँ।
0: लेकिन फोनो साथ में चल रहा बजरंग बली कह रहे आओ आओ चले आओ दादा तुमका हम
1: भंडारो चल रहा आ कहते हैं भैया वो पकड़े हैं प्रसाद और भैया बना रहे वीडियो
0: तो अच्छा चलो ठीक है ओम एक गवनई और बिल्कुल तैयार है सुना दे तुमका
1: हाँ भैया बिल्कुल
0: नचियो
1: अरे बिल्कुल देखो खड़े हो गए हैं पहले
0: लेव, लेव, लेव, लेव, लेव, लेव, लेव।

0: भैया 10:41 का समय हो चुका है और आप सब जने बने हो सुगंध माटी की मैया कार्यक्रम मैया और ओम भैया।
1: हाँ विनय भैया।
0: तुम यार लागत है कि ऐसी वैसी तिरछा वरछा देखा करते हो
1: भैया। देखो चारों तरफ निगाह रखे चाहिए और आपका बताए ना।
0: बहुत गजब की बात कहे हो, चारों तरफ निगाह रखे।
1: अरे भैया
0: देखो जब हम पंचे चले रहन ही आते में जब चले रहन तो का कहे रहन।
1: अरे रेलगाड़ी वाली
0: इंजन बैठे है ना वो डब्बा अलग है वो हमारे पंचन साथ है हमार जो दोस्त है साथी है हाथी है यार है देवता है दयाओ है पीतर है ये सब जने रेलगाड़ी में बैठ नहीं बैठ और देखा जाए।
1: हाँ।
0: देखो मेल के हम कह रहे हैं कि तो पंचे जो है अपन संदेश भेजो मेल भेजो तो भेजिन है जगदर राम साहू भैया नागर कोहरा जिला छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन प्रेम दुष्यंत प्रांजल। अरे बहुत जने मेल करीन है बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: भैया ये देखो इंद्रपाल मिश्रा भैया भेजिन है अमृता मोहली सीतापुर से लिखा है नोम भैया विनय भैया राम राम और लिखा है सगरे जो ग्रामीण सोचता है उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: अशोक कुमार भैया लिखे हैं रायपुर ओडारा मितौली लखीमपुर खीरी से झक्कास लागे रहा है इनका।
1: हाँ।
0: अच्छी बात है। और सिमरन मेल करी ने लिखती है कि नमस्ते ओम भैया और विनय भैया आज तो आते ही धमाल मच गया। अरे दादा यही मारे तो हम आए थे कोशिश करी थी कि भाई आई तुमका पंजन के नीक ला गए।
1: हाँ।
0: के अलावा देखो
1: धर्मेंद्र विश्वकर्मा भैया लिखा है दोनों जनन का राम राम कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है तो भैया इसे सुने रहो।
0: राजेश कुमार जी भैया के लिखे थे कि आपका स्वागत है और जुताई करके आए हैं। अच्छा खेत को
1: पानी आने भैया पी लो गुड़ खा लो
0: आराम तेने जो है और खरीफ की फसल की बुआई में धान की फसल की नर्सरी। हाँ देखो ये सब चीजन की जरूरत है और हमका करेक्ट चाहिए। अमित यादव का मेल है कहाँ लिखा थे राम राम लिखा थे भैया राम राम और कहाँ से मेल किए हो भाई यू ना लिखो
1: यार ये भैया बाराबंकी शायद गेम है ना
0: पता नहीं कहाँ लेकिन यहाँ बताए नहीं कुछ बात लिखते यू नहीं बतावत कहाँ आसिफ भैया मेल करी ने लिखते हैं आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं।
1: हाँ।
0: अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो नाचो मेरे साथ
1: है? हम तो नाच रहे हैं भैया है
0: नौका
1: झूमे जा रहे हैं। और घनश्याम भैया लिखा है इनकी जो है फैजाबाद रोड लखनऊ तेरे लिखा है और कह रहे हैं कि भैया कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और भैया साफ सफाई रखो।
0: देखो रोशनी मेल कह रही है कितने राम राम विनय भैया राम राम ओम पर ओम भैया की जो है राम राम लिखी ने आपके
1: और ये भैया चंडीगढ़ तेरे कार्यक्रम सुन रहे हैं
0: दीदी नीलू शर्मा और बबीता सब जने हैं और इसके अलावा शैलेश कुमार भैया कहाँ कहाँ थे बताओ
1: भैया। शैलेश कुमार भैया के अंदर है नीलू शर्मा ये रूप चंदेला तेरे भेजा है और ये लिखा है कि जो उन कार्यक्रम हुए माटी की सुगंध बहुत अच्छा लग रहा है जो उन जोड़ी है ओम भैया और विनय भैया के वही राम राम और बहुत नीक लग रहा है।
0: और भाई के अलावा देखो बहुत सारे मेल हमारे पास औरों हैं और

0: 10:44 45 मिनट का होगा है समय हो चला है। पवनपाल शैलेश अनुज मेल करी ने कहा लिखे ने गुड मॉर्निंग और कार्यक्रम इनका अच्छा लग रहा है मुझे गाना रे दादा हिया हम पंचे मार सोची तेन की भैया लोगन के ठीक लागे नीक लागे गाना बजाई ई मार अपने हम घर ख्यात जोते डाले गाना। अब बताओ हम फरमाइश बजाई तुम्हार की हिया हम तुमका बढ़िया बढ़िया अरे इतन बढ़िया गाना बना
1: के बढ़िया हमारे झूमे जा रहे हैं भैया देखो सब श्रोता हम हो पंचे मार
0: नहीं ठीक करो हां नहीं ठीक करो बताओ देखो जुड़े हो भाई फिर 2 बजे हमारा कार्यक्रम होते वहां जो है गाना पठाओ अपन पवन पाल का लिख रहे
1: हां भैया बताओ
0: बाजार सुकुल अमेठी से मेल करी ने राम राम लिखे ने भाई राम अच्छा। राम और विनीत कुमार लिखते हैं कि अर्धापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से मेल करी ने जिला सीतापुर से हाँ अच्छा और सुगंध कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद दीन ये भैया धन्यवाद
1: भैया ये वकील अहमद भैया भेजा है ये लिखा है इनके भैया अरबी के गुड़ाए हो चले अरबी तो जनता है भैया
0: अरे काहे नहीं
1: अरे भैया अरे भैया भैया गुड़ाई चल रही है और ये कटका हथूरी सीतापुर से भेजा है भैया
0: और भाई के अलावा सुनील सिंह इटाउआ कैसरगंज बहराई से मेल करी ने और सुगंध माटी कार्यक्रम सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े खातिर सुनील सिंह भैया और गीत बिल्कुल झमकौआ
1: बिल्कुल
0: आईस है कि तुमका यू न कहा परी कि हमका यू वाला गाना सुनवा दे वो वाला गाना सुनवा बस बस बस शुरू हो जाओ लगाओ
1: भैया
0: लगाओ

0: त्योहार है हमारे पंचांग के, जैसे आज का त्योहार है तो यो पति की जो है लंबी उम्र खातिन रखा जावत है, और जो त्योहार है अपने देश में जो त्योहार मनाए जाते हैं तना तना के, ऐसे तो अच्छे लागत यार ये दादा त्योहार वारा यो आई अब यो करब यो आ रही यो करब, लेकिन अब देखो पांच महीना पांचवे महीना में पंचे हन मही चल रहा, अब देखो पहले खिचड़ी भाई शिवरात्रि भाई होली आई नवरता भय वही के बाद ही फिर जो है निवर्तन के बाद जगन्नाथन की पूजा भय
1: बड़ा मंगल चली
0: बड़ा मंगल चली ना, देखो आज बड़ सावित्री को बड़ तो है, देखो अहिमा जो है ऐसा तो ठीक है कि भाई त्योहार आए आपका पंजन सबका जोड़े रहते हैं, लेकिन अम्मा मार खैंस करे रहती हैं जहाँ चार दिन बीते अब यो सामान लावा है फोन करिए हेलो कहाँ कह रहे हो अरे कहा बताई दूंगा अच्छा ठीक है तुनुक जो है रवा लेते आओ अब कहा होगा अरे पंजीरी भूजे गए तो तो देखो त्योहार हमका सबका जोड़े रहा थे
1: और यहाँ चीज देखो पंजीरी मैया जब भैया पंजीरी फाको मैया वही के बाद जब फा बोलो तो वह पंजीरी सगरी आ जाते बाहर
0: नहीं देखो प्रसाद है बाहर न करो तो जो है अच्छी बात है। और त्योहार की देखो त्योहार की बात करें जैसे सब जने आज बढ़ते रही हैं और भाई हमारी तरफ से आकाशवाणी परिवार की तरफ से सबका बहुत बहुत शुभकामना और सब जने बढ़ते रही है और भाई सबकी मनोकामना पूरी हो
1: भैया सब जने जो पति है उनकी लंबी उम्र होए आयु होए
0: वो हम याद चीज बताई तुमका जैसे मैंने बताई थे इनकी मेले जाते हैं मंदिर जावत हैं सब जने रील बनावत तो आज जानो बहुत जगह यो होती बहुत जगह नहीं लगभग हर जगह होती है मालूम है जो तमाम बहुरिया होती हैं तो वी घर में इसे अपने चाचा कुआ वी चाचा वी चाचा वी चाचा वी चाचा आए तो सासू जो है ना जो सास होती अम्मा होती है दबाए रखती है कि बताए ऐसा करो उनकी बहुरियत ना बताया उनकी बहुरियत ना बताओ बहुत तुम बातें करती हो तुम
1: अच्छा
0: ऐसा कहीं लेकिन जब इतना मौका आवत ब्याह हो या इतना के बवा अरे दीदी तो हम तो जानी तुम नहरिया वाले बरगदे तरफ गए तुम तो ऐसी है और दीदी खुश की आज तो जो है भैया
1: आज मिल गए अम्मा रोज भैया टोक देते
0: यही देखो यही जो है प्रेम है यही व्यवहार है और यह आपस में यहाँ सबका थमका सबका ज्वाला था त्योहारन के माध्यम से।
1: हाँ भैया
0: एक गाना
1: हो भैया देखो घड़ी कितनी तेज चल रही
0: है। अरे घड़ी चले तो गाना सुने तो पहले हुआ इतना मजा आवत तुमका हुआ घड़ी देखा तो है कहाँ जाए तुमका
1: जाए कहाँ
0: अरे गाना सुनो गाना सुना हो तुम कहाँ परेशान हो

0: ओम देखो 10:55 हो गए हैं और जो भैया हमारे पंजन साथ है रेलगाड़ी मैया है ना वही पंचे इंतजार कर रहे हैं कि उनका नाम नहीं ले रहे टिकट कटाए ने और नाम नहीं ले हो तो फिर गुस्सा जी है
1: तो यही गाड़ी मैया देखो बबीता राव बहनी अपन जो है ईमेल भेजा है नी गोसाईगंज लखनऊ तेरे और लिखा है ना आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और जो है पापा भाई रजनीश बहन विनीता रोशनी रावत नीलू सब जने बड़े सिद्धत तेरे सुनने हैं।
0: आकाश कुमार भैया मेल करीन है लिखते हैं मुरारपुर दरियाबाद बाराबंकी से और जो है आप तारीफें लिखो भैया बहुत अच्छी बात है। आकाश कुमार ब्रजेश भैया मेल करीन है अजय सिंह भैया मेल करीन है प्रिंसी मेल करीन है कहा लिखती हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा सांडी जनपद हरदोई से मेल करीन है नमस्ते लिखीन है और कार्यक्रम इनका अच्छा लग रहा है अच्छी बात है। और अजय सिंह सोनकर भैया मेल करीन है कहाँ से करीन है और सीतापुर से मेल करीन है हमका बहुत बहुत आभार। लेकिन भैया जो देखो एम के राज का नाम है इनका मुनेश कुमार सीतापुर से वो मेल लिखी ने
1: और भैया ये सोनू परवाना भैया लिखे हैं नंजू बहनी के यहाँ याद कर रहे हैं तो भैया संजक सुनो
0: आई है बतल आई है चार बातें करी है चार बातें सुनाई है। चलो 10:56 का समय हो गया है और भैया जो है अब ओम तुमका चलक पड़ी
1: भैया देखो मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा चले क्या है आई एकदम आनंद आए जाते अपने श्रोता पंजन से मिलके इस लागत है कि बस बैठे रहो
0: लेकिन भैया जो है समय है ना समय के साथ हमका सबका चले
1: तो भैया सब जने अपन ध्यान रखो है फिर बहुत जल्दी मिला जी
0: 10:57:12 का समय हो चुका है कार्यक्रम
1: का भैया राम जोहार
0: सुगंध माटी से हम अब विदा ले अबे लेकिन न्यूज पढ़ के फिर वैसी मुलाकात करी थी अच्छे अच्छे गाने के साथ।

नमस्कार, 11 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पते के साथ ही परीक्षा केंद्र के चयन के लिए पहली और दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किसानों और उद्यमियों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत दी जा रही सुविधाओं और अनुदान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक उद्यम स्थापित हो सके। श्री मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों के उत्पादों का अधिक से अधिक दाम दिलाएं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर बड़ी भूमिका निभाएगा। लखनऊ के निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर को अगले चरण में वेलनेस सिटी से जोड़ा जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास वेलनेस सिटी योजना विकसित की जा रही है, जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि होंगे। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर रोड से ग्रीन कॉरिडोर को जोड़ने के लिए आर्मी लैंड से मरी माता मंदिर के बीच सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है। इस सड़क के बनने से गोमती नगर विस्तार से अर्जुनगंज की ओर जाना आसान होगा और लगभग 10 लाख की आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रयागराज में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए प्रशासन ने सिविल लाइंस हनुमान मंदिर से सुभाष चौराहा तक नो रिक्शा जोन घोषित किया है। जिले में 60,000 से ज्यादा ई रिक्शा संचालित हैं, लेकिन इनमें करीब 30,000 ही पंजीकृत हैं। रामबाग फ्लाईओवर, लक्ष्मी टॉकीज चौराहा से पुलिस क्लब चौराहा, हेलीकॉप्टर चौराहा, कचहरी से विश्वविद्यालय मार्ग समेत कई व्यस्त रास्तों पर ई रिक्शा संचालन प्रतिबंधित रहेगा। फिलहाल ये व्यवस्था ट्रायल के तौर पर लागू की गई है। सफल होने पर शहर के अन्य मार्गों पर भी इसे लागू किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 107 FM रेनबो।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट।
4: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
5: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा

0: संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें। वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ग्यारह बज के 6 मिनट और 45 सेकंड का वक्त हो चला है और ये वक्त कहता है कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। संदेश आपके, गीत हमारे और इस सफर में आज आपका हम सफर है, आपका दोस्त विनय यादव। फ्रेंड्स चलते हैं, लेकिन चलने से पहले आपको जरा बता दें कि आपको अपने संदेश हम तक कैसे पहुंचा रहे हैं। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं अपने दिल की बात।

0: करते जुड़ता है मन आस्था से संस्कारों से देवभूमि उत्तराखंड से केदारनाथ की दिव्यता बद्रीनाथ का आशीर्वाद गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं संस्कार और संकल्प की पहचान सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

फ्रेंड्स 100.7 एफएम रेनबो पर आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत। हमारे 11:11 और 15 सेकंड्स का वक्त हो चला है। आप हमसे फोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और फोन नंबर आपको हम बता देते हैं 0522-223-8852 यानी 0522-2238-852 और 2238-825 ये नंबर है हमारे। आप अपने संदेश हम तक भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं कि फोन लाइन पर हमारे साथ अभी कौन आ चुका है। बहुत देर से वेट कर रही है, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, कहाँ चले गए जी? शायद कहीं चली गई हैं। हमने कहा था कि थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन भाई क्या कहा जा सकता है। रामराज जी ने मेल किया है और इन्होंने मेल हमें क्या रहा है, बरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भान शंकर भैया पीर मोहम्मद और पप्पू जी मनीष धीरज मधु मिर्ज़ा इमरान बेग और प्रोग्राम के बारे में इन्होंने लिखा है और लिखते हैं कि सभी नाम पढ़ दीजिएगा बड़ी कृपा होगी जी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सारे नाम पढ़े जाएं और सारे मेल्स भी पढ़े जाएं। उसके अलावा वैभव प्रकाश जी ने मेल किया है नागपुर महाराष्ट्र से और सॉन्ग की रिक्वेस्ट किया है ना जी। सॉन्ग तो नहीं प्ले होते हैं, इसमें प्रोग्राम ही ऐसा है ना, संदेश आपके और गीत हमारे, है ना। तो अगला सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को

0: सस्पेंस प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे 11:17:30 का वक्त हो चला है और फोन लाइन पर हमारे साथ बड़ी देर से कोई इंतजार कर रहा है। भैया ज्यादा इंतजार हम अपने लिसनर्स को नहीं करा सकते, नहीं तो हाँ पता है आपको डांटने लगते हैं। चलिए बात करते हैं कौन है। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, ये आवाज किसकी है भाई?
1: वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार सर।
0: वालेकुम
1: मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: आप कैसे हैं?
0: अरे नाम तो बताइए अपना।
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं।
0: शमा परवीन अंसारी जी,
1: जी
0: स्वागत है आपका। संदेश क्या है आपके?
1: और बताइए आप कैसे हैं सर?
0: जी हम बहुत अच्छे हैं।
1: सर आपका प्रोग्राम सुबह से सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं। सुबह पार्टी के प्रोग्राम सर आपने बहुत अच्छा किया, अगली बार जल्दी आना और ओम भैया को जरूर लेके आना।
0: अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिख लिए हैं, ये हम मेरी बात भी तो सुन लो ना भाई। समा जी ये हाँ मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। संदेश क्या है? संदेश आप अपने संदेश आप जो मैसेज देना चाहते हैं हमें वो बताएं।
1: सर मैसेज आज का हम ये देना चाहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और बाहर निकलें अपना बॉटल पानी का और छाता लेकर के भी निकलें और अपना ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
1: भाई बहन का नाम लेना चाहते हैं?
0: हाँ भाई बहन का नाम, अच्छा ठीक है जल्दी से ले लीजिए।
1: गुलाब साफी, शहबान अंसारी, साजिया अंसारी, आरजे पूनम और रिंकी पिंकी, वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार।
0: समाजी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी फ्रेंड्स ये तो समाजी थे सीतापुर से, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं 0522-223-8852 ये नंबर है हमारा। और देखते हैं मेल्स भी नज़र डालते हैं, भाई बहुत सारे लोग हमसे मेल्स के जरिए जुड़े हुए हैं और संदेश आपके गीत हमारे में मेल किया है सिवा में विनय सर जी। जी जी संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम एम के नाम आपने मुनीश कुमार जी भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से लिखते हैं और रोज़ सुनता हूँ ये भी लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोग्राम की जो आपने तारीफें की है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और

आपने संदेश नहीं लिखा। लिखते हैं कि मेरा आपसे निवेदन है कि जब सीयूजी नंबर पर कॉल आए तो कृपया फोन उठाने के बाद श्रोता का नाम और पता अवश्य पूछ लें। ऐसी बात तो नहीं है, हम लोग तो ध्यान रखते हैं ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सारी चीज़ों पर हमारी ध्यान देते हैं। 11:20 और 22 सेकेंड्स का वक्त, एक और खूबसूरत ट्रैक हम आप तक भेज रहे हैं, आप इंजॉय करिए, हमारे साथ बने रहिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

फ्रेंड्स 11:24 और 58 सेकंड्स का वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं. संदेश आपके गीत हमारे और मेल्स हम तक बहुत सारे पहुंच चुके हैं. चलिए देख लेते हैं, नहीं तो भाई लोग तो बस क्या ही बताएं, है ना. माजरे ऐसे हैं. इंद्रपाल मिश्रा जी लिखते हैं, हमारे गांव में जब से टंकी लग गई है लोग खुला छोड़ देते हैं और हमारा खेत भरा रहता है. पानी की बचत करें. ये बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि पानी की बचत हमें ज़रूर करनी चाहिए. अमृता मोहली सीतापुर से आप हमसे जुड़े इंद्रपाल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और अनुज जी ने पीर से मेल किया है और प्रोग्राम की बात उन्होंने लिखी है और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने की है या फिर बहुत सारी बातें आपने लिखी. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. टाइगर जिन्हें मेल के मायने में सबरीन का मेल है, विलेज बिलई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से और लिखती हैं कि मेल कर रही हूँ. गुड मॉर्निंग. और संदेश हमारे ये हैं कि रिश्ते बारिश की बूंदे जैसे हैं, जोर से पकड़ो तो हाथ से फिसल जाए और हथेली पे रखो तो मोती बन जाए. क्या बात है. और ऐसा मानना सीखो हाथ से फिसल जाते हैं. जी बहुत अच्छी बात लिखी है सबरीन, आपने बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया है. बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत मेल के लिए. गुलाबसा जी क्या लिखते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग. संडीला से इन्होंने मेल किया है और गर्मी बहुत तेज़ है. हाँ जी गर्मी तो बहुत तेज़ है. और लिखते हैं कि पानी की बॉटल ज़रूर साथ में लेकर चलें. हम तो यही कहेंगे कि ना इतनी गर्मी में अगर बहुत ज़रूरी ना तो जाइए ही ना. पानी की बॉटल काहे उठाएंगे अपने सर पर हैं.

चलिए 11:26 और 50 सेकंड का वक्त, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपका इंतजार कर रहा है, तो आप एंजॉय करिए। लौट कर आते हैं फिर से, आपके मैसेजेस लेंगे, मेल्स लेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। 0522-223-8852 यानी 0522-2238852 पर आप हमसे जुड़ सकते हैं।

0: कीप लिस्निंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: ग्यारह बज के 48 मिनट और 15 सेकंड्स का वक्त हो चुका है और अभी आप सुन रहे थे जो प्रोग्राम वो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हो रहा था और अभी आप लखनऊ से रिले सुन रहे हैं और देखते हैं मेल तो बहुत सारे हैं हमारे पास, जल्दी से पढ़ देते हैं। नीलू शर्मा जी का है और रूपपुर से इन्होंने मेल किया है और प्रोग्राम इन्हें अच्छे लगे और लिखते हैं कि अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में कदर जो लोग नहीं करते हैं और अपने बच्चों और माँ बाप जो होते हैं सारी धन दौलत अपने बच्चों पर निछावर करते हैं और उनकी दो रोटियां देने के लिए हजार ताने सुनते। देखिए कहने का मतलब इतना है कि अपने जो पेरेंट्स हैं मम्मी पापा हैं और उनका ख्याल हमें रखना होता है। मेल आपने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत घुमा के लिखा है रॉयल अमित यादव जी। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां है वहीं पर रहते हैं मगर दूसरों के उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रेया यदुवंशी ने हाँ नीचे नाम लिखा है और गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नकटुआ बाराबंकी से आपने मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और रवि कुमार जी ने मेल किया है और सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, जी सॉन्ग आप सुनेंगे। ज़िला अम्बाला हरियाणा से इन्होंने मेल किया है। रवि कुमार, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका और तमाम सारे लोग हमसे जुड़े हैं। उसके अलावा मेल हम तक पहुँचे हैं आसिफ जी का और इन्होंने भी मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो संदेश हैं और हम चाहेंगे कि ये संदेश जो आप लोग मैसेज देते हैं ना इसे अपनी ज़िंदगी में उतारना भी है ना, उसे करना भी है। 11:49 का वक्त और एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपके लिए आपके रेडियो सेट पर, आप एंजॉय करें प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे आपके साथ। मैं हूँ आज आपका दोस्त विनय यादव।

0: जाए मल्हार।
1: 11:54 का वक्त हो चला है और हमारे साथ फोन लाइन पर कोई है, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं, उनका संदेश क्या है। हेलो
2: हेलो सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होने वाला है। अपना नाम बताएं जल्दी से और अपना मैसेज हमें बताएं।
2: जी सर, एफएम रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी वही जानी पहचानी दो आवाजें बात कर रही हैं, रिंकी और पिंकी, जगदीशपुर दीवानों के शहर, जिला रायबरेली।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें जो आपका मैसेज है ना संदेश, वो जल्दी से बताएं।
2: जी जी सर, सबसे पहले तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि आज की माटी का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा, एकदम झकझुआ प्रस्तुति लगी आप दोनों भाइयों की। और सर मेरा मैसेज ये है कि समंदर देख के इरादे कभी मत बदलिए, बस हिम्मत रखिए और हौसला रखिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद रिंकी हमसे जुड़ने के लिए। अब पता नहीं आपका नाम पिंकी भी है।
2: एक रिक्वेस्ट है, आप कभी हेलो एफएम में भी आइए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी आएंगे, ठीक है ना।
2: धन्यवाद,
1: नमस्ते। और देखिए ये थी पिंकी हमारे साथ में, और 11:55 का वक्त हो चला है, और हमारे साथ हमारे जो है साथी एंकर आ गई हैं और कह रही हैं कि विनय आप जल्दी से ये जो चेयर है ना

सीट जिस पे बैठे हो तुम छोड़ दो, नहीं तो फिर बात खराब हो जाएगी। तो 11:55 और 30 सेकंड्स का वक्त हो चला है। विनय यादव आपसे इजाजत लेते हैं और फिर कभी और किसी और दिन आपसे मुलाकात करेंगे। तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।

मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर विकास खंड स्तर पर ग्रामीण मिनी स्टेडियम का विकास करेगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अभाव ना हो। गोरखपुर में बनने जा रहे इंटरनेशनल स्टेडियम को 392.94 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए परिणाम घोषित करने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक नोटिस जारी किया है। CBSE ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वे एक संचरित समीक्षा प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। CBSE ने सूचित किया है कि छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपये है। इस बीच समस्याओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन 26 से 29 मई के बीच किए जा रहे हैं। चित्रकूट में जेठ माह के अंबावस मेला के मद्देनजर आज पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने निर्देशन में प्रमुख मंदिरों और घाटों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग अभियान के दौरान डॉग स्क्वाड और LIU की संयुक्त टीम ने रामघाट, आसपास के मठ मंदिरों और क्षेत्र की चेकिंग की। इस दौरान बम निरोधक दस्ते ने परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण भी किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870

0: 001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।

0: कुछ नहीं,
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

और आज की जो पार्टी है फन वाली वो मेरी तरफ से है क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा जिसमें शालिनी आ चुकी है लेकर फैमिली फन है ना, इसीलिए सोचा इस प्यारे से गाने से शुरू किया जाए और बाद में कोई बात की जाए। तो आज हम क्या कर रहे हैं घर पर स्माइल के साथ रेडियो सुन रहे हैं, कितने आसानी से बताते हैं ना रेडियो सुन रहे हैं भाई। और रेडियो सुनने के साथ क्या कर रहे हैं, हाँ बहुत सारे लोगों की आज छुट्टी होती है, छुट्टी करनी नहीं है किसी की छुट्टी का कोई इंजॉय करना है ना। तो आज क्या किया जाए, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हैं, अपने भाई बहनों के साथ बैठे हैं, बच्चे हैं घर पे, तो उनसे आज चलिए बचपन की जो फनी शरारतें थी हमारी उनको शेयर किया जाए और अपने बचपन में वापस लौटा जाए। करेंगे ना ऐसा हमारे साथ, और करते करते आपको हमसे जुड़ना है, अपनी बात को हमसे शेयर करना है, कहाँ पर, fmakashwani@gmail.com पे। तो देखते हैं होता है कितना ढेर सारा फन, अगर हम चाहेंगे तो हम फन करेंगे, अगर हम चाहेंगे तो उदास हो जाएंगे, तो हम क्यों ही चाहेंगे उदास हो, है ना। तो चलिए एक घंटा मिलकर करते हैं फन मस्त मस्त प्यारे से गीतों के साथ। और सबसे बढ़िया वाले ये जो शरारत होती थी, अच्छा बचपन वाली शरारतों के आगे शालिनी ने फनी क्यों लगाया, क्योंकि वो जो शरारतें होती थी ना वो रियल में फनी होती थी, और अगर वो शैतानियां अगर हम जब बड़े हो गए हैं करें ना तो क्या कहा जाएगा, सोचिए सोचिए, वो वर्ड नहीं हम बोलने वाले लेकिन उसके लिए क्या कहा जाएगा आपको तो बस फनी शरारतों की होने वाली है बात। और मेरी तरफ से शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले तो अक्सर और हमेशा बच्चे जब स्कूल जाने का मन नहीं होता है तो बुखार का बहाना कम बनाते, पेट में दर्द हो रहा है ये ज्यादा कहते हैं, शायद इसलिए अब समझ में आया कि वो दर्द दिखाई तो देता नहीं है पेट के अंदर का, बुखार बताएंगे तो भाई मम्मी टच करेंगी, देखेंगी, थर्मामीटर लगा देंगे, लेकिन पेट के दर्द के लिए कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना है जो पता चल सके कि दर्द हो रहा है या नहीं। तो चलिए कुछ इस तरह की शरारतें भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा साथ दीजिए प्रोग्राम फैमिली फन में।

दोस्तों शुरुआत कर दी है ना आपने अपने घर पे शरारतों की लड़ी लग गई है ना। एक नहीं होती थी, दो नहीं होती थी, तीन नहीं, हर वक्त बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। और आज जब हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास हैं, जब वो कुछ करते हैं तो कभी कभी तो हम बहुत खुश होते हैं और कभी कभी तो इतना नाराज होते हैं उन पर कि पूछिए मत, कि इसको कुछ पता नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं आता है, ये कैसे कर दिया तुमने। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, उन्हें प्यार से झप्पी दे देते हैं, यानी कि गले लगा लेते हैं बच्चे को। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को डांटते मारते भी हैं, पनिशमेंट भी दे देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दिन उन्हें याद रखने चाहिए, है ना। और याद है आपको, चुपके से फ्रिज से मिठाई या चॉकलेट निकाल कर खा लेना, और अगर जब पूछी जाती थी तो फिर क्या कहना, नहीं नहीं हमने तो नहीं लिया, अरे हमने देखा ही नहीं मम्मा, बिल्कुल, अरे पापा ने तो नहीं खा लिया, और अपना इल्जाम किसी और के सर पर मढ़ देना। याद आ रहा है ना आपको।

0: ¿Agua chunca?
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
4: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
5: लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।

अच्छा दोस्तों, जब सैटरडे संडे होता है तो बड़ी खुशी होती है ना। लेकिन जैसे ही संडे बीतता है यानी कि रात होती है, तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि नेक्स्ट डे से उसी काम में फिर से लग जाना है, भाग दौड़ की जिंदगी में फंस जाना है। लेकिन ये जो भाग दौड़ की जिंदगी है ना, इसे किसने चुना? हमने ही ना। अपनी जरूरतों को पूरा करना, करते करते हाँ ये कह सकते हैं कि अपनी नहीं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनों की जरूरतों को पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे पड़े हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन लेकिन जी हाँ, हम भूल चुके हैं खुद को कि हम कहाँ हैं। कभी तो अपने लिए समय निकालें। और ये जो हम कहते हैं ना कि इतनी थकान हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब चैन मिलेगा, तो मिलेगा। खुद से आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। चाहे वो समय आप अपनी पुरानी बचपन की यादों को ताज़ा कर लीजिए, अपनों के साथ बैठ जाइए, बच्चों के साथ बच्चा बन के देखिए, कहीं उस जगह पर जाइए जो आपको जगह बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आपने बहुत समय से उस जगह को देखा, क्या मतलब उस जगह पर गए नहीं, लेकिन उस जगह के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ये सारी चीज़ें जब दोस्तों आप करेंगे ना, तो सुकून ज़रूर मिलेगा। और यही सुकून जो है ना, आज के समय में बहुत बड़ी दौलत है, जिससे कि आप रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। और उस रिलैक्स होने के बाद जब आप काम करते हैं, जब काम करने के लिए सोचते हैं, तो वो काम बहुत से भी बहुत अच्छा होता है। चलिए, ये तो बचपन की बातों को याद दिलाने के लिए आपको वहां तक लाए थे। और नेक्स्ट वाली कौन सी आपकी फनी आदत रही होगी, बताइए तो जरा। जब हमारी पसंद की चीजें टीवी पे नहीं लगती हैं, तो हम क्या करते थे? बहुत आसान सा काम था, रिमोट ही कहीं छुपा देते थे और खुद ही ढूंढने का नाटक करते थे। ऐसा किया है आपने? सोचिए जरा।

दोस्तों 12:30 हो चले हैं, आप सभी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम फैमिली फन, जिसमें शालिनी है आपके साथ।

दोस्तों याद आ रही है ना आपको अपनी बचपन की शरारतें, और उनको हम रिलेट कर पा रहे हैं ना अपने बच्चों से, जिन पर हम कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा गुस्सा

होते हैं। और देखिए गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं और बच्चों की भी स्कूल की गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, समर वेकेशंस हो रहे हैं, साथ ही साथ ढेर सारा होमवर्क भी दिया जा रहा है ना। और अब जब आप सोचेंगे ना बच्चों को काम कराने के लिए, तो जैसा आप किया करते थे, होमवर्क पूरा ना होने पर अक्सर क्या होता था, हमारी कॉपियां ही गुम हो जाती थी, है ना। और न जाने उस गुम होने की कॉपियों की क्या क्या कहानी बनाते थे कि स्कूल ले गए वहाँ मिली नहीं, और मिली तो कैसे मिली, किसी को दिया भी नहीं और हमें घर पर भी नहीं मिली, और जब ज़्यादा पूछताछ होती थी तो हम चुप हो जाते थे, और लास्ट में जब मम्मा हमारी बैग खोलती थी, सारी बुक्स कॉपियाँ बाहर निकालती थी, तो किसी बुक के ही बीच में वो कॉपी छुपी होती थी ना। हम सभी को बचपन में ये काम भी नहीं आता था, ना सही से झूठ बोल पाते थे, ना सही से कोई भी चीज़ छुपा पाते थे, और अपनी ही बातों में पकड़े जाते थे। और पकड़े भी क्यों ना जाएं, क्योंकि जो हमारे

छुपती थी, सारी बुक्स कॉपियां बाहर निकालती थी, तो किसी बुक के ही बीच में वो कॉपी छुपी होती थी ना। हम सभी को बचपन में ये काम भी नहीं आता था, ना सही से झूठ बोल पाते थे, ना सही से कोई भी चीज छुपा पाते थे, और अपनी ही बातों में पकड़े जाते थे। और पकड़े भी क्यों ना जाएं, क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारी माँ होती है खास तौर पे, हमारी हरकतों से ही भाप जाती है कि इसने सही किया है या गलत, है ना।

दोस्तों 12:40 और 3 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में। आज हम फैमिली फन की बात कर रहे हैं और उस फन से याद आ गई हमें बचपन की सबसे फनी शरारतें जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, शहर की बात हो या गांव की, सारे बच्चे शरारती होते हैं, बस शरारतें उनकी अलग अलग होती हैं। जो गांव के बच्चे शरारतें कर पाते हैं वो शहर के बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जब गांव में खेतों में पानी लगाया जाता है ना, सिंचाई की जाती है जिसे पानी लगाना कहते हैं, तो वो ट्यूबवेल चलता है और वहाँ पर एक बड़ा सा गहरा गड्ढा भी होता है, बहुत गहरा नहीं, लेकिन उसमें बच्चे गर्मियों में बहुत इंजॉय करते हैं। उस पानी में खूब सारा नहाते हैं, कई गांव में नहर भी होती है, तालाब भी होती है, लेकिन उन्हें ऐसा करने पर डांट भी बहुत पड़ती है। जब वो शरारत बहुत ज़्यादा वाली शैतानी में बदल जाती है, क्योंकि उससे खतरा होता है कि बच्चा छोटा है और जगह ज़्यादा गहरी है।

और जस्ट उसके धार के नीचे अगर आके आप नहा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमारे मम्मी पापा बहुत नाराज़ होते हैं। बाग में जाना, आम तोड़ के लाना, कुछ ना कुछ तोड़ के लाना और वहाँ से भगाए जाना, ये सारी जो शैतानी है ना दोस्तों, वो शहर में नहीं कर पाएंगे आप चाह कर भी। और शहर वाले बच्चे कैसे करते हैं, जब गर्मियों की छुट्टी में वो अपने नाना नानी के घर या बहुत सारे बच्चों के दादा दादी का भी घर होता था गाँव में और वो शहर में रहते थे अपने मम्मी पापा के पास, तो जब हम जाते हैं मिलते हैं तो इस तरह की ढेर सारी शैतानियाँ करते है ना। सबकी अलग अलग सोच, सबकी अलग अलग खुशी।

0: लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: हर रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है, दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है,
3: रंग दे गेरुआ।
2: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है,
4: मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को।
2: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर, सुनना ना भूलें सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
5: सात रंग का इंद्रधनुष है,
6: सात सुरों की सरगम है,
7: सात जन्म है सात समंदर,
5: साथ हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के सतरंगी रंग
6: FM रेनबो के संग।

12:54 और 44 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शत्रुपा को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात में आज हम बात करेंगे आपके वीकेंड का प्लान। भाई सैटरडे संडे आप क्या कर रहे हैं बस बता डालिए, हमसे जुड़ जाइए fmakashwani@gmail.com के जरिए और सुनते रहें क्या FM रेनबो शालिनी के साथ।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से देश में कई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है, जबकि हर जिले में स्टेडियम बनाने का भी काम किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। श्री चौहान ने महाराष्ट्र में आयोजित महाआवास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत को लेकर किए गए आह्वान के मद्देनजर वाराणसी में बनारस रेल इंजन कारखाना में आज पूल्ड वाहन दिवस का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, ईंधन बचत और उपलब्ध संसाधनों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग का को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के तहत बरेका में विभागाध्यक्षों और अधिकारियों ने साझा वाहन व्यवस्था अपनाई। कई अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए साइकिल से कार्यालय पहुंचे। अलीगढ़ में नगर मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता साइकिल से कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिजघाट में आज वट सावित्री और शनिचरी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाओं का भी गंगा स्नान कर वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का सिलसिला जारी है। व्रती महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के साथ पति की लंबी आयु की कामना भी कर रही हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित होगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

और दोस्तों साथ ही साथ ईमेल भी करना है आपको, बताना है आपने वीकेंड का प्लान, आप क्या करने वाले हैं संडे सैटरडे या नेक्स्ट, क्या प्लान है आपका कहीं घूमने जाने का, कहां पर बताना है fmakashwani@gmail.com पर, और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: एक बजकर नौ मिनट और पचास सेकंड हो चले हैं दोस्तों, और आप सभी लोग सुन रहे हैं एफएम रेनबो 100.7। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बैन-उल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद और भूमि पूजन प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में हलचल है, इन हालात में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बेहतरीन मैनेजमेंट किया गया है।
2: बहनों और भाइयों, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सस्सी नेतृत्व में, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंध का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर तेल कंपनियों पर बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी।
1: मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है।
3: विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग एक दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है।
1: प्रोग्राम में रियासती वजीर खेल गिरीश चंद यादव, गोरखपुर के रुकने असेंबली रवि किशन और दीगर मुअज्जज अफराद भी मौजूद थे। ताल नादौर गोरखपुर में वाकई ये बैन-उल-अक़वामी स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। तामीर के लिए 633.9 मिलियन रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 46 एकड़ रकबे में बने इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30,000 अफराद की गुंजाइश होगी। स्टेडियम की तामीर 23 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने गोड धुइया नाला प्रोजेक्ट के पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे का मुआयना किया और जरूरी हिदायत जारी की। दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने मुआशे की तश्कील और दानिश्वरों के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने सिर्फ तरक्की को तेज कर रही है बल्कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद को रोजगार की जमानत भी दे रही है। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मुनक़दा मुश्तरका डिवीज़नल खरीफ पैदावारी सेमिनार का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब शाही ने कहा कि खरीफ सीज़न शुरू होने को है, रियासती हुकूमत की तरजीह किसानों को बेहतर बीज फराहम करना है। मेरठ से प्रयागराज तक चलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर सहूलत कल खत्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इस रूट पर 15 दिन के टोल फ्री सफर की मुद्दत का ऐलान किया था। कल लखनऊ मुनक़दा AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 में मुल्क भर से 50 से ज्यादा सीनियर इंतजामी अहदेदारों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महत्वाकांक्षी AI पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के विजन पर कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसील से तबादला ख्याल किया गया। रियासती तब्दीली कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रियासत सरकारी कामकाज में AI की तब्दीली के लिए कौमी मॉडल बनने की तरफ बढ़ रही है और इससे रियासत के $1 trillion की मईशत बनने के हदफ को नई तहरीक मिलेगी। आज रोशनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 16 मई को माहिर फिजिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मेमन के 1960 में लेजर के पहले कामयाब ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। वहीं आज डेंगू का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए सरकारी तौर पर इस दिन का ऐलान किया गया। इस दिन का मकसद डेंगू के बारे में बेदारी पैदा करना और मानसून से कबल इसके खिलाफ हिफाजती इकदामात को मजबूत बनाना है। ये दिन मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए सादा कंट्रोल हिकमत अमली को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एहतियात, सफाई, चौकसी और बरवक्त इलाज के जरिए डेंगू पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने रियासत के लोगों से मुतालबा किया कि वो अपने घरों, इर्द गिर्द और मुआशे को साफ सुथरा रखने का अहद करें। रियासत भर में आज वट सावित्री का त्यौहार अकीदत

दोस्तों 1:22 और ये देखिए 23 हो चले हैं और प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत। और हमारे बीच में मेल आ चुका है सुधाकर राधे जाधव का और प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वद सानवी, शायद आपने नाम में सभी के नाम लिख के लगाए हैं, बात आप अपनी बता रहे हैं। जाफराबाद से ये हमें मेल कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि धूप ज़्यादा होने की वजह से आज घूमने जाने का कोई प्लान नहीं है, घर वालों के साथ घर में काम की घर के काम में हाथ बटाने वाले हैं। ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी भाई। और वकील अहमद का भी मेल आ चुका है, इन्होंने लिखा है लखीमपुर से जाना है टहलने, इस समय आम के बाग में आराम कर रहे हैं और समोसे कोल्ड ड्रिंक चल रही है, भाई क्या बात है। वकील के ये कहाँ से, ये अच्छा ये लखीमपुर जाना है इनको, लेकिन अभी आम के बाग में है। और ज़िला सीतापुर से हमें लिखकर भेज रहे हैं साइबा साजिया शमा और सभी के साथ में इन्होंने नाम लिखकर भेजा है। और आपके भी मेल का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो फटाफट बता डालिए। तब तक सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आप सभी लोग सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो शालिनी के साथ प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात। और बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल आ चुका है, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री, अभय के साथ में। और इन्होंने हमें कहां से मेल लिखा है, दमदर एयरपोर्ट कलकत्ता से इन्होंने हमें भेजा है। अच्छा, और भी नाम इन्होंने झारखंड से भी लिखकर भेज दी हैं, शिवानी, प्रियंका, देवी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टीसू, आयुषी, अनिरुद्ध। भाई इतने लोगों के नाम आपने लिखे हैं, लेकिन जो बात पूछ

झारखंड से भी लिखकर भेज दी हैं शिवानी, प्रियंका, देवी, जयप्रकाश, रिया जिया, टीसु, आयुषी और निरेदु भाई, इतने लोगों के नाम आपने लिखे हैं, लेकिन जो बात पूछी है वो तो सिर्फ आपकी ही है ना। आज इनको बाजार खरीदारी करने जाना है और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा वैसे ही ये निकल पड़ेंगे। और साथ ही साथ वट सावित्री पूजा की सभी को बधाई दी है। डेंगू दिवस पर सावधानी बरतनी ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने कहा है। पानी टंकी साफ करने के ढक्कन बंद करें और साथ ही साथ नाली की भी सफाई जरूर करें, ऐसा इन्होंने लिखा है। इसके अलावा हमारे बीच में मेल आ चुका है, अनवर अंसारी जी का है और कहां पर से, इन्होंने पंजाब से इन्होंने हमें मेल किया है और खाली इन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिखकर भेजे और फरमाइश लिखकर भेजी है। भाई ऐसा नहीं होता है, ये प्रोग्राम आपसे और हमारी बातचीत का होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल में हम ज़रूर लेंगे फरमाइश आपकी। और ये कहाँ से मेल आ गया है, एक और रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजू भानु और राम शंकर हैं और कई सारे लोगों के नाम लिखे हैं और इन्होंने लिखा है, कल कार्यक्रम के विषय में लिखूंगा, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्ते। आपका मेल तो शामिल कर लिया, लेकिन कल अगर आप लिखेंगे तो कैसे आपका मेल शामिल किया जाएगा आज के विषय पर। भाई ऐसा मत किया करिए। और किसका मेल आया है, एक और मेल है, लेकिन उसके पहले ये गाना सुन लेते हैं और उसके बाद उस मेल को लेते हैं।

सच में सभी से प्यार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, पशु पक्षियों से भी प्यार करना चाहिए, है ना। और ये आप अब अपने दिल वाले प्यार की सोच ले तो वो तो किसी एक खास से होना चाहिए जिसके लिए आप पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार होते हैं, है ना। तो चलिए वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में। और रामेश्वर जी का मेल आ चुका है और इन्होंने हमें मुंगीसापुर कानपुर देहात से मेल भेजा है। और उमा कांति, कमलेश और निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू के साथ में है ये। और इनका कहना है कि ये अपने घर पर ही रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद इनके एक हाथ और पैर में कुछ परेशानी है। और महेंद्र दीपेन का भी मेल आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि आज दांडी बीच पर घूमने के लिए निकला हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ, लेकिन प्रोग्राम से जुड़ना और आपको मेल करना मेरा इतना ज़रूरी था कि मैंने बीच सफ़र में अपनी गाड़ी सुरक्षित रूप से किनारे रोकी ताकि मैं आपको मेल कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेन जी। और ये आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप अपने सफ़र में हमें साथ लेकर चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एंजॉय कीजिए अपना सफ़र और बहुत ही सावधानी से ये काम आपने किया है, गाड़ी को किनारे रोक कर आप हमें ईमेल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आलोक झा का मेल आया है, गांव में मेला लगेगा तो ये मेला देखने जाएंगे। हीरामणि वर्मा का भी मेल आ चुका है और ये शायद प्रोग्राम का नाम भूल जाते हैं। हीरामणि जी अगर आप हमें सुन रहे हैं, इन्होंने 36

से हमें मेल किया है, और हीरा मनी जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि प्रोग्राम हॉटमेल नहीं है। बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं, और अच्छा ये हमें सुन नहीं पाए इसीलिए केवल मेल किया है इन्होंने कि आपका टॉपिक नहीं सुन पाए। बाबू अंसारी जी आपको बताएं कि अगर सैटरडे हम आते हैं तो हम आपसे आपका वीकेंड प्लान ही पूछते हैं और उसे एक दूसरे से साझा करते हैं। और किसका मेल आया है? बसंत कुमार जी आपका मेल शामिल किया जा चुका है, और रजक मोहम्मद का मेल आया है शमीम इमरान इरफान और जिशान के साथ में राजस्थान से यहाँ में मेल कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम कोई होता है, मेल आप कोई कर देते हैं, बातें हम कहीं की करें, गाने कहीं के सुनाएं तो आपको पसंद आएगा नहीं आएगा ना। तो बस ऐसे ही आप जिस प्रोग्राम की हम बात करें उस प्रोग्राम में जुड़िए, देखिए आपको बहुत पसंद आएगा। और जुड़ना क्या है, आप फिर हट भी नहीं पाएंगे और वैसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल भी आ जाएगा, तो उसमें आप क्या करें, आप हमें अपनी फरमाइश अपनी पसंद मेल कर दें बस।

1:54 का वक्त, और ये वक्त क्या कह रहा है? वही जो हर रोज कहता है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय आ गया है, और हर्षित वर्मा का मेल आ गया है जस्ट जाते जाते इस प्रोग्राम के, और इन्होंने सीतापुर से हमें लिखकर भेजा है। और अच्छा, वर्षा सावित्री की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, और जो लोग पुड़िया खाते हैं वो थोड़ा कम खाएं क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ये कुछ बात नहीं समझ में आई भाई, जिसे समझ में आई वो समझ जाएं, जिन्हें नहीं आई तो कोई बात नहीं। और इस प्रोग्राम का ये लास्ट ट्रैक सुनिए, इंजॉय कीजिए, बने रहिए हमारे यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ। नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल, जिसका आप सभी को रहता है ढेर सारा इंतज़ार। ईमेल आप टाइप कर चुके हैं, बस सेंड का बटन दबाना है। भेजिए अपनी फरमाइश फटाफट FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम एक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य के में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से देश में नए खेल संस्कृति आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है, जबकि हर जिले में स्टेडियम बनाने पर भी काम किया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होगी। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे यह खुद तय करना होगा कि वह भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।

पारस रेल इंजन कारखाने में आज प्रधानमंत्री के मितव्ययता ऊर्जा संरक्षण एवं प्रेरक कार्य संस्कृति विकसित करने के आह्वान के क्रम में पूर्ण वाहन दिवस का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक आशुतोष पंत के दिशा निर्देशन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, ईंधन बचत और उपलब्ध संसाधनों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोगों को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के तहत वरिका के प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्षकों, विभागाधीक्षकों एवं अधिकारियों ने साझा वाहन व्यवस्था अपनाई और कई अधिकारी एक ही वाहन से कार्यालय पहुंचे। जौनपुर के जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि वो अपनी स्वगणना जल्द से जल्द कर लें। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक स्वगणना करके राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित होगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 2:54 प्रोग्राम हॉटमेल की हो चुकी है शुरुआत और इतने ढेर सारे ईमेल आ चुके हैं कि अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमें मेल करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो भाई कर दें, देखते हैं कितने गाने आज प्ले हो सकते हैं। तो बिना किसी देर किए जयराम जी का मेल शामिल करते हैं। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने हमें सचिन अमन दीपांशु के साथ में मेल किया है। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। ये आप कौन है बस ये जरा बता दीजिएगा। सुदर्शन साह ने इसमें भी मेल कर दिया है, नेपा नगर मध्य प्रदेश से पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्वनी मंगलाबेन राजेंद्र के साथ में, और बहुत ही अच्छी गाने की फरमाइश की है आपने, कोशिश है आपका गाना जरूर प्ले हो। और शुरुआत करते हैं इस प्यारे से ट्रैक की, आप में से है किसी की पसंद।

उम्मीद करते हैं ये गाना आपको जरूर पसंद आया होगा. जिसकी पसंद थी उन्हें तो आया ही होगा, बाकी और लोगों को भी. और आगे का मेल लेना शुरू करते हैं. बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन आ रहा पार डिगनिया का मेल आ चुका है. और बोधराज खुरवाल जी का भी मेल आया है. कमला रानी भानु प्रकाश गीतिका के साथ में उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने हमें मेल किया है. संदीप मकर का भी मेल आ चुका है. मन्नत ज्योति और कमल भरत के साथ में, और इन्होंने कहाँ से फोन किया है, सॉरी मेल किया है, जलंधर पंजाब से ये हमें मेल कर रहे हैं. और अक्सर मेल करते हैं ये हमें. अब्दुल गफ्फार का भी मेल आ चुका है. अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे के साथ में खंडवा से इन्होंने मेल किया है. और छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी पायल का भी मेल आया है. किसी भी गीत में इनका मेल शामिल किया जाए. और जलालाबाद से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी, निमित का भी मेल आया है. राम राम जी, आपको भी राम राम. और मेल आ चुका है किसका है, ये है नारायण गायकवाड़, नया दयानंद और ओमकार और साईं गायकवाड़ है. नंदेड़ महाराष्ट्र से ये हमें मेल कर रहे हैं. और ये मेल एक और आया है रायबरेली पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु राम शंकर भैया जी का मेल है. और गाने की फरमाइश की है बिल्कुल. और जो भी गाने हम प्ले करेंगे वो भी आपकी पसंद के होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. और हमारे साथ एक और मेल है पारस मनिया, यह है गांधी चौक बाड़मेर से है. बलवेश पवार, डैनी और मनीष के साथ में रामदेवरा, दिनेश चौहान है. और डांगरी से बाबूराम जयपाल है. और ये कहां से हमें मेल कर रहे हैं भाई, बावड़ी से ये हमें मेल कर रहे हैं. और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक के, सुनिए और एंजॉय कीजिए. और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमें मेल नहीं किया है तो अपनी पसंद मेल कर दीजिए.

0: जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: 4 धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है।

भाई आज की पसंद के क्या कहने, प्यारे प्यारे से गीत पसंद किए जा रहे हैं और अब शुरुआत करते हैं मेल की। और मेल आ चुका है

सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती जी का, कंचन कुसुम प्राची और प्रवीण भी साथ में मेल कर रहे हैं। और मेल आया है हमारे पास में हनुमान शिंदे और संगीता शिंदे का, और इन्होंने सांगली से हमें मेल किया है और गाने की फरमाइश भी की है। लेकिन हनुमंत आप ये बताओ, एक ही मेल में आप रोज फॉरवर्ड करते हो, कुछ समझ में नहीं आता ये आपने क्या मेल लिखा है क्या नहीं। अच्छा, ये अलग से गए हैं तो एक मेल आपका मिल गया है हमें। हनुमंत जब आप नेक्स्ट टाइम मेल करें ना, तो आप नया मेल ड्राफ्ट करके ज़रूर करें, ठीक है। और सतीश अनेजा जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें मेल किया है विमला के साथ चंडीगढ़ से, ठीक है। बहुत अच्छी गाने की है फरमाइश। राजकुमार डूडी का भी मेल है प्रमोद पुष्पेंद्र के साथ, फ्रांसी हिसार से है, किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लें। और बाबू अंसारी का मेल आ चुका है अहमद बाजार बाराबंकी से, नसीम अंसारी, मुनान, फैज़ और कुलदीप गुप्ता, इनके सबके नाम शामिल करने के लिए कहे हैं आपने और गाने की फरमाइश भी की है आपने। थोड़ा सा वेट करिए, गाना ज़रूर प्ले होगा। मेल आया है सनावत से शेख मूसा और बानो बी का मेल आया है और सब कुछ खैरियत में है, आप हमसे पूछ रहे हैं ना। मास्टर राधे श्याम साक्या कासगंज से आया है मेल, हम बहुत अच्छे हैं और आपने गाने की फरमाइश की है। चलिए सुनते हैं पहले ये प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे और भी बातें।

2:07 हो चले हैं दोस्तों, और एम के राज भान का मेल आ चुका है। मुकेश कुमार राज हैं, भानपुर हरौरा लखीमपुर से हमें ये मेल कर रहे हैं। और सुन लो एफएम रेडियो के सभी श्रोता, बार बार ईमेल करने से कुछ नहीं होता। क्या बात है। रविंद्र मोहनदास आशा देवी के साथ में किशनगंज बिहार से मेल कर रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर मेहरा जहां आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से मेल कर रहे हैं। दिग्दर्शन कौर मेरठ से कविता के साथ में मेल कर रहे हैं।

2:37 हो चले हैं दोस्तों, और एम के राज भान का मेल आ चुका है। मुकेश कुमार राज है, भानपुर हरौरा लखीमपुर से हमें ये मेल कर रहे हैं। और सुन लो एफएम रेडियो के सभी श्रोता, बार बार ईमेल करने से कुछ नहीं होता। क्या बात है। रविंद्र मोहनदास आशा देवी के साथ में किशनगंज बिहार से मेल कर रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबेर मेहरा जहां आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से मेल कर रहे हैं। दिग्दर्शन कौर मेरठ से कविता के साथ में मेल कर रहे हैं। और किसका मेल है ये, नरेश मल्होत्रा नीटू खैल बाजार पानीपत से लक्ष लांजो पापा जी नानक चंद्र के साथ में मेल कर रहे हैं। और अकरम हुसैन जी का भी मेल आ चुका है, कहाँ से ये हमें करते हैं, नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से। और बहुत सारे लोगों के साथ मेल किया है आपने हमें। दीपेश वर्मा का भी मेल आया है, पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से पूनम ज्योति शिवांश के साथ में आपने हमें मेल किया है। मोहम्मद रिजवान का भी मेल आ चुका है, और मोहम्मद रिजवान संजीला हरदोई से हमें मेल कर रहे हैं। कमलकांत गुप्ता जी का भी मेल है, दीपा डिमछिम के साथ पिपिरिया से, और समडील नवापारा से मुकेश श्रद्धा अदिति राधे दीपक के साथ अंकुरागोल के साथ इन्होंने मेल किया है। सुरेश नारंग का भी मेल है आशा के साथ सहारनपुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। शहनाज खान का मेल राजा जी पुरम लखनऊ से है, और गाने की फरमाइश की है। शहनाज, बड़ा मुश्किल होता है कि सभी के गाने सब तक पहुंचाए जाए। कोई नहीं, आप मेल करिएगा, आपका गाना ज़रूर प्ले होगा। और छत्रपति सामाजी महानगर औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर और सुषमा प्रांजलि सोहम सदानंद विराज स्वीटी अंशुमन बेबी ओनी के साथ में मेल आया है। अनवर अंसारी ने पंजाब से मेल किया है। रवीना अलीफा जावेद अंसारी अख्तर सना हिना बहुत सारे लोगों के नाम हैं, और गाना प्ले हो चुका है, इसको सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं।

दोस्तों 2:44 और 20 सेकंड हो चले हैं, लेकिन गाने इतने ज्यादा होते हैं पसंद के तो कुछ ही जाते हैं, लेकिन मेल हम सबके ले पाते हैं। और जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद और सानवी का मेल आ चुका है। और इसके अलावा हमारे बीच में मेल आया है सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले दुखनी सफ़त आरजू और इकबाल जी का, और पूरा नाम लिखा है इमरान अहमद, आमना, आसमा, राबिया, मंतशा, अंसुस, पूरे सभी लोगों ने मेल किया है। और राम सेवक जी का मेल रेनू, आयुषी, उषा, नीतू, आशुतोष के साथ में है, ये प्रोग्राम सुन रहे, इन्हें अच्छा लग रहा है। और आज उन्नाव से ये हमें मेल कर रहे हैं। डिम्पल त्रिवेदी जी का भी मेल आ चुका है, और बड़े कहाँ से ये आशी और पलक भी हैं, इनके साथ में गाने की फरमाइश की है। बिल्कुल आपका गाना आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। और मेल आया है निसार अली जी का भी मेल, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया के साथ में तेलीवाला उत्तराखंड से आ चुका है। अशोक कुमार का भी मेल आया हुआ है लखीमपुर खीरी से, ये हमें अशोक राज जी मेल कर रहे हैं। और जोन रिकॉस्टो, रोजी पर्ल्स विलेस का भी जनकपुरी सहारनपुर से मेल है। शशि निगम ने भी हमें मेल किया है, और कहाँ से किया, लखनऊ से इन्होंने हमें मेल किया है। संजय साहू पोठिया कला से हमें मेल कर रहे हैं। उदय भान पाल का भी मेल, दीक्षा जय हिंद, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश के साथ में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आया है। आप सुनिए प्यारा सा ट्रैक।

और दोस्तों मनोज बंसल जी का भी मेल आ चुका है, हरियाणा से मेल कर रहे हैं। और अजमत अंसारी का भी मेल आया है। और किसका किसका मेल है आप फटाफट मेल पढ़ देते हैं, नहीं तो समय ख़त्म हो जाएगा। शंभू दयाल जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें जाखोद राजस्थान से विमला अमरजीत योगेश दीपक और पूजा के साथ मेल किया है। शाहरुख नूर अंसारी, शकील, मोइन, तस्लीन, फरियाद हुसैन मचकली ज़िला बरेली से फ़ोन मेल कर रहे हैं। और किसका मेल आया हुआ है, यशोदा नगर कानपुर से कौशल प्रजापति जी हमें मेल कर रहे हैं। वारिस अली खान जी का भी मेल आ चुका है, इन्होंने ऐशबाग लखनऊ से हमें मेल किया है। और सुनील पाठक जी का भी मेल आ चुका है, दीपिका गायक और सुच्चा सिंह के साथ में कमल पाठक अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से मेल कर रहे हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज के साथ में हमें ठाकुरावाला से मेल कर रहे हैं। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

9:55 हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब इस प्रोग्राम को करना होगा यहीं पर वाइंड अप, लेकिन गांधी नगर गुजरात से सुरेश, मंजुला, विशाल, निशा का भी मेल आ चुका है, कुछ मेल बचे हैं उन्हें हम आप तक पहुंचा दें। विनीत कुमार का भी मेल आया हुआ है और चीनी मिल जिला सीतापुर से यह हमें मेल कर रहे हैं। इतने ज्यादा आप मेल बराबर करते हैं कि आपका ही मेल खो जाता है। नबी हसन अम्बासी, शानाज, नावेद हसन, सुहेल, रसीद, अमन, यशव के साथ में एटा से इन्होंने हमें मेल किया है। हीरामणि वर्मा का पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ भाटपारा छत्तीसगढ़ से मेल आया हुआ है। जाकिर का भी मेल आ चुका है और किसका किसका मेल है फटाफट नाम पहुंचा देते हैं। तालिब अंसारी हैं, सुधान बाबा हैं और शमशुल कमर राही हैं, कौशिक, वंदना, विराज मौर्य, टीटी मरहोत्रा, दारा सिंह, अनंत राम मिश्रा, नरेश और रणधीर गुप्ता, गुरमीत सिंह, सैफ अंसारी, शाहजी बोकड़े, मुस्कान रियान का है, दिनेश वर्मा है, हर्षित वर्मा, रमाकांत सिंह, राजेश वर्मा, सिद्धार्थ गुजाने, इतने लोगों ने मेल किया है भाई जिनका नाम हम नहीं ले पाए। सीताराम कांगड़ा भी हैं, पूना जी नहाकर हैं, भाई मूसा शेख हैं, सफरुद्दीन अंसारी और मोहसिन रजा, परवीन रानपारा, आर कुमार, राधेश्याम शर्मा, गगनदीप तांदी और दीपेश वर्मा और पंकज शर्मा, शंभु दयाल, इतने लोगों ने मेल किया और अब बारी है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की। ये प्यारा सा ट्रैक इस प्रोग्राम के लास्ट का, सुनते रहे, बने रहे हमारे साथ 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीदरलैंड के अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान हिंग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सभा में मौजूद गर्मजोशी और उत्साह ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे कि वो भारत में किसी उत्सव में भाग ले रहे हों। उन्होंने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान की निरंतर सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेश बिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य के कैप्टागन ड्रग्स जब्त की है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशा मुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया ये देशों में जा रही ड्रग्स की खेप को जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। श्री शाह ने कहा कि सरकार भारत में आने वाले और अवैध रूप से भारत से बाहर जाने वाले मादक पदार्थों की प्रति ग्राम मात्रा पर भी नकेल कसेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के बेली पार्क क्षेत्र स्थित तालनदौर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम में 7 प्लेइंग पिच और 4 प्रैक्टिस पिच बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इस परियोजना में पूर्वांचल में खेल सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री की ऊर्जा बचत अपील को समर्थन दिया है और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जो वकीलों से नजदीक से आते हैं वो कार की जगह बाइक, ई रिक्शा या साइकिल से कचहरी आएंगे। दूर से आने वाले वकील कार पुल बनाकर चलेंगे। डीबीए अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इटावा के वकील ऊर्जा बचत से

देश की प्रगति में योगदान देंगे। पीलीभीत में प्रधानमंत्री के आह्वान पर डीजल और पेट्रोल बचाने के उद्देश्य से अमरिया तहसील में आयोजित तहसील समाधान दिवस में भाग लेने वाले सभी अधिकारी बस से रवाना हुए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह पहले ही अपने साथ की गाड़ियां हटा चुके हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: हेलो, मैं हूँ अरुषि निशंक, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
1: आकाशवाणी की 90वीं सालगिरह पर हम कृतज्ञ हैं अपने श्रोताओं के, जिनका प्यार हमें एक सच्चे हमसफर की भांति अनवरत मिलता रहा.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बजकर 10 मिनट और 27 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में शालिनी है आपके साथ प्यारे प्यारे गीत लेकर। तो मौसम का आनंद लीजिए जैसा भी है जहां भी है। वो कहते हैं ना कि जो सिचुएशन हो जैसी भी सिचुएशन हो उसमें हमें रहना सीखना चाहिए। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है उस परिस्थिति में खुद को ढालने के लिए, उस परिस्थिति से खुद को लड़ने के लिए तैयार करना पड़ता है। तो आप कैसे ऐसे मौसम में आप तैयार हो सकते हैं? हाँ, जो आजकल मौसमी फल आ रहे हैं ना उन्हें खा कर, देखा स्वाद आ गया ना मुँह में। सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

दोस्तों आज हम सभी लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, नेशनल डेंगू डे। और इस बार की जो थीम है ना वो कौन सी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल चेक क्लीन एंड कवर, यानी कि डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढक कर रखें। ये इसके जो ये तीन चार वर्ड है ना, भागीदारी, सभी की भागीदारी। वो कहते हैं ना कि जब मच्छर पनपते हैं और जब किसी को काटते हैं तो ये नहीं देखते कि गंदगी किसने की, किसने सफाई की, वो तो जिसको मन चाहा जिधर उड़े उधर काट लिए। और साथ ही साथ चेक, मतलब सबसे पहले जांच करें, सफाई करें और ढक के रखें। ये जो वर्ड्स है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश हम सभी को दे रहे हैं। यानी कि घर के अंदर, बाहर, आपके कूलर में, गमले में या छत के ऊपर कोई भी सामान पड़ा हुआ है किसी जगह पर, कहीं कोई पानी तो नहीं रुक रहा है, ठहरा हुआ पानी तो नहीं भरा है। हाँ, क्योंकि उसी साफ पानी में पनपते हैं ये डेंगू वाले मच्छर। इसकी पहचान करें और अगर आपको लगता है ऐसा कहीं पर है तो क्या करना है, क्लीन करना है, सफाई करनी है वहां पर, और ताकि जो मच्छर अंडे ना दे सकें। और वैसे भी कहते हैं कि साफ सफाई अपने चारों ओर रखनी है। उसके बाद आते हैं कवर पर, पानी कहीं पर भरा है या बाल्टी है, टैंक है, कहीं पर भी है, उसे ढक कर रखें। और जब घर से बाहर निकलें तो ऐसे कपड़े पहने जिस

से आपका शरीर पूरा ढका हुआ हो, है ना। इन दो चार चीजों की जो आज इस बार की थीम है, उनसे कितनी बड़ी जानकारी अपने आप में मिल गई।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बजकर 32 मिनट और 20 सेकंड का वक्त हो चला है दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया। और देखिए, हर रोज हम नया दिन सेलिब्रेट करते हैं और उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो ये कि हम जागरूकता फैला सके, उसके बारे में जान सके, उसके बारे में बातें लोगों तक पहुंचा सके, है ना। और देखिए, आज 16 मई हम डेंगू के बारे में भी हम बात कर चुके हैं और कल होगा 17 मई, और कल है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और इस बार की इसकी थीम क्या है पता है? उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, मतलब साथ रहें, साथ दें। और ये जो साइलेंट किलर जैसा माना जाता है ना हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, जो इसको ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाएं, कैसे इसके बारे में हम इनको बता सकते हैं, खान पान में कैसे सुधार कर सकते हैं नमक की मात्रा के बारे में, और साथ ही साथ हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना है। और जब सभी जागरूक हो जाएंगे ना तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाता है। और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है ना तो उसके लिए क्या करना है, आपको कल का अपना समय निकालना है। और जो कल का आप समय अपना निकालेंगे 12 बजे से 1 बजे के बीच में, दोपहर में आप प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस सुनिएगा हमारे एफएम पर जो जाता है हर संडे। और इस बार का जो विषय है हाइपरटेंशन, उच्च रक्त चाप है। और इसमें आप हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर कोमल अग्रवाल, जो कि आपके ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं। और आप ईमेल के जरिए और फोन लाइन के जरिए आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। और हमारा मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com और फ़ोन नंबर है हमारा भी 0522, तो आपको लगाना ही लगाना है। साथ ही साथ 2238845 और 2238852, ये दो नंबर हैं, इससे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं।

दोस्तों अभी इस गाने से पहले बात की थी हमने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के बारे में जो कि कल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाना है और जिसके लिए हमारे स्टूडियो से भी आपको जागरूक किया जाएगा। आपके बहुत ढेर सारे प्रश्न होंगे जो कि आप हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम में 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट रहेंगे हमारे साथ में डॉक्टर कोमल अग्रवाल रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये आपको तय करना है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। लेट सोना है और लेट उठना है ना, खाने का टाइम नहीं है, खाना अक्सर स्किप कर देना है और उसकी जगह कोई और चीज चूज कर लेनी है ताकि भूख ना लगे। और धीरे धीरे होता क्या है, एक कोई ना कोई किसी बीमारी की तरफ आप अपनी मंजिल तय करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको सोचना है कि हमें क्या करना है, किस बात की टेंशन ले रहे हैं, किससे क्यों नहीं कह रहे हैं। जब आपके पास किसी चीज़ की ज़्यादा दिक्कत है, कोई परेशानी है, जो आपको अपना लगता है, जो आपको सामने दिखाई देता है, कुछ पल के लिए कुछ बातें उससे ज़रूर करें, बहुत हद तक आपको उससे फ़ायदा मिलेगा।

3:50 और 40 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि आप भी कुछ देर और शालिनी रहेगी यहाँ पर, आपको अच्छे वाले दो गाने और सुनाने हैं और उसके बाद हम करेंगे टाटा बाय बाय। लेकिन उससे पहले आज आपको तय करना है, खुद से ये वादा करना है कि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे और हेल्दी लाइफ स्टाइल की आदत डालेंगे। जब आप जल्दी सोएंगे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर जल्दी से सारा काम करेंगे, लेट नाइट का काम ही खत्म हो जाएगा। वो बात अलग है जिसकी नाइट की ड्यूटी होती है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं कि उन्हें मजबूरन काम करना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, ईश्वर ने या अल्लाह ने या गॉड ने दिन बनाया तो क्यों बनाया, रात बनाई तो क्यों बनाई, और दिन में काम करना रात में सोना ये नियम बनाया गया तो क्यों बनाया गया। तो हम इन सब बातों को चेंज क्यों कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना है।

0: 1:50 का वक्त और कोई आ चुका है हमारे स्टूडियो में प्यारी सी आवाज के साथ.
1: वेरी वेरी गुड इवनिंग.
0: बस आप पहचान गए होंगे कौन है ये. नाम हम बिल्कुल नहीं बताने वाले, आपको गेस करना है और ये रहेंगे आपके साथ 4 बजे से. कितने देर तक ये खुद ही बताएंगे. और शालिनी करती है आपसे टाटा बाय बाय इस उम्मीद के साथ कि हमारा साथ आपको पसंद आया होगा. होगी मुलाकात किसी और दिन. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल को चुनें.

नमस्कार, शाम के चार बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीदरलैंड के अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि सभा में मौजूद गर्मजोशी और उत्साह ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे भारत में किसी उत्सव में भाग ले रहे हों। उन्होंने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान की निरंतर सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने खेल नीति बनाकर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपने यहां सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी दी है। वह गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उन सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है जो देश के लिए मेडल जीतते हैं। मुख्यमंत्री ने देश की युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने एवं खेल अवसंरचना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। भदोही स्थित काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को आधुनिक एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। चित्रकूट में ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर शनिवार को आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में पवित्र स्नान कर भगवान कामदगिरी की पंचकोसी परिक्रमा की। धर्माचार्य विपिन विराट महाराज ने बताया कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मंदाकिनी में स्नान करना और कामदगिरी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: करियर पर है ध्यान,
3: स्पोर्ट्स में करना है ना,
2: पॉजिटिव है फैशन,
3: क्रिएटिव है पैशन,
2: टेक्नोलॉजी में रुचि,
3: बने पर्सनालिटी ऊंची,
2: फॉलो करें ट्रेंड्स,
3: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
2: ओनली ऑन यूथ वेव,
3: यूथ की बात यूथ के साथ,
2: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, हर रोज शाम 4 बजे लेकर आ जाते हैं हम आपका वो फेवरेट प्रोग्राम जहाँ पे हमारा यूथ जो है ना वो बेसब्री से करते हैं इंतजार। यानी करियर की बात हो या हो आपके एजुकेशन की बात या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी की बात, हर वो बात हम करते हैं अपने प्रोग्राम यूथ वेव में। और आज मैं लेकर आ गई हूँ वही सेम प्रोग्राम। एंड जैसा कि आपको पता है कि आज है सैटरडे, और भाई सैटरडे को बहुत ही खास सेगमेंट होता है, यानी वो होता है स्किल डेवलपमेंट। उस बारे में हम करते हैं बात। फिलहाल एक बढ़िया सा ट्रैक पीछे पीछे धीरे धीरे मजेदार से बज रहा है। और जब भाई उन्होंने एंट्री की बात कर ली है तो आज एंट्री हो चुकी है आपकी अपनी मेस्मराइजिंग आरजे मोना की। सो वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग।

ऑल राइट, तो भाई 4:11 का वक्त और इसी वक्त के साथ आपका जो प्रोग्राम यूथ वेव है वो तो चल ही रहा है, जहां मजेदार सा ट्रैक हमने एंजॉय कर लिया है, लेकिन हम सैटरडे का आज जो सेगमेंट है ना उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। जी हाँ, आप जानते हैं कि सैटरडे को हम अपना बहुत ही स्पेशल सेगमेंट स्किल डेवलपमेंट लेकर आते हैं, और स्किल्स के बारे में हम सभी जानते हैं, यानी कि कौशल जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब किसी व्यक्ति के पास हुनर होता है ना, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी सिचुएशन में डरते नहीं है बल्कि डट कर उसका सामना करते हैं, क्योंकि एक कुशल व्यक्ति हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढ ही लेता है। एंड यही रीजन है कि आज के दौर में स्किल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कंपनी सिर्फ पढ़ाई या मार्कशीट की नहीं बल्कि आपके व्यवहार, सोच और कार्य करने की क्षमता को भी इंपॉर्टेंस दे रही है। एंड यही रीज़न है कि भाई अगर आप चाहते हैं किसी कंपनी में काम करना, तो आपको क्या करना है, बस अपने हुनर को निखारना और देखिए कंपनीज आपको झट से हायर करेंगी। लेकिन लेकिन लेकिन अगर आपको किसी कंपनी में काम नहीं करना है बल्कि आप चाहते हैं कि आपका खुद का अपना बिजनेस हो, आप कुछ अपना काम करें, तो कोई टेंशन नहीं है, बस आपको अपनी जो प्रतिभा है ना, अपने जो स्किल्स हैं उसे पहचानना है, उसे समझना है, उसे सही दिशा देना है, और फिर देखिए आपका जो करियर है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। यस, आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है, आप समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें या मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, और अगर स्किल्स हैं तो मैं कैसे काम करूं, तो इस बारे में आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे बहुत सारी बातें। आपको बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। स्टे कनेक्टेड ऑन स्टे म्यूजिकल विद 100.7 FM रेनबो। मोना है आज आपके साथ, एंड यस कहीं नहीं चाहिएगा।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7

0: FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: अरे पूरा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट,
2: मैं घर छोड़कर जा रही हूँ।
3: और ये पहली बार कदमों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: और आज इस धड़कन में धड़क रही है आपकी अपनी मेस्मराइजिंग आरजे मुना। 4:18 और 20 सेकंड्स तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन फाइनली मेरी बात करते करते 50 सेकंड हो ही गए। और आपका जो ये प्रोग्राम है ना स्किल डेवलपमेंट, जब हम आज का सेगमेंट लाते हैं स्किल डेवलपमेंट यूथ वेव में, तो बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, ये आप मान के रखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, मेरे अंदर स्किल नहीं है, तो यकीन मानिए कि अभी आप अपने आप को जान ही नहीं पाए हैं, तराश पाए ही नहीं है। जी हाँ, यही होता है ना, जब हम जान नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं। लेकिन अगर आप एक छोटी सी आर्ट भी बनाते हैं ना, एक छोटी सी पेंटिंग भी करते हैं, या मान लीजिए आपके पास फूल है और फूल को घुमा घुमा के अगर आपने उसके एक रिंग भी बना ली, तो वो भी एक क्रिएटिविटी है। जी हाँ, तमाम आप सोशल मीडिया पे देखिए एक छोटे से DIY को कैसे वो एक कंपनी एक बिजनेस में डील कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक हैंकी पे वो अगर कढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो अब उसका भी बिजनेस हो रहा है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, लोग ऐसा कर रहे हैं, कपड़ों पे कढ़ाई करके या फिर कस्टमाइज कढ़ाई करके वो उसे सेल आउट कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने पार्टनर का, अपने फ्रेंड का, या अपने घर पे किसी मेंबर्स का जिसे आप प्यार करते हैं या जिसे आप गिफ्ट देना चाहते हैं, उनका नाम कढ़ाई करा कर भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो देखिए, छोटी सी चीज़ है कढ़ाई, कोई भी कर सकता है जिसे इंटरेस्ट है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे आता है, लेकिन जिसे इंटरेस्ट है, अगर वो थोड़ा बहुत भी कढ़ाई करता है, तो उसने कैसे एक छोटी सी चीज़ को, अपनी एक छोटी सी हॉबी को, उसने एक बिजनेस एक करियर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आप ही कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो है, फोटो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। और आपको पता है, ये सारी चीज़ें जो आप रील्स बनाते हैं ना, या आप वीडियोज़ बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारी उसी के ही अंडर में आती हैं चीज़ें, जहाँ पर आपके छोटे छोटे जो स्किल्स हैं ना, वो आपको एक अच्छा करियर प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घर में छोटी मोटी रिपेयरिंग का बड़ा शौक होता है, या उन्हें लगता है कि या फ्रिज खराब हो गई है, या आयरन खराब हो गया है, या फिर कोई सॉकेट खराब हो गया, तो उसे आप खुद ही रिपेयर कर लेते हैं। ये छोटी छोटी रिपेयरिंग का जो स्टेप है ना, आपको यकीन नहीं होगा कि रिपेयरिंग का काम भी आज आपको एक प्रोफेशनल करियर में लेकर जा सकता है। जी हाँ, इसे सीख कर अगर आप थोड़ा सा अपने इसी स्किल को थोड़ा सा सीख ले, या इसमें डिप्लोमा कोर्स कर ले, सर्टिफिकेट कोर्स कर ले, तो आप एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा काम इन सेंस कि इसे आप एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का वर्क है, AC रेफ्रिजरेटर है, या होम अप्लायंसेस का रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, और यहाँ तक कि जो स्किल्ड प्लम्बर्स हैं ना, उनके भी काफ़ी डिमांड्स है मार्केट में। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, तो यकीन मानिए कि आपके करियर को बढ़ने से, आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता है। यस, तो आपको बस क्या करना है कि आपको समझना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिसे आप तराश सकते हैं, जिसे आप थोड़ा सा अगर सीख ले, और सीखने का कोई भी मीडियम हो सकता है। मैंने आपसे कहा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, उसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं, बताती हूँ आपसे कुछ दिन में। फिलहाल एंजॉय करिए इस बढ़िया से ट्रैक को।

जी तो 4:24 का वक्त और 20 सेकंड हो रहे हैं, और अब से कुछ देर में यानी 4:25 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, जो कि स्पेशली होता है हमारे यूथ्स के लिए, इसलिए इसे बिल्कुल मत मिस करिएगा। और उसके बाद हम दोबारा फिर से जुड़ेंगे प्रोग्राम यूथ पे, मित कहीं जाए नहीं, एंजॉय करते रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ।

समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रेतियो से संबंधित। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट गुजरात, PMSSY नर्सिंग कॉलेज एम्स राजकोट के लिए नियमित आधार पर प्रोफेसर सह प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पद का नाम है प्रोफेसर सह प्राचार्य। वेतन स्तर होगा 13, 7वें CPC के अनुसार। रिक्ति है 1 अनारक्षित। प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड, विस्तार में विज्ञापन एवं जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। www.aimsrajkot.edu.in यहां पर जाएं और जानकारी प्राप्त करें। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें 3 वर्ष की अवधि तक उसे बढ़ाया जाएगा। इन पदों के नाम की जानकारी आप तक हम दे दें। PGT गणित में 1 पद है, काउंसिलर के लिए 1 पद है, नर्सिंग सहायक के लिए 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए 1 पद, PEM PTI सह मेट्रन महिला 2 पद, सामान्य कर्मचारी 2 पद। संविदा की कुल अवधि किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हालांकि कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 11 महीने पूरे होने तक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कार्य निष्पादन समीक्षा और संस्थागत आवश्यकता के आधार पर अनुबंध को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख है वो है 18 मई 2026, और इंटरव्यू जो शेड्यूल्ड है वो है 22 और 23 मई 2026। आपको हम वेबसाइट की जानकारी दें ताकि आप वहां से आवेदन पत्र और इससे संबंधित सारे शर्तें पात्रता देख सके। www.sainikschoolpunglava.nic.in से डाउनलोड कर सके। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड श्री विजयपुरम अनिटको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के 1 पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं ANIIDCO@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप जानकारी ले सकते हैं।

0: सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। टीजीटी गणित में अनारक्षित दो पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। टीजीटी हिंदी के लिए अनारक्षित दो पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर। टीजीटी सामाजिक विज्ञान अनारक्षित एक स्थान रिक्त है, संविदात्मक। टीजीटी मराठी में अनारक्षित एक पद रिक्त है, संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित एक पद रिक्त है, जो की संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी एक पद रिक्त है अनारक्षित, और प्रयोगशाला सहायक विद्यालय चिकित्सा अधिकारी दोनों में एक एक स्थान अनारक्षित, संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद, तीन स्थान यहाँ रिक्त है, संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा पीओ बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार जिला सतारा महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का, www.sainiksatara.org.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: अभी आप सुन रहे थे रोजगार समाचार।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: समझे जनाब यारी।
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: जी हाँ, 4:30 का वक्त, और वाकई हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक आपके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, और एंटरटेनमेंट का तो डोज यहाँ कभी रुकता ही नहीं है। बेहतरीन से ट्रैक्स होते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ होती है, और आज भी प्रोग्राम यूथ वेब में बहुत सारी आपके लिए जानकारी, और खास करके हमारे यूथ के लिए हम लेकर आए हैं, और वो काफी शेयर कर दी है आपके साथ, और कुछ अभी और शेयर करूंगी। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा नहीं।

ऑलराइट, तो भाई आज हम बात प्रोग्राम अपने यूथ में स्किल डेवलपमेंट की कर रहे हैं, जहां आपके अंदर अगर कोई भी स्किल है, कोई भी हुनर है, कोई भी कौशल है, तो कैसे उसे निखार कर आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं, खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, इस बारे में कर रहे हैं हम बात। और अभी बहुत सारे जो ऑप्शंस थे उस बारे में हमने बात कर ली, और अगर वो जो थोड़े से टेक्निकल थे इसलिए उसके लिए थोड़े से आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है या डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। एक यू नो कि अगर आप एक टेक्निकल नॉलेज रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको वीडियो एडिटिंग है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, या फिर आपका जो मैंने रिपेयरिंग के काम बताया, अगर वो सब आप करना चाहते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी नॉलेज कहीं से आप गेन कर लेते हैं, किसी से सीख लेते हैं, किसी के सुपरविजन में काम करते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो भाई तमाम वीडियोस हैं ऐसे जहां पर आप सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं या डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, तो वो आपके हुनर को या आपके स्किल्स को और ज्यादा एनहांस करता है। लेकिन आपको पता है कि कुछ स्किल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ना चाहिए आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स ना ही डिप्लोमा, बस आपके अंदर होना चाहिए स्किल्स। और स्किल्स के साथ मन से आप वो काम अगर करेंगे, तो उसमें 100% यकीन मानिए वो काम और बेहतर और ही ज्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कुकिंग, आपको अगर खाना बनाना आता है ना, तो भाई इसको कहीं से बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है। उसमें कैसे मसाले पड़ने हैं, कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है नहीं डालनी है, या फिर आप कोई डेजर्ट बना रहे हैं तो कितनी चीनी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की जो नॉलेज है ना, वो आपको खुद ब खुद आती है और कर करके आती है, यानी एक्सपीरियंस से आती है। तो अगर आप कुकिंग जैसी चीज़ें हैं, इसका आप क्लाउड किचन ओपन करते हैं, इसका बिजनेस करते हैं, तो आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा आपको अगर डीप आप एक अच्छा बिजनेस लेवल पे खोलते हैं, तो आपको FSSAI का सर्टिफिकेट चाहिए, फूड कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, वो एक बात की बात है। लेकिन आप छोटे मोटे बिजनेस अगर खोलना चाहते हैं और आपको कुकिंग अच्छी आती है और टेस्ट अच्छा है आपके खाने में, तो यकीन मानिए ये बिजनेस आपके लिए ही है। और ऐसे ही तमाम बिजनेस और भी हैं, या तमाम हम कहें स्किल्स और भी हैं, जिसमें सिर्फ आपका हुनर है ना, उसे थोड़ा सा तराश लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। और वो कौन कौन से बताती हूँ उस ट्रैक के बाद। कहीं जाइए नहीं, जुड़े रहिए आपके अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ।

एक बार क्या, हम तो बार बार आएंगे, आप दिल से हमें पुकारिए तो सही, और जब आप दिल से पुकारेंगे ना तो वो दिल तक आपकी आवाज पहुंच ही जाती है। जी हाँ मोनू सेठ जी, आपका मेल मुझे मिल गया है, आपको भी नमस्कार। और लिखते हैं कि आप आर जी मोना जी को प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे लिखते हैं, आप सभी आपसे उम्मीद है कि बहुत नीक हुई हैं। जी हाँ बिल्कुल नीक हो, ठीक हो। और लिखते हैं कि लगभग 10 दिन बाद आज आप आई हैं, खुशी हुई आपको सुनकर। वैसे उम्मीद थी कि मोना जी प्रोग्राम में दर्शन देने वाली हैं, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। ये बताइए आपका दिल हर बार बोल कैसे देता कि मैं आने वाली हूँ। और लिखते हैं, मोना जी आप हर बार लंबी छुट्टी लेकर कहाँ चली जाती हैं? चलिए जाती हूँ, लेकिन फटाक से दौड़ के चली भी आती हूँ आप सभी के पास। गीता सेठ जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मोना दीदी जी को नमस्ते, आप आई बाहर आई, आह धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। मोना जी हम श्रोता आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, कौशल डेवलपमेंट पर दी गई जो जानकारी है बहुत लाभदायक है और बहुत अच्छी लग रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू परवाना जी का ये मेल है हमारे पास, एंड तालिब अंसारी जी भी जुड़े।

0: हुए हैं राजा कटरा बाराबंकी से, लिखते हैं आरजे मोना जी का वेलकम, थैंक यू सो मच। तो भाई हमारे जितने सारे प्यारे प्यारे से दोस्त हमारे साथ कनेक्टेड है, और जब आप हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं ना तो हमारी जो एनर्जी है वो और ज्यादा डबल हो जाती है, बूस्टअप हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जो स्किल्स है ना वो आपके अंदर है, जो आपके अंदर हुनर है ना वो है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसे तराशना है, प्रैक्टिस करनी है या सीख लेना, और जब आप इसे सीख लेते हैं ना तो वो और ज्यादा निखर के आ जाती है। जैसे अभी मैंने आपसे कुकिंग की बात की, ठीक वैसे ही टेलरिंग, कार वॉशिंग, डिटेलिंग, पेंटिंग, टैटू मेकिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, टाइपिंग, नेल आर्ट, डांस, म्यूजिक, ये सारे वो स्किल्स हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट होते हैं। जैसे डांस होता है ना, वो किसी किसी को बहुत शौक होता है, वो उनकी हॉबीज होती हैं, और उसी हॉबीज को अगर वो कहीं से सीख लेते हैं, कुछ कोर्स कर लेते हैं, तो वो और ज्यादा निखर जाती है और फिर आप उसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आप पेंटिंग करते हैं या फिर आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो उसी से ही आप टैटू मेकिंग या मेहंदी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग करते हैं। आप खुद में खुद देखते होंगे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो एक्चुअली प्रोफेशनल नहीं है मेहंदी लगाने में, फिर भी कोई ओकेजन होता है तो मेहंदी लगाती हैं, और क्या खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं जनाब। तो ऐसे में ये जो स्किल्स है ना, बस आप इसे थोड़ा सा निखार लीजिए और देखिए साइड बाय साइड आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं और अपना जो करियर है ना उसे कितनी उड़ान दे सकते हैं। उसके लिए कुछ छोटे मोटे स्टेप्स है, अगर आप फॉलो कर लेंगे तो बस अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। वो क्या क्या स्टेप्स है बताती हूँ इस ट्रैक के बाद। आप बस आज थिरकते रहिए, यूथ वेव में इंजॉय करते रहिए,
1: दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: राइट, सो इट्स 4:51 इन माई स्टूडियो क्लॉक। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना यूथ वेव, जहां आज हमारा स्पेशल सेगमेंट हम लेकर आए हैं स्किल डेवलपमेंट। और बहुत सारे ऐसे स्किल्स की हमने बात की और हर हफ्ते ही हम करते हैं ताकि आपके अंदर जो हुनर है आप उसे पहचाने, उसे तराशे, उसे समझे और सही दिशा दें। और जब आप उसे सही दिशा देंगे तो आपका करियर बनने से कभी कोई नहीं रोक सकता। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ ऐसे करियर्स भी हैं जिसे आप घर बैठे ही कर सकते, आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई उसके लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत है या फिर सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर आप एक वुमेन है और हाउसवाइफ है और आपको लगता है कि घर में खाली रहते हैं कुछ तो काम करें, तो आपके अंदर जो छोटी मोटी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि भाई ये हुनर है मुझ में, उस छोटी छोटी स्किल को आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, उसे एक बहुत बड़ा करियर का रूप दे सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि कुकिंग है, टेलरिंग है या फिर पेंटिंग है, मेहंदी डिजाइनिंग है, नेल आर्ट है, डांस, म्यूजिक है, ये वो आपके कुछ स्किल्स हैं जिसे आप घर बैठे भी कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं और उसे तराश के अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा करियर बना सकते हैं। और फिर भाई सोशल मीडिया तो है ही है हमारे पास, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बनाई है, कोने कोने तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके अंदर जो आर्ट फॉर्म है, जो स्किल्स हैं, उसकी आप वीडियोज बना सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं और वहां से भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अपने स्किल्स को आप निखारिए, ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए, आप उसके बारे में जानकारियां ज़रूर से ज़रूर इकट्ठा

करिए, वीडियोस देखिए, जानकार लोगों से मिलिए, उनसे सीखिए। और आपको पता ही है कि भाई आए दिन नई टेक्निक्स आती रहती हैं, उन्हें सीखिए और सीखते ही रहिए। आप यकीन मानिए, जितना आप सीखेंगे ना, हमेशा कुछ ना कुछ नया आपको मिलता ही रहेगा। और बस नई नई चीज़ें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए।

जी हाँ, शाम के बाद आतिशबाजी होगी, यानी प्रोग्राम शाम में अवध होगा, शाम में आएगा और अभी लेकिन 5 बजने वाला है और न्यूज ब्रेकर्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद लेकर आएंगे एफएम टॉप 10, यानी एक लंबी कतार है और इस प्रोग्राम को यानी यूथ वेव को वाइंड अप करने का वक्त हो चला है। और इससे पहले हम जैन भाई, याद रखिएगा कि आज की रैपिड ग्रोथ में केवल डिग्री या मार्कशीट ही सक्सेस की गारंटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपका कौशल आपकी ही असली पहचान है। आपका जो स्किल है ना, वो आपके भीड़ में भी सबसे अलग पहचान देता है और यही कारण है कि सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि सबसे बेहतर सीखने की जो कला है ना, वो भी आपको ये कौशल ही सिखाता है। याद रखिए, यदि ज्ञान दीपक है तो कौशल उसकी रोशनी है। इसलिए सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाइए और अपने हुनर को निखारते रहिए, बढ़ते रहिए और 100.7 FM रेनबो के साथ जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए। इसी ट्रैक के साथ इस प्रोग्राम को करती हूँ वाइंड अप, मिलती हूँ विशेष कार्यक्रम के उस पार, कहीं जाइए नहीं, बस यूं ही जुड़े रहिए।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रही है। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आए शानदार बदलाव का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए कहा है कि बीते 9-10 वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ने पूरे देश के अंदर एक नई और मजबूत पहचान बनाई है। श्री पुरी आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के साथ ही खेल और खिलाड़ियों के हित में एक नई और बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बगल में रिजर्व कराई गई 60 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के पास भूमि होगी तो उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए होगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की 8 वैज्ञानिक टीमें पूर्वांचल के गांवों में पहुंचकर किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए जागरूक कर रही है और राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत वैज्ञानिक किसानों को सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक कीट वितरित कर रही है। साथ ही खेतों में लाइव डेमो और मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दे रही है। वाराणसी स्थित IIVR के निदेशक डॉ. राजेश कुमार के मुताबिक अभियान के अंतर्गत अब तक 2500 से अधिक किसानों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। ये कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज में आज हाई स्कूल व इंटर के मेधावी 10 छात्रों व गृह परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी छात्रों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने छात्रों को एकाग्रचित्र होकर पढ़ने तथा मोबाइल से दूरी बनाकर पुस्तकों से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ। धड़कन लखनऊ की।

0: घड़ी के स्टूडियो क्लॉक में 5:04 और 10 सेकंड हो रहे हैं। आप जुड़े हुए अपने सतरंगी चैनल 100.7 एफएम रेनबो के साथ और अब सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: भारत के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। इनमें कृषि की खास भूमिका है। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। औद्यानिकी के क्षेत्र में भी देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को भी बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा। मनीष जी, सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?
3: सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। पूरे देश में न सिर्फ कृषि में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिकल रिसर्च जिसमें ICMR, इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसमें CSIR और जो कृषि का शोध है जिसमें कि ICAR जैसे संस्थान रोज नवाचार कर रहे हैं और नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। इन तकनीकियों के माध्यम से स्टार्टअप का बहुत सारा सृजन हो रहा है। अब भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश है और लगभग समय 5,000 स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं, बहुत बड़े जैसे कि देहात है, निंजा कार्ड है, ऐसे तमाम स्टार्टअप आज इस देश में विकसित हैं और ये तब संभव है जबकि कृषि तकनीकी नवाचार के माध्यम से विकसित हो गई हैं और इनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, AI लेड प्रिसीजन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है।
2: जी मनीष जी, इस खास रुझान जो देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई करके हायर स्टडीज करने के बाद भी जॉब करने के बजाय कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कोई युवा अगर स्टार्टअप के तौर पर कृषि को अपनाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है?
3: कृषि आज भी इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं जो वो सबसे बड़ी कृषि में है। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है। कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बहुत सारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा किसी भी जगह जहां भी रहता हो पूरे देश में वो अपने पास का जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको संपर्क कर सकता है, उसके माध्यम से एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
2: जी, खासतौर से अगर फसलों की बात करें कि

0: हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके अलावा भी बहुत तरह की फसलें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आमदनी को बढ़ाती हैं। तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और उनकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में?
1: मुझे लगता है कि सारी फसलें आपकी अच्छी होती हैं, उसमें कोई फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है उसका अध्ययन करना जरूरी है। किसी भी जगह में आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। कहीं भी, बहुत बड़ा देश है तो उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अलग अलग होती हैं, तो एक जवाब तो उसके लिए मुफीद नहीं हो सकता,
0: जी
1: लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फसलों को नेट हाउस कंडीशन में उगा सकते हैं जबकि वो सामान्य दशाओं में उगाई नहीं जा सकती, तो उनमें आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे किसान खीरे की खेती करते हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, टमाटर की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं जिनको उनको अतिशय लाभ होता है। तो ऐसी फसलों के चुनाव के लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ के जो किसानों का जो भी वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, चाहे वो ICAR का हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि इस समय में, इस वातावरण में मैं कौन सी ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मुझे अधिक लाभ हो। तो इसके लिए जो है एक एक सामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि पूरे देश में कौन सी फसल फायदेमंद होगी, लेकिन
0: जी
1: ये अलग अलग क्षेत्रों पर निर्भर करेगी।
0: जिस तरह से आपने कहा कि इंक्यूबेशन सेंटर से मदद मिल सकती है, इसके अलावा किस तरह का टेक्निकल सपोर्ट या किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है किसानों को जिससे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकें?
1: कौशल विकास भारत सरकार का एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। हम लोग कौशल विकास पे बहुत काम करते हैं, जितने भी भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं सारे के सारे कौशल विकास पे काम करते हैं। उनमें हम युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति के किसानों को, के अलावा बहुत सारे अलग लोगों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके इन लोगों को हम कैपेसिटी बिल्डिंग, और ये बहुत विविध क्षेत्रों में है। इसमें चाहे आप ले लीजिए कि प्रेसिजन से जुड़ी हुई खेती है या फाइबर से बने हुए उत्पाद हैं, ज्वेलरीज हैं, चाहे महिलाओं के लिए हों या पुरुषों के लिए हों, युवाओं के लिए, तो बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं जिनमें वे आकर के यहाँ पर अपनी प्रशिक्षण लेकर के अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से वे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं जहाँ पर कि वे एक स्टार्टअप के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं।
0: जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देंगे आप जो मन बना रहे हैं कृषि के तरफ आने के लिए और वो चाहते हैं कि कृषि के माध्यम से वो आगे बढ़ें और अपनी आय को बढ़ाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: युवाओं के लिए कृषि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। कृषि आपकी फिर उपजे हुए जो उत्पाद होते हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, आपको रोज खाना चाहिए होता है, आपको रोज फल चाहिए होते हैं, आपको रोज सब्जियां चाहिए होती हैं, और इसमें अगर आप युवा आगे आते हैं तो उनके पास बेहद बड़े अवसर हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो खासतौर पर प्रोसेसिंग में आते हैं जहाँ पर कि फलों को या अनाज को या सब्जियों को प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट इस देश में अभी है और जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, तो उसमें अपार संभावनाएं हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। मैं सारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि इस क्षेत्र में आएं और देखें कि किस तरह से आपका विकास हो सकता है।
0: जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू, धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश के प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम।
4: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: ओ दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
6: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

FM Top 10। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम किसी एरा या किसी सेलिब्रिटी या कोई ऐसी बात होती है जिससे जुड़े हुए टॉप 10 ऐसे सॉन्ग्स लेकर आते हैं जो आपको करते हैं एंटरटेन और बहुत सारी मजेदार सी बातें भी होती हैं। एंड आज का दिन तो भाई बहुत ही खास है क्योंकि आज है 16 मई। यस, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑलराउंडर स्टार विकी कौशल का हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। और इनके बारे में बहुत सारी बातें और भी करेंगे शेयर इस ट्रैक के बाद। और वैसे भी जब प्रोग्राम एफएम टॉप 10 है, विकी कौशल है, गाने तो लाजवाब हो गए, तो चलिए इंजॉय करते हैं इसी ट्रैक के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। वेरी गुड इवनिंग, आज मोना है आपके साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: All right, so what would start Vicky Kaushal apni danda?

एक्टिंग और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। वी ऑल नो दैट सोलो हिट से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तक विकी ने अपनी मेहनत से बॉलीवुड का वो सफर तय किया जिससे आज वो हर दिल पर कर रहे हैं राज। जी हाँ, कॉमेडी से लेकर एक्शन फिल्मों तक विकी का जो सफर था ना, वो काफी मेहनत भरा और इंटरेस्टिंग भी रहा है। तो जो वो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो मेरे पास है, लेकिन वो उसे रख कर मैं अपने पास करूंगी क्या भाई, आपके साथ ही तो शेयर करूंगी। एंड एज यू नो की प्रोग्राम चल रहा है FM Top 10 एंड आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विकी कौशल का हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। तो आज के टॉप 10 सॉन्ग्स हैं इन्हीं के नाम। वेल, आपको बता दें कि विकी जो है ना मल्टी टैलेंटेड एक्टर कहलाते हैं, क्योंकि एक्टिंग से पहले विकी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि फिल्म गैंग्स ऑफ विसेपुर में अनुराग कश्यप के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने बिहाइंड द सीन्स भी काम किया है एंड कई ऑडिशंस भी दिए हैं जहाँ इन्हें काफ़ी रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ा है। बट स्टिल उन्होंने हार कभी नहीं मानी एंड फिर विकी को ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला जहां उन्हें ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी किया नोटिस। एंड उसके बाद पता चला कि भाई कोई ना कोई सुपरस्टार हमारे बॉलीवुड में आ चुका है। फिलहाल मैं उनके मरमर्जिया का एक ट्रैक बहुत ही खूबसूरत जो मुझे बहुत पसंद है वो प्ले कर रही हूँ। और आपको ये भी बता दूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस मूवी में एक सॉन्ग है F for प्यार। जी हाँ, ये सॉन्ग का नाम है और इसे खुद विक्की ने गाया है, यानी आप उनका एक और टैलेंट जान सकते हैं जो कि है सिंगिंग का। लेकिन फिलहाल मैंने वो सॉन्ग नहीं प्ले किया, मैंने क्या है दूसरा सॉन्ग प्ले जो कि बहुत ही प्यारा है और जो खुद इन्हें यानी कि विकी को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इस सॉन्ग को प्ले किया है। करिए आप इंजॉय। 5:20 का वक्त होना है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है FM Top 10।

What a beautiful song, भाई मुझे ये song बहुत पसंद है and I know and I wish कि आपको भी पसंद हो, wish इसलिए क्योंकि भाई जब इस तरह के खूबसूरत जो songs होते हैं ना, music directors बनाते हैं या lyricist लिखते हैं और singers गाते हैं, तो उसमें बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा प्यार होता है और इसलिए वो भी उम्मीद करते हैं कि at least audience इसे पसंद तो ज़रूर करें। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं विकी कौशल की, क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे, और ये तो बनता है कि भाई उनका बर्थडे तो सेलिब्रेट करें ही हम, साथ ही बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके लाइफ से जुड़ी हुई वो ज़रूर आपके साथ शेयर करें। और आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में विकी ने बताया था कि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं, शाई पर्सनालिटी के हैं, और इन्हें ऑडिशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, काफ़ी ज़्यादा इन्हें रिजेक्शंस भी मिलता था, खास करके इनके बॉडी टाइप को लेकर लोग इन्हें हीरो मटेरियल मानते ही नहीं थे, फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और बहुत सारी मेहनत भी की एंड फाइनली फिल्म लव शव ते चिकन खुराना, ये मूवी का नाम है लव शव ते चिकन खुराना, इस मूवी से बी टाउन में कदम रखा विकी कौशल ने। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बात किया था ना कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन फाइनली एक मूवी ऐसी थी जिसके बाद ऑडियंस ने और साथ ही क्रिटिक्स ने भी नोटिस किया कि भाई कोई एक एक्टर ऐसा आया है जो फाइनली हमारे जो बी टाउन में ना वो स्टार बनने की कगार पे है, और हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसका नाम है मसान। जी हाँ, लो बजट होने के बावजूद ये फिल्म एक कल्ट मूवी साबित हुई है, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए इसे फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत मैं प्ले कर रही हूँ, सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, इसे करिए आप इंजॉय। 5:25 का वक्त और ये हो गए 26 मिनट, प्रोग्राम चल रहा है FM Top 10, मोना है आज आपके साथ।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: अच्छा होता है ना कि जब आप लीड रोल में काम कर लेते हैं तो अक्सर आप छोटे मोटे रोल्स बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए एक्चुअली एक्टिंग ना उनके लिए काम है, उनकी वो पूजा है, और इसीलिए वो रोल कैसा भी हो वो ज़रूर करते हैं। हाँ, बस उन्हें पसंद आना चाहिए। और उन्हीं में से एक एक्टर्स है विकी कौशल भी। जी हाँ, विकी कौशल जो है हमेशा ही रोल देखते हैं, उस कैरेक्टर की डिमांड देखते हैं और उसे अपना लेते हैं, और चाहे वो जैसा भी रोल हो, चाहे वो छोटा ही रोल हो, चाहे वो कैमियो रोल है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि लीड एक्टिंग में काम करने के बावजूद भी संजू मूवी हो या फिर हो डंकी, इसमें इन्होंने कैमियो रोल अपनाया और जो कि बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया है। इसलिए इसी मूवी का यानी डंकी मूवी का ये खूबसूरत सा ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ, इसे करिए आप इंजॉय। 5:31 का वक्त, FM रेनबो, आप इंजॉय कर रहे हैं मोना के साथ प्रोग्राम है आपका FM टॉप 10।

मूड फिल्म का ये सॉन्ग आप इंजॉय कर रहे थे जो कि विकी कौशल की मूवी थी। जी हाँ, भूत आपने इनकेस देखी हो, ये थोड़ा हॉरर मूवी थी। लेकिन आपको बेस्ट पार्ट बताऊँ इस मूवी का, बेस्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि विकी कौशल एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूत वगैरह से डरते हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ये बात मेंशन की थी कि वो भूत से बहुत ज़्यादा डरते हैं और अंधेरे वगैरह से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, और इस मूवी के शूट के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा डर का सामना करना पड़ा। फिर भी जो उनकी को एक्ट्रेस थी और उसके अलावा

जो टीम थी उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इतनी बेहतरीन एक्टिंग और बेहतरीन काम वो इस मूवी में कर पाए. So it's 5:38 in my studio clock, and as you know, today we are celebrating Vicky Kaushal's happy birthday. और अगर उनके साथ आपका भी birthday आज आप share कर रहे हैं, तो भाई आपको भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. And FM Top 10 में हम 10 songs आज Vicky Kaushal के ही play कर रहे हैं, और बड़ी ही interesting बातें उनकी बता रहे हैं. और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इन्हें multi-talented actor और personality कहा जाता है, जी हाँ, क्योंकि ये acting करती ही है, ये तो आपको पता ही है. उसके अलावा assistant director भी ये रह चुके हैं. ये बहुत ही अच्छे sports player हैं, and he is a very good, you know, music player also. जी हाँ, जो instrument होते हैं ना, उससे बड़ी ही अच्छी अच्छी music निकालते हैं. और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने खुद ये बात मेंशन करी, और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बात हर किसी को बताई. अच्छा, हुआ क्या ना, जब राजी मूवी रिलीज हुई थी, तो उस दौरान विकी ने एक बहुत ही सिंपल सा कुर्ता पैजामा पहना था, वाइट कलर का, और उसमें वीणा

उससे बड़ी ही अच्छी अच्छी म्यूजिक निकालते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने खुद ये बात मेंशन करी और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बात हर किसी को बताई। अच्छा हुआ क्या ना, जब राजी मूवी रिलीज हुई थी तो उस दौरान विकी ने एक बहुत ही सिंपल सा कुर्ता पैजामा पहना था वाइट कलर का, और उसमें वीणा इन्होंने ली थी, और वीणा पे इन्होंने जो पेट्रियोटिक सॉन्ग था जिसका नाम था ए वतन, उसको इन्होंने प्ले किया था और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक प्ले करी थी। और उसी म्यूज़िक के ज़रिए फिर उन्होंने बताया कि हमारी ये मूवी आ रही है, और जो ये म्यूज़िक प्ले किया था, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था भाई, इससे का एक और टैलेंट उभर के आया कि ये बहुत ही अच्छी वीणा भी प्ले करते हैं। हालांकि इस मूवी में फोकस जरूर आलिया भट्ट पे था, ये एक पेट्रियोटिक मूवी थी, लेकिन जो किरदार विकी कौशल ने निभाया था वो भी हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और म्यूजिक के जरिए जब इन्होंने इस सॉन्ग को ट्रिब्यूट किया था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेट्रियोटिक सॉन्ग है, तो मैंने सोचा भाई इसे क्यों कर लेती हूँ और ये जरूर प्ले करती हूँ, तो चलिए मैंने प्ले कर दिया। इसे करिए आप इंजॉय। 5:40 का वक्त, आप सुन रहे 100.7 FM रेनबो, मुना है आज आपके साथ।

0: है ना वो भी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और आबाद रहे, वरना बहुत सारी टेंशन हो जाती है। और यही रीज़न है कि हर संडे हम हमारा बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। जी हाँ, और हर बार हर हफ्ते हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, ताकि जो नई नई कोई परेशानियां हो या आपसे रिलेटेड कोई बीमारी हो, तो आप उसका एक अच्छा सोल्यूशन यहाँ से हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे जान सके। और इस बार यानी इस संडे यानी कि कल हेल्थ एंड फिटनेस में हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर कोमल अग्रवाल, MBBS MD आंतरिक चिकित्सा विभाग। और आपको बता दें कि कल का हमारा जो विषय होगा वो होगा हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। सो ये हाइपरटेंशन क्या होता है यानी उच्च रक्तचाप क्या होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, नियंत्रण क्या है और कैसे आप इसका उपाय पाके उक्त जो उच्च रक्तचाप है इससे बच सकते हैं यानी हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, इस बारे में कल हमारे डॉक्टर से बात होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकले या आपको या आपके कोई घर वाले हैं या कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्हें आप जानते हैं जो हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, तो आप इसका सारा सोल्यूशन हमारे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस से जान सकते हैं। कल 12 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। आप कॉल कर सकते हैं हमारे फोन लाइन नंबर पे जो कि है 0522-2238-845। हमारा दूसरा नंबर है 0522-2238-852। उसके अलावा आप हमें अपनी जो समस्या है वो मेल भी कर सकते हैं जो कि है akashwanilakhnu@gmail.com। तो कल हमारे साथ 12 बजे जुड़ना मत भूलिएगा प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में।
1: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत सा ये पैट्रियोटिक सॉन्ग आपने सुना फ्रॉम द फिल्म राजी। और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में विकी कौशल की, वैसे वतन तो आबाद रहे ही, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो शरीर

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, तो भाई 5:54 का वक्त, और ये वक्त अब कह रहा है कि हमें यहाँ पे प्रोग्राम FM टॉप 10 को वाइंड अप करना होगा। एंड आई एम श्योर कि विकी कौशल से जुड़ी जितनी भी बातें थी भाई, अगर आप उनके फैन हैं तो आपको बड़ी मजा आई होगी। सो उरी, सरदार उधम, सैम बहादुर, छावा, ये सारी विकी की वो फिल्म्स रही जिसके बाद क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि बॉलीवुड का उसको नया सुपर स्टार मिल गया है। एंड एक्शन हो, बायोपिक हो, पेट्रियोटिक जॉनर हो, कॉमेडी हो या हो इंटेंस इमोशनल रोल, अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से आज विकी हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुके हैं। अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म उरी के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिसके बाद विकी बन गए नेशनल हीरो। तो मुझे लगता है कि इसी मूवी का आपको ये बेहतरीन सा ट्रैक जरूर सुनवा दो।

ऑल राइट, तो बस अब एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं पर ही वाइंड अप करती हूँ. बहुत ही ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक इसलिए भी है क्योंकि आज बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं ना, वो वट सावित्री का व्रत सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने पार्टनर्स के साथ. तो उन्हें बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं. और मुझे लगता है कि एक पार्टनर को डेडिकेट करने के लिए अगर ये सॉन्ग हमने नहीं प्ले किया तो भाई क्या प्ले किया. और ये जो एक एक शब्द है ना, बस अपने पार्टनर को डेडिकेट करिए और साथ ही विकी को एक बार फिर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, यानी सारे काम आज निपटा दिए. तो आप बस इस ट्रैक को करिए एंजॉय और नेक्स्ट प्रोग्राम न्यूज ब्रेक के उस पर जो कि है शाम में अवध लेके दोबारा हाजिर होती हूँ. तो कहीं जाइए नहीं क्योंकि आप हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए.

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार आधारित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और उनके बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल पूरे प्रदेश में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। लखनऊ स्थित लोकभवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड जेंडर स्टडीज के द्वारा कुलपति प्रोफेसर साइनी के नेतृत्व में नो बायस अ सेंसिटिव शिफ्ट सिनेसिटिव शिफ्ट शीर्षक के जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम उद्देश्य विद्यार्थियों में लैंगिक समानता, संवेदनशीलता, गरिमा एवं समावेशी दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता विकास करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमित कनौजिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर स्तर और हर स्थान पर समानता एवं सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स का कल चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके से मैच था। इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लखनऊ ने सीएसके को हराया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे शामे अवध।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: साथ हमारा हरदम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग।

लखनऊ की शाम थी और तेरा ख्याल उतर आया, गोमती की लहरों पर जैसे इश्क ठहराया। हवा में घुली थी तेरी बातों की नरमी, हर मोड़ पर लगा जैसे तेरा ही शहर आया। चाय की महक, धुंधली सी वो रोशन गलियां, तेरे साथ चलूं तो हर रास्ता गजल बन जाए। लखनऊ की इस शाम में कुछ ऐसा जादू है, दिल तुझ में खो जाए और वक्त यूं ही ठहर जाए। जी हाँ भाई, लखनऊ की जो शाम है ना, कुछ ऐसी है कि मतलब आप जितनी बात करें, जितनी ही आप इसकी चर्चा करें ना, वो कम ही है। बस ख्यालों में ऐसे उतर जाती है कि मानो लगता है इसी शहर में ही बस जाओ और कहीं कोई और शहर नजर ही ना आए। वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। 6:12 का वक्त हो लीजिए, इसी वक्त के साथ शुरू हो चुका है आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है शाम अवर। जी हाँ, 6 बजे तो स्टार्ट हो ही गया था। बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, हरिहरन की आवाज़ में, एआर रहमान की म्यूजिक, फिल्म थी ताल, और ये सॉन्ग मेरा फेवरेट जैसा कि आप जानते ही हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं ये मौका नहीं छोड़ती, जब भी मौका लगता है मैं इस सॉन्ग को प्ले कर देती हूँ, खुद तो इन्जॉय करती हूँ और आपको भी कोशिश करती हूँ कि पूरा इन्जॉय करवाऊँ। फिलहाल जब बात प्रोग्राम शाम अवध की होती है तो आप जानती हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम ये जानते हैं कि भाई हमारे लखनऊ में आखिर चल क्या रहा है। जी हाँ, कहाँ कुछ क्या हो रहा है, ट्रैफिक अपडेट्स भी आपको देते हैं। उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जॉब सीकर्स के लिए भी बहुत सारी यूजफुल खबरें होती हैं हमारे पास, और वो सारी खबरें हम शेयर करते हैं आपके साथ और होते हैं बेहतरीन से नगमे। और आज भी वो सारा एक एक पिटारा है हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगी, और एंटरटेनमेंट का डोज तो बिल्कुल कम नहीं होने वाला है जब मोना है आपके साथ। सो एक बेहतरीन सा ट्रैक और भेज रही हूँ कि आवाज़ में इसे करिए इंजॉय, और जब लौट कर आएंगे तो क्या खास है जानकारी हमारे पास शेयर करेंगे आपके साथ।

जैनी एंजॉय करते रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ, धड़कन लखनऊ की।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेन धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, और आज उस धड़कन में धड़क रही है आपकी अपनी मेस्मराइजिंग आरजे मोना। सो 6:21 का वक्त और 25 सेकेंड हो रहे हमारे स्टूडियो के में। यस, क्लॉक जो है ना हमारी बड़ा ही बढ़िया टाइम बताती है, और वो जब टाइम बताती है ना तो हम आपको भी अवेयर करते हैं। और अब ये टाइम हो रहा है कि कुछ जो जानकारियां है ना वो हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वैसे आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी है, जॉब सीकर्स के लिए भी है, और उनके लिए भी जो कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं। और एक्चुअली ये एक गुड न्यूज़ है। जी हाँ, आपको बता दूं कि गर्मी को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए, यानी उन्हें बहुत सारी सुविधाएं थ्रू रोडवेज दी जाए या थ्रू ट्रेन दी जाए, ऐसी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो गर्मियों को देखते हुए, जो काफ़ी गर्मी हो रही है, यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं। ऐसे में गुड न्यूज़ ये है कि हैदराबाद गोरखपुर हैदराबाद, जो कि एक वीकली स्पेशल ट्रेन है, इसका संचालन अवधि जो है ना उसे और बढ़ा दिया गया है जून तक। जी हाँ, ये एक वीकली स्पेशल ट्रेन है जो वीकली जाया करती थी हैदराबाद गोरखपुर, और हैदराबाद की ये ट्रेन है। और आपको बता दूं कि अब ये जून तक बढ़ा दी गई है इसकी डेट, यानी ये जून तक आपके साथ चलेगी, आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस रूट पर कहीं आते जाते हैं गर्मियों को देखते हुए, भाई स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप भी अपना ध्यान रखिए, अगर ज़रूरी हो तभी कहीं आइए, तभी कहीं जाइए, वरना घर में ही रहिए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। आपको बता दूं कि यूपी में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसलिए अगर कहीं आप गर्मी में बाहर निकलते तो अपने पास एक वाटर बॉटल ज़रूर रखें, बहुत ही ठंडा पानी या चिल्ड पानी, बिल्कुल धूप से आकर या कहीं धूप में आप हों तो बिल्कुल भी नहीं पीजिएगा। उसके अलावा ग्लूकोज या इलेक्ट्रोल वाटर जो है वो इनटेक करिए आप। इधर जो बाहर के फ्रूट्स होते हैं ना, जो ऑलरेडी कट होते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत भूख लगती है तो आप पूरा फ्रूट लीजिए और उसे ही कट करके खाइए, अच्छे से वॉश करके खाइए। और जितने भी वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, जैसे वाटरमेलन हुए या मस्कमेलन हुए, जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा रहता है, पानी बहुत ज़्यादा रहता है, खीरा हुआ, ये सब खाइए ताकि आपके अंदर डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो, यानी पानी की कमी बिल्कुल ना हो। तो इन सारी चीज़ों का रखिए ख्याल, और अब से कुछ देर में बताएंगे हमारे जॉब सीकर्स के लिए एक खास खबर हमारे पास, शेयर करेंगे आपके साथ एक बढ़िया सा ट्रैक, और भेज रही हूँ, इसे करिए एंजॉय, कहीं जाए नहीं, छोड़ रही आपके अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ धड़कन लखनऊ की।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

0: गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

ना उससे हो ही जाता, फिर आप लाख कोशिशें करें, लाख अपने आप को रोकने की कोशिश करें, ना ये दिल रुकता है ना आप रुक पाते हैं, और बस प्यार हो जाता है। इस प्यार में ना कोई इफ है ना बट, बस प्यार है, प्यार है और बेशुमार प्यार है। 6:34 का वक्त और यही प्यार आपका हमारे साथ है और हमारा आपके साथ है। समोना है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है शाम, जहाँ पर भाई हमारे यात्रियों के लिए जो सुविधा थी वो तो हमने आपके साथ शेयर कर ली है। अब एक खबर है उनके लिए जो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, और खास करके अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ये न्यूज़ फॉर श्योर है आपके लिए। जी, खबर ये है कि रोडवेज में संविदा बस चालकों की भर्ती के लिए 18 मई को आलमबाग बस टर्मिनल पर रोजगार मेला लगाया जाएगा। जी हाँ, आपके लिए इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्लास 8 पास होना यानी 8वीं पास होना जरूरी है, और साथ ही 2 साल पुराने भारी व्हीकल लाइसेंस वाले आवेदन ही इसमें लिए जाएंगे। यानी जो लाइसेंस है वो 2 साल पुराने भारी व्हीकल के होने चाहिए। आवेदन स्वीकार होने पर आपका ट्रायल भी कराया जाएगा। सो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास ये लाइसेंस अवेलेबल है, आप 8वीं पास हैं और ट्राई करना चाहते हैं आप बस चालक की इस पोस्ट के लिए, तो डेफिनेटली 18 मई को आलमबाग बस टर्मिनल पर ये जो रोजगार मेला लगेगा आप वहां जा सकते हैं। आपको बता दूं रोडवेज में संविदा बस चालकों की ये भर्ती हो रही है। 18 मई का जो ये दिन है, जो ये तारीख है, इसे भूलिएगा नहीं, और वहां जल्दी से पहुंच के अगर इंटरेस्टेड है तो इस मेले में आप भी रोजगार जो है वो प्राप्त कर लीजिएगा। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा सूदिंग सा ट्रैक भेज रही हूँ आपके लिए, इसे करिए एंजॉय, कहीं जाइए नहीं, जुड़े रहिए आपके अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ।

अच्छा, बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं ना, हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ ईमेल के जरिए भी कनेक्ट हो रहे हैं। तालिब अंसारी जी लिखते हैं, आरजे मोना मैम जी वेलकम, और ये राजा कटरा बाराबंकी से मेल कर रहे हैं और बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे एक पुराना प्रोग्राम जो अभी मैंने किया था, पुराना यानी कि अब से एक घंटे पहले, टॉप 10, सो उसका भी मेल आया है। श्री गणेशाय नमो नमः, ये मेल है रामराज जी ने किया है। लिखते हैं, टॉप 10 कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन ला, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामशंकर भैया, पीर मोहम्मद वाले, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, यानी उस वक्त सुन रहे थे, एंड थैंक यू सो मच, और प्यार भरा नमस्कार भी हमें मेल कर रहे हैं। और उसके अलावा मोनू सेठ जी एज यूजुअल हमें मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं, मोना जी गाने बहुत सुंदर लाती हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ गाने नहीं भाई, हम कार्यक्रम में जो जानकारी लाए हैं ना, वो भी बड़ी ही सुंदर है, आप ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, बड़ी ही काम की जानकारियाँ होती हैं आप सभी के लिए। और जैसे कि कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुनेंगे प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे, जिसके प्रायोजक होंगे चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ। और खास जानकारी ये है जो आपको बता दूँ कि कल यानी संडे को प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस आएगा, जो कि 12 से 1 आपके साथ प्रोग्राम हमारा ब्रॉडकास्ट होगा। और कल हमारा बड़ा ही खास विषय होगा जिसका नाम है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। और जो उच्च रक्तचाप है यानी हाइपरटेंशन, वो होता क्या है, इसके अलावा इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, उसके उपाय क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर कोमल अग्रवाल, MBBS MD आंतरिक चिकित्सा विभाग। सो अगर आपसे भी या कोई आपका रिलेटिव है या आपसे रिलेटेड कोई इशू है आपको, या हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई इशू है, उच्च रक्तचाप है आपको, तो आप सारी डिटेल्स कर 12 बजे से 1 बजे के बीच जुड़कर हमारे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में ले सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्थ नंबर 0522223885, और हमारा दूसरा हेल्थ नंबर होगा 0522223852। उसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या और कॉल के जरिए आप हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, जो कि है fmakashwanilakhnow@gmail.com। तो हमारे साथ कल 12 से 1 जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल तो आप हमारे साथ जुड़े हुए, तो एक बेहतरीन सा और ब्यूटीफुल सा ट्रैक शेयर कर रही हूँ आपके साथ, इसे करिए एंजॉय, और लौट कर आते हैं तो कुछ और जानकारियां आपसे साझा करती हूं। 6:14

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहाँ आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbowhelpline@gmail.com।
3: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और

0: इस समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल, 8 हरदोई रोड, दुबग्गा।

अच्छा, जिससे आप प्यार करते हैं ना, खास करके जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, उसको अगर ये आप बात कह दे कि तुम हो पास मेरे साथ, मेरे बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो देखिए भाई आपका पार्टनर कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और आज तो खुश करना बनता ही है, क्योंकि आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वट सावित्री का जो व्रत है उसे पूरा किया गया, इस त्यौहार को मनाया गया है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं वट सावित्री व्रत की। इसके अलावा भाई अब एक खास जानकारी, चलिए वो भी जल्दी से शेयर कर देते हैं, क्योंकि 6:56 हमारे स्टूडियो क्लॉक में हो चुका है, प्रोग्राम वाइंड अप करने की बारी आ चुकी है। लेकिन इससे पहले वाइंड अप करें भाई, जानकारी जरूर दे के जाएंगे। सो खबर ये है कि पॉलिटेक्निक 2026 यानी पॉलिटेक्निक 2026 के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी ना, उसे एक बार फिर से बढ़ा दी गई है जी। तो अभी तक ये लास्ट डेट 14 मई थी, जिसे बढ़ाकर 17 मई कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक दाखिला नहीं लिया या किसी भी रीजन से मिस हो गया था और आपको लगा लास्ट डेट चली गई, तो बिल्कुल भी नहीं गई, 17 मई तक डेट बढ़ गई है, आप भी चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा एक न्यूज और है कि सीबीएसई ने क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए री इवेलुएशन के जो रिजल्ट्स थे वो मतलब अनाउंस कर दिए हैं। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप एक संरचित समीक्षा प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स 19 से 22 मई के बीच अपने जो आंसर शीट्स हैं ना, उसे स्कैन करा के उसकी कॉपी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप अपनी वो जो कॉपी है वो देख सकते हैं और री इवेलुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि 19 से 22 मई के बीच ही आपको करना है। और कहां पर आप कर सकते हैं जी, हाँ, cbseit.in पर, ये इसकी वेबसाइट है। उसके अलावा आप cbse.gov.in पर भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बहुत सारी जानकारी आज प्रोग्राम शाम अवध में हमने आपके साथ शेयर कर दी। फिलहाल हम इसी खूबसूरत से ट्रैक के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि आपका बहुत फेवरेट है एंड आई नो दैट है हेलो एफएम, उसमें दोबारा मिलते हैं। तो कहीं जाइए नहीं, बस फोन कॉल पे रेडी रहिए बात करने के लिए, और इन्जॉय करिए इस ट्रैक को। टिल देन बस इस प्रोग्राम को करते हैं बाय।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए टॉप 10 समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। वो नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत के मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेजपिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपये मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए एजेंसियों की सराहना की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वह भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास के दौरान घोषणा की है कि स्टेडियम के बगल में रिजर्व 60 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बस्ती में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रदर्शनी का शुभारम्भ हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में कुल 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 238 पर भीषण सड़क हादसे में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पुलिस राहत एवं विधिक कार्रवाई में लगी है। बनारस रेल इंजन कारखाना में आज प्रधानमंत्री के मितव्यय ऊर्जा संरक्षण एवं प्रयक कार्यक संस्कृति विकसित करने के आह्वान के क्रम में पूर्ण वाहन दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम अधिकारी साझा वाहन से कार्यालय पहुंचे। बीसीसीआई ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पर 12 लाख का जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई कल लखनऊ में सीएसके के साथ खेले गए मैच के दौरान धीमी ओवर गति की वजह से की गई। और अंत में प्रदेश भर में आज वट सावित्री पूजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। व्रती महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित होगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों

0: विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।
2: हेलो FM,
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
5: हेलो, आप अटल रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
6: जी हाँ, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो फरमाइशी गीत है ना, वो हम यहाँ पर प्ले करें, तो आप हर रोज यहाँ पर कॉल करते हैं प्रोग्राम हेलो FM में। जी हाँ, ये मुझे पता है क्योंकि आपका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम है और अक्सर कॉल्स या ईमेल के जरिए आप हमें बताते हैं, जहाँ आप हमसे बातें करते हैं, चिट चैट होती है, और उसके अलावा आप जो गाना प्ले करवाते हैं वो हम प्ले करते हैं, और आप जिसे पसंद करते हैं उसे डेडिकेट भी करते हैं। तो 7:06 का वक्त हो चला है और ये प्रोग्राम शुरू हो गया, और अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522223885। साथ ही आप हमारे दूसरे नंबर जो कि है 0522223885 इस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं और आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, ओ, मुझे लग रहा है कि शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो
7: हेलो,
6: आई आई आवाज आई आई आई। हेलो
7: हेलो,
6: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
7: दीदी की आवाज आई?
6: हाँ जी आ गई, आपको हमारी आवाज आ रही है?
7: जी दीदी, आ रही है आपकी आवाज।
6: जी जी जी सर, अपना नाम बताइए।
7: जी दीदी, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, फुलवारी बाजार, किला 12 में। किसे बात कर रहा हूँ दीदी?
6: जी, हमारे वही पुराने छोटे भाई। ये कहना आप भूल गए। जी कैसे हैं आप फैज जी?
7: जी दीदी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे दीदी, बहुत आपको याद कर रहे थे कि कब आप प्रोग्राम में आएंगे दीदी।
6: जी जी,
7: तो आज आप आ भी गई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सुन के। गाने बहुत ही अच्छे आपने जो है प्ले किए 4 बजे से हैं।
6: जी,
7: बहुत ही अच्छा लगा मुझे गाने सभी, सब मतलब सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही अच्छा लगा, और आपका प्रोग्राम खास करके तो अच्छा ही लगता है, ये सभी RJ का लगता है।
6: जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
7: गाना सुना दीजिएगा, फूल मांगो ना बहार मांगो, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। ये वाला सॉन्ग है दीदी।
6: ये वाला सॉन्ग आप किसे डेडिकेट करेंगे?
7: सबसे पहले मेरी छोटी प्यारी वाली RJ मोना दीदी को।
6: जी,
7: और उसके बाद हम मोहम्मद आसिफ भाई हैदराबाद तेलंगाना से हैं।
6: जी,
7: और रिंकी पिंकी है, गुलाबसा भी है, साहिब अंसारी है, सादिया अंसारी है, समा परवीन आपा है।
6: जी,
7: और मोहम्मद सद्दाम भाई है, बाबू अंसारी भाई, और वो सुरभीर सिंह है। एक और बचे सर।
6: हाँ हाँ बिल्कुल, नाम लीजिए।
7: फकीर अली, फकीर अली सिद्दीकी।
6: जी,
7: फकीर अली सिद्दीकी।
6: जी जी जी,
7: थैंक यू।
6: चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ऑल राइट, सो भाई ये थे फैज जी, जिन्होंने हमसे की बात, और जो इनका सॉन्ग था वो तो इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट कर लिया है। अब जानते हैं कि फोन लाइन पे कौन है नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर, और वो कौन सा गाना करेंगे रिक्वेस्ट। हेलो
8: जी नमस्कार।
6: हाँ जी नमस्कार, किससे बात हो रही
8: है?
6: राजू
8: जी।
6: जी राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
8: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, फोन लगता है लेकिन आप लाइन पे लेके फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है फोन कुछ।
6: हाँ, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन देखिए आपकी कॉल फिर से कनेक्ट हो गई।
8: जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बड़े दिनों के बाद आज मेरी कॉल कनेक्ट हुई है, क्योंकि आपके नंबर है, कई सारे नंबर है, तो किस पे रिंग जाती है, किस पे उठा लेते हैं आप। तो
6: यही तो गेम है, ताकि आप कहीं ना कहीं कॉल करेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। देखिए जितने ज्यादा ऑप्शन उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कि आप हमसे कनेक्ट करें, है ना
8: जी।
6: तो, जी।

0: गाना है कुमार सानू की आवाज है जी, अब फिल्म का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है इस समय।
1: कोई बात नहीं, आप गाना बता दीजिए।
0: गाने के बोल हैं मार कटारी मर जाऊं।
1: अच्छा ऐसे ऐसे गाने जब आप सुनते हैं तो डेडिकेट किसे करते हैं? अगर डेडिकेट करेंगे तो कहेंगे लो मुझे ऐसा गाना डेडिकेट किया है।
0: कोई बात नहीं, गीत तो गीत है, गीतकार ने गीत बनाया तो सुनना तो ठहरा उसको।
1: अच्छा चलिए, अगर ये गाना नहीं मिला मुझे तो मैं कौन सा गाना नेक्स्ट बजा दूं?
0: तो फिर आप कोई सा भी गीत बढ़िया से सुना दीजिए, नया हो तो ज्यादा नया ना हो लेकिन पुराना हो तो ज्यादा पुराना भी।
1: चलिए 90s का ही कोई ट्रैक कुमार सानू की आवाज में प्ले कर दूंगी, ठीक है ना, ये सही रहेगा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
0: थैंक यू
1: जी। तो भाई ये थे राजू जी, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए थे और बड़े ही मज़ेदार सा एक गाना इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है और वो गाना अगर मुझे मिल गया तो मैं प्ले ज़रूर करूँगी। फिलहाल आइए जानते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो,
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
1: वेरी गुड इवनिंग जी, किससे बात हो रही है
2: जी? हम गुलफ्शा सिद्दीकी बोल रहे हैं संडीला से।
1: गुलफ्शा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं आप?
2: जी मैम हम ऑनियर
1: बढ़िया है। हेलो, हाँ जी आप ऑन एयर हैं, आपको हर कोई सुन रहा है।
2: जी, नहीं दरअसल हम आज सुन नहीं पा रहे हैं ना, हम आज हरदोई में
1: हैं। जी जी जी, तो अभी आवाज आ रही है आपको?
2: जी मैम आप कैसी हैं?
1: जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए गुलफ्शा कैसी हैं आप?
2: जी हम बहुत अच्छे हैं, हमें पता चला मोना मैम आई है तो हमने कहा बात करेंगे, सुन तो नहीं पा रहे हैं खैर।
1: चलिए कोई नहीं, बात भी हो गई और अब तो आपका जो सॉन्ग है मैं वो भी प्ले करूंगी।
2: जी मैम गाना किसी और का पसंद का सुना दीजिए, हमारी आपसे बात हो गई, हमारे लिए यही बहुत है।
1: ओह दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच गुलफ्शा।
2: चलेगा जी, हम तो आज सुन नहीं पा रहे हैं।
1: जी जी जी
2: जी जी मैम नाम ले लें थोड़ा?
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नाम लीजिए।
2: जी मैम क्षमा परवीन है, साहिब अंसारी है, साजी अंसारी है, निशा अंसारी है, ममता गौतम है, महक अंसारी, जिन डॉक्टर में सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
1: चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग गुलफ्शा, और नेक्स्ट टाइम आप जब जुड़ेंगे और जो सॉन्ग आप कहेंगे वो मैं जरूर प्ले करूंगी। जी चलिए बहुत अच्छा किया आपने बात करके, आप जहाँ भी हैं बस इंजॉय करिए। जी जी जी, ऑलराइट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो भाई फैज जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी सॉन्ग की और ये मैंने कर दी है प्ले, इसे करिए आप इंजॉय।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ऑल राइट, वेलकम बैक। 7:17 का वक्त हो चला है और बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं सोच रही हूँ एक कॉलर और ले लूँ और उसके बाद एक बढ़िया सा बेहतरीन सा गाना प्ले कर दूँ। हेलो, हेलो जी, गुड इवनिंग।
3: नमस्ते मैम
2: जी। नमस्कार, किससे बात हो रही है?
3: मैम रिंकी पिंकी बात कर रहे हैं, जगदीशपुर सिंहगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
2: आए हाय, इस दीवानों का शहर क्यों कहते हैं रायबरेली को?
3: हेलो मोना मैम, नमस्ते, गुड इवनिंग।
2: वेरी गुड इवनिंग पिंकी जी और रिंकी जी, कैसी हैं आप?
3: कैसी हैं मैम? आप बहुत अच्छे हैं, एकदम मस्त है, झटका हुआ। आप बताइए कैसे हैं? और
2: झटका हुआ हम बिल्कुल ठीक है, बस आप लोग के कॉल का इंतजार कर रहे थे और आप इधर से झटका हुआ कह रही है तो हम इधर से मटका हुआ हो गए।
3: इसके लिए मैम आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच रिंकी जी। और बताइए कैसी हैं आप?
3: मैम बहुत अच्छे हैं, आप पूछिए मत कि आपसे बात हो गई तो हम इतने अच्छे हो गए कि मैम बता नहीं सकते।
2: अच्छा अच्छा, और कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती है जल्दी से बता दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है।
3: जी मैम मूवी का नाम तो नहीं पता है, गीत के बोल है आज मिले हो कल फिर मिलना।
2: अच्छा चलिए, किसकी आवाज में ये पता है?
3: नहीं मैम ये तो नहीं पता, बस सॉन्ग सुना है, मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, जेकी श्रॉफ पर फिल्म आया गया है।
2: चलिए इतना बता दिया है आपने, अब मैं ढूंढ के निकालूंगी और ये गाना जरूर प्ले करूंगी।
3: जी मैम जल्दी से नाम
2: ले लीजिए, ले लीजिए
3: तो मेरी प्यारी सी क्यूट सी मोना मैम और अंजू मैम।
2: थैंक यू।
3: समा परवीन, साहिबा अंसारी और ममता दीदी और मेरे भाई हैं दिलीप राजमाही,
2: जीतर
3: राजमाही, मोहम्मद फैज भाई और धीरपाल भाई और तिवारी अंकल।
2: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको ये गाना मैं प्ले करूंगी अब से कुछ देर बाद।
3: अहमद भाई हो जी और उनका जावेद अख्तर सर, बस।
2: चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब से कुछ देर में प्रादेशिक समाचार आएगा। बाय बाय बाय बाय बाय। तो आपसे कुछ देर में प्रादेशिक समाचार आएगा और उसके बाद हम आपका ये सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सर राजू जी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम 90s का कोई भी एक अच्छा सा ट्रैक प्ले कर दीजिए, तो राजू जी आपके रिक्वेस्ट का ये ट्रैक मैंने कर दिया, प्ले इसे करिए आप एंजॉय।

तो अब से कुछ देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार और उसके बाद आप अपने कार्यक्रम हेलो एफएम में यानी कि 100.7 एफएम रेनबो में दोबारा जुड़ेंगे. तो कहीं जाए नहीं, बस यूं ही एंजॉय करते रहिए.

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
1: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
1: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी, देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने

0: के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगे और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो और इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
0: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
3: उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए यह कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जलस्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी

पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक हिंदी समाचार।
1: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
2: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
1: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
2: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
1: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
2: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
1: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
2: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
3: धड़कन लखनऊ की
2: 100.7 FM रेनबो।
4: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
5: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
6: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
7: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
0: नो डाउट कि आप भी सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। ये मुझे पक्का यकीन है क्योंकि आपके जो कॉल्स हैं, आपके जो मेल्स हैं ना, वो इस खबर पर, वो इस बात पर एकदम पक्की मोहर लगा रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Yes, it's 7:32 in my studio clock program चल रहा है आपका अपना Hello FM, जहां आज आपकी mesmerizing RJ मोना है आपके साथ। और बहुत सारे जो हमारे callers हैं ना भाई, वो तो connected है, call वाला program है, call करेंगे ही, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी call नहीं collect हो रही है, तो वो हमसे mail के जरिए भी जुड़े हुए हैं और उनकी mail सबसे कुछ देर में लेंगे। फिलहाल आइए जानते हैं कौन हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, नहीं मुझे लगता है कि कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। चलिए दूसरी कॉल पे करते हैं हम बात। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग।
8: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग जी, किससे बात हो रही है? हेलो हेलो सर, आपको आवाज आ रही है?
8: हेलो
0: हेलो, आपको आवाज आ रही है?
8: जी हम मोहम्मद सद्दाम
0: जी,
8: रामपुर गढ़ा पुरवारी बाजार जिला वाराणसी से बोल रहे
0: हैं। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सद्दाम सर, कैसे हैं आप?
8: आपका प्रोग्राम सुनते बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप
8: जी? कोई पुराना गाना सुना दीजिए,
0: कोई सा भी पुराना गाना अपने मन से
8: पसंद का सुना दीजिए।
0: चलिए ठीक है, अपने मन से एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक अभी मैं प्ले करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप किसी का नाम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नहीं भाई, नाम नहीं लेना, बड़ी जल्दी थी जाने की, लेकिन उन्होंने हमसे बात कर ली है। चलिए कोई नहीं, 7:34 का वक्त हो रहा है और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो हेलो
9: हेलो, गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग सर, किससे बात हो रही है?
9: तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से।
0: तालिब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
9: जी बढ़िया है, ठीक है। हमने एक बचपन में एक मुहावरा सुना था।
0: हाँ जी सर बताइए।
9: ईद का चांद होना वो आप पर बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि जब आप आते हैं उसके बाद चली जाती हैं, फिर उसके बाद काफी टाइम के बाद आती हैं।
0: अच्छा लेकिन देखिए ना, ईद का जो चांद होता है ना, उसका इंतजार भी बहुत होता है, है ना?
9: ये चीज़ तो
0: ये है ना, तो अब हम अगर ईद का चांद आपने हमें बना ही दिया है तो आप इंतजार करेंगे, तो इंतजार का फल भी मीठा ही होगा।
9: हाँ मीठा तो होता है, जब ईद में

0: खाएं तो मिलती है, वो भी मीठी होती है,
1: जी,
0: और
1: जी,
0: जब आम आती है तब भी अच्छा लगता है, मीठापन मतलब महसूस होता है, तो है तो सन सेम सेम बराबर
1: सब सेम सेम. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस तारीफ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
0: हम सुनेंगे आपका सुरूर मूवी का. नाम है तेरा तेरा, हिमेश रेशमिया भाई साहब का गीत है.
1: जी जी जी अरे उनका क्रेज ही अलग है.
0: जी उनका जब उस टाइम करता था तो उस टाइम सब लोग यही म्यूजिक बजा बजा के सकते, क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छी थी.
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए आज उनका एक सॉन्ग मैंने अपने प्रोग्राम में भी बजाया था.
0: हाँ मैंने सुना था
1: जी.
0: लेकिन आप ये वाला जो है ये अब हम सुनेंगे. नाम
1: बिल्कुल
0: है तेरा तेरा, आपका सुरूर मूवी का.
1: बिल्कुल प्ले करूंगी, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो नाम ले लीजिए.
0: जी हमारे मोहम्मद आसिफ भाई हैं हैदराबाद से, और साबिर भाई हैं कानपुर से, और अकबर भाई हैं. जी बस,
1: जी बस इतने लोग.
0: जी बस इतने लोग. लेकिन एक आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी जल्दी आया करें.
1: अच्छा देखिए इसके लिए एक काम और हो सकता है, जब हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जब वो आपसे मिलते हैं ना, तो आप उनसे तो ये भी कहा करिए कि थोड़ा मोना मैम को जल्दी जल्दी भेजा करिए.
0: हम फीडबैक में मतलब कहते हैं, लेकिन अब उसको सुनवाई नहीं होती है. लेकिन आप जब आती हैं तो कॉल ज्यादा लेती हैं तो अच्छा लगता है.
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी कोशिश रहेगी कि जरूर आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात करें.
0: हमारे गांव राजा कटरा में आपको बहुत ही मतलब गौर से सुना जाता है, बहुत अच्छा लगता है.
1: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और कोशिश पूरी रहेगी कि जल्दी आऊं. ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे जो ये दोस्त है ना इतने प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, हमसे करते हैं बात. और बात कही जब बात कर रहे हैं तो एक कॉल और आ चुकी है, आइए जानते हैं कौन है वो हमारे साथ. हेलो.
2: हाँ मिंटू तिवारी ग्राम बागाना जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं.
1: जी बहुत बहुत स्वागत है मिंटू जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं मैं.
1: और क्या हो रहा था?
2: बस बैठे थे, आपका प्रोग्राम सुन रहा है तो फोन मिला रहा है तो फोन लग भी गया.
1: जी जी जी अच्छा वाह भाई वाह. चलिए बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप?
2: जवाना दीवाना सुना दिए, जवाने को अब तक नहीं है पता. गाना हम किसी को खास डेडिकेट करना चाहते हैं थोड़ा.
1: बिल्कुल बिल्कुल करिए.
2: पहले तो आपको आपके भी टीम कितने आगे उन सभी के लिए, प्रभाकर तिवारी मेरे छोटे भाई हैं, रफी गुलरा से, और राजेंद्र प्रसाद हो गए कुंदा प्रतापगढ़ से, राहुल भाई हो गए इटावा से,
1: जी
2: और ग्राम फिल्मी से इकबाल जी, और जितने मेरे पास जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए रहेगा.
1: जी जी जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. और आपका ये सॉन्ग अब से कुछ देर में मैं प्ले करूंगी, और ये जो सॉन्ग आपने हर किसी को डेडिकेट किया है वो उन तक जरूर पहुंचेगा. आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए. और भई अब वक्त तो चला है कि मैं गाना जल्दी से प्ले कर दूं जो रिक्वेस्ट किया था हमसे रिंकी पिंकी जी ने. और रिंकी जी आपको डाउट था ना कि ये गाना आपको पता नहीं है कि कौन सी मूवी का है, तो मैं बताती हूँ ये स्टंट मैन मूवी का है. तो ये लीजिए मैंने ये सॉन्ग प्ले कर दिया, इसे करिए आप इंजॉय.

सुबह बहुत ही प्यारा सा ये ट्रैक जिसके रिक्वेस्ट हमसे रिंकी पिंकी जी ने की थी और फाइनली आज रिंकी पिंकी को मैंने ये भी बता दिया कि स्टंटमैन का ये गाना है, नेक्स्ट टाइम से ना आप परेशान नहीं होंगे। चलिए फिलहाल अब वक्त हो चला है तालिब जी के रिक्वेस्ट का ये ट्रैक प्ले करने का जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमसे आपका सुरूर मूवी से और ये मैंने कर दिया है प्ले, इसे करिए आप इंजॉय। और अगर बाकी हमारे जो दोस्त हैं हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं और अपने रिक्वेस्टेड ट्रैक सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-2238-845 और साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-2238-852 पर और अपने जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर सुन सकते हैं।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: So, 4:46 का वक्त हो चला है भैया, प्रोग्राम में 15 मिनट भी ढंग से हमारे पास नहीं बचे हैं, लेकिन ये वक्त इतनी तेजी से भागता रहा, मेरा मन करता है इसे रोक लूँ, बहुत सारी बातें आपसे करूँ और आप जितनी भी गाने रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सारे प्ले करूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा समय से बंधी हुई हूँ और सारी कॉल्स नहीं ले सकती, और कॉल ले भी लेती हूँ तो सबके सॉन्ग्स प्ले नहीं कर पाती, और इसलिए अक्सर आप नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन आप नाराज़ ना हो यही हमारी आपसे गुजारिश रहेगी, कोशिश पूरी रहती है हमेशा हमारी कि आपके जो रिक्वेस्टेड ट्रैक्स हैं वो मैं ज़रूर प्ले करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल लूँ और साथ ही मेल्स भी लूँ, हालांकि मेल वाला प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इतने प्यार से अगर आप हमें मेल करते हैं, अपनी बातें लिखते हैं, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि वो बातें मैं सब तक पहुँचाऊँ, यानी आपका मेल ज़रूर पढ़ूँ। तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जल्दी जल्दी से आपके मेल्स पढ़ते हैं। वैभव प्रकाश सिंह नागपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं FM सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा राम राम, और आप लोगों की कॉल और प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनकर बहुत अच्छा लगता है, रिंकी पिंकी जी के जो सॉन्ग है वो भी अच्छे हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हेलो डियर मोना मैम, वेरी गुड इवनिंग, आई एम श्रेया यदुवंशी, गंगागंज रोड भमनऊ विलेज नकटौवा बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एंड ये लिखती है कि ये प्यारी सी शाम ऊपर से हमारी मोना मैम, और कनेक्टेड हैं हम, सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हेलो FM, आने वाली RJ अंजू मैम का भी वेलकम चलिए सबको इन्होंने, यू नो जैसे कहते हैं ना कि हर किसी को प्यार से एकदम भर देते हैं, इन्होंने वही काम किया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से, रामराज राजभानु रामशंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु मिर्जा इमरान बेग, और लिखते हैं कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी लिखते हैं, नमस्ते मैम, मैं पवन कुमार गौतम डॉक्टर शकुंतला मिश्र यूनिवर्सिटी लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, थैंक यू सो मच। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, हाय मुना मैम FM की सोना, कैसी हो आप, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड सारा पीहू अंजू दी मुना दी, आपके लिए दो लाइन अर्ज करती हूँ, आप दूर रहो या पास, मेरी चाहत हमेशा आपसे ही रहेगी, थैंक यू सो मच मुना दी, मेरी कॉल तो कभी लगती ही नहीं है, अगर इम्पॉसिबल हो तो मेरी प्रिय दोस्त पीहू की फरमाइश प्ले कर दीजिए, अच्छा इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल है चलिए कोशिश रहेगी कि जरूर कहीं ना कहीं आपके ये सॉन्ग प्ले कर दूं। मोना दीदी को प्यार वाला नमस्कार, हमारा फोन कभी नहीं लगता इसलिए नाम पढ़ दीजिएगा, कार्यक्रम प्यारा लग रहा है सुनकर, सारा दुख भाग जाएगा, तो लीजिए, उम्मीद करती हूँ आपका सारा दुख भाग गया होगा, आपका नाम मैंने ले लिया है। इंद्रपाल मिश्रा जी ग्राम अमृता महोली सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमृता ठीक है, यहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रपाल मिश्रा जी, एंड नमस्ते, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, जेठ की दोपहरिया पांव जलते हैं, वकील अहमद मंसूरी कटरा हथूरी जिला सीतापुर, साहेब अंसारी रजिया अंसारी, शमा परवीन रिंके पिंकी महक अंसारी गुलफशा सिद्दीकी एमन, सबका नाम इन्होंने लिख दिया है और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और DJ प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप, मैं मलिहाबाद से हूँ, और मैंगो इन्होंने भेजा है, हाय मुझे तो लालच आ गई कहा थे आप बहुत दिनों से बात नहीं हुई, मुझे सॉन्ग सुना दो, गम है किसका है, क्या करूं, गाना नहीं सुना सकती क्योंकि ये कॉल वाला प्रोग्राम है, हाँ आप कॉल करेंगे, कॉल लग गई तो आपका सॉन्ग जरूर प्ले करूंगी, बट थैंक यू सो मच फॉर योर मेल। अशोक कुमार जी वेरी गुड इवनिंग टू यू टू, रायपुर ओड्रा मितौली लखीमपुर खीरी से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आवाज़ अच्छी लग रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपको प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है। मोनू सेठ जी लिखते हैं कि हम शॉप पे थोड़ा सा बिजी हैं लेकिन आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर राधेश्याम शाकिया

0: हसगंज से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड इवनिंग आपको भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। और आगे लिखते हैं, मैम आपकी आवाज़ सुनने को तरस गए थे, बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं आपकी आवाज़, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच राधे श्याम जी। एंड नीलू यादव का हमारे पास मेल आ गया है। राधे राधे, आई एम नीलू यादव फ्रॉम आशियाना बंगला बाजार लखनऊ। सभी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं और मेरी बेटी अनुराधा एंड श्रेया की तरफ से भी थैंक यू सो मच मोना मैम, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। एम एन नवाब हमारे साथ जुड़ी हुई है, लिखती हैं, मैं भी आपको सुन रही हूँ और साथ में काम भी कर रही हूँ। संजीला से आपका मेल आया है, थैंक यू एम एन फॉर योर मेल। एंड उसके अलावा सबका मेल मैंने पढ़ लिया है। मोहम्मद रिजवान जी रह गए थे, आखिरी मेल इनका है। मोहम्मद रिजवान जी लिखते हैं, नमस्कार, आप कैसे हो, आपकी आवाज़ बहुत क्यूट है, प्यारी है। फरिंदा हरदोई से हमें प्रोग्राम सुन रहे हैं और मेल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि सुपर सुपर प्रोग्राम आपका चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओह थक गई, थोड़ी सी सांस ले लूँ। चलिए सांस ले ली है, अब कॉल आ रही है, घंटी बज रही है, आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, किससे बात हो रही है हमारी? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? ओ, तो चलिए भाई फोन तो डिस्कनेक्ट हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की कि उनसे बात की जाए लेकिन बात नहीं हो पाई है। फिलहाल बहुत देर से एक गाना कर रहा है इंतज़ार, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसको प्ले करने से पहले एक कॉल और ले लेती हूँ, शायद बात हो ही जाए। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग मैम
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: मेरी मैम रेशु तिवारी से बात हो रही है।
0: रेशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसी हैं आप?
1: मैम बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं।
0: हाँ आपकी आवाज से तो पता चल रहा।
1: मैम मेरी मतलब पहले फोन हम सब लोग मिलाते थे तो सोचते थे कि कैसे मिल जाता। मैम 12 तारीख से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ, मेरा दूसरे तीसरे दिन लग ही जा रहा है।
0: अरे वाह, ये हुई ना बात, देखा अगर आप सोचते रहेंगे कि ये कैसे सबका हो जाता, मेरा कब होगा, करा दीजिए तो एक दिन हो ही हो जाता है, बस आपको मैनिफेस्ट करते रहना है।
1: जी जी,
0: चलिए बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
1: मैम सॉन्ग सुनना चाहते हैं कभी खुशी कभी गम का, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा छाया, तेरी यही वाला,
0: तेरी पूजा करूं मैं हरदम।
1: जी जी।
0: किसे डेडिकेट करेंगी?
1: सबसे पहले अपने पति को
0: जी, आज तो बनता है।
1: और मेरे मतलब मेरे बच्चे को
0: जी जी,
1: और मेरी दोनों लड़कियों को, जितने सब लोग सुने सभी को।
0: चलिए आपके पति के लिए खास करके हम ये प्ले कर देते हैं क्योंकि आज उन्हीं का ही दिन है।
1: जी,
0: तो ये मैंने प्ले कर दिया है, थोड़ी देर में करूंगी, मतलब अभी तो हमारे दूसरे लिसनर का सॉन्ग है और उसके बाद आप अपना सॉन्ग एंजॉय करेंगे। ठीक है
1: ठीक है, थैंक यू
0: सो मच फॉर कॉलिंग। सो मिंटू जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, इस जमाने को अब तक नहीं है पता, भाई क्या नहीं पता है वो तो मुझे नहीं पता, शायद इन्हें पता हो। फिलहाल इन्होंने जो सॉन्ग हमसे की थी रिक्वेस्ट, मैंने प्ले कर दिए, करिए इसे एंजॉय।

तो भाई सदाम जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि एक मैडम पुराना गाना आप जरूर प्ले कर दीजिएगा, बजा दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कोई सॉन्ग हमसे रिक्वेस्ट नहीं की थी, तो मैंने एक पुराना गाना प्ले कर दिया, इसे करिए आप एंजॉय। बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक है, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने प्ले किया है, इसे आप भी एंजॉय करिए, क्योंकि प्रोग्राम में टाइमिंग बहुत कम बची है।

मन तो यही करता है कि छोड़ के ना जाऊं, लेकिन क्या करते हैं भाई, इस समय से बंधे हुए होते हैं और हमें जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे नहीं तो दोबारा आएंगे कैसे। तो फिलहाल आज के जो लास्ट ट्रैक है, जिसकी रिक्वेस्ट हमसे हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर ने की थी, वो मैंने प्ले कर दिया है, उससे आप करिए इंजॉय। रेशु जी थी जिन्होंने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए इस ट्रैक की थी रिक्वेस्ट, वो मैंने प्ले कर दिया है। और नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी फिर से आपसे होगी हमारी मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा

भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज मैनपुरी के ट्रांजिट हॉस्टल में जन सुनवाई की। इस दौरान श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी नलकूपों हेतु विभागीय नियमों के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन तत्काल स्वीकृत किए जाएं और जन शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर से प्राप्त शिकायत का समाधान संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत आम जन से की गई अपील के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा कर कतिपय निर्देश पर आज प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तमाम विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पश्चिम एशिया में होर्मुज जल डमरू मध्य के व्यापार आवागमन बाधित होने से खाड़ी देशों के कर्मचारियों के बेरोजगार होने की संभावना पर चर्चा हुई। वाराणसी में उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी बिजली सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCAL ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। ऊर्जा विभाग के निर्देश पर प्रदेश भर में 15 मई से स्मार्ट मीटर समस्या निवारण एवं समाधान अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद शनिदेव महाराज का जन्मोत्सव बढ़पुर स्थित सिद्धपीठ देवी मंदिर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर को फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। सभी ने भगवान शनिदेव के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस भक्तों ने न्याय के देवता को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल, काले वस्त्र और सुगंधित फूल अर्पित किए और भंडारे का भी आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। 9 बजे आप सुन 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। और अगला कार्यक्रम है आप शार, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

कुछ अल्फाज थे जो होठों तक आते आते रुक गए, अब वही गजल बनकर दिल से निकला किया करते हैं। 100.7 FM रेनबो पर मैं अंजु शुक्ला आप सभी का खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, आदाब। 8:05 का वक्त है और आज अमावस की रात है। आसमान में चांद भले ना हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ रातें चांदनी से नहीं, आवाज़ों, एहसासों और खूबसूरत अल्फाजों से जगमगाती हैं। तो आइए

आबशार यानी एहसासों का वो सिलसिला जहां गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, हल्के हल्के दिल में उतरती चली जाती हैं। वैसे गजलों की सबसे प्यारी बात पता है क्या होती है? ये बिना शोर किए दिल की बात कह देती हैं। कहते हैं कि तेरा जिक्र हुआ तो महक उठी तन्हाइयां भी, तेरा जिक्र हुआ तो महक उठी तन्हाइयां भी। कुछ लोग यूं भी मौसम बदल दिया करते हैं। कुछ लोग जिंदगी में ज्यादा देर नहीं रहते, लेकिन उनकी बातें, उनका अंदाज लंबे वक्त तक मुस्कुराहट दे जाता है। एक मुलाकात उनसे और फिर आप देखिए कि आप कितनी देर तक मुस्कुराते रहते हैं, उनकी याद में डूबे, उनके एहसास में।

दोस्तों, ये गज़लें भी बड़ी दिलचस्प होती हैं। हर इंसान अपनी कहानी इनमें ढूंढ ही लेता है। वो हंस कर मिले थे हमसे किसी रोज़ यूं ही, और उम्र भर की मुस्कुराहट दे गए। और ज़िंदगी में वास्तव में सही मायने में कुछ मुलाकातें होती हैं ना, जो वजह नहीं पूछती, बस दिल में एक अटूट कभी ना मिटने वाली याद बनकर रह जाती हैं।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
4: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
3: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
4: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
3: जहाँ आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
4: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
3: fmrainbow@gmail.com।
4: याद रखिए हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
5: सात रंग का इंद्रधनुष है,
6: सात सुरों की सरगम है,
7: सात जन्म है सात समंदर,
5: साथ हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के सतरंगी रंग
6: FM रेनबो के संग।
0: FM रेनबो सुन रहे हैं आप 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला। वक्त हो गया 8:23 और आज है शनिवार, सैटरडे नाइट। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे 9 बजे से प्रोग्राम रेनबो कैफे और उसके बाद रजनीगंधा का सफर जारी रहेगा रात 12 बजे तक। फिलहाल कल रविवार को एक विशेष कार्यक्रम हर रविवार दोपहर 12 बजे तक आप तक पहुँचता है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन की अवधारणा को सार्थक करने का प्रयास है FM रेनबो की ओर से। रविवार का साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस 12 बजे से 1 बजे के बीच, और कल यानी 17 मई को हमारा विषय है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, और इस विषय पर आपके प्रश्नों आपकी जिज्ञासाओं के उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी डॉक्टर कोमल अग्रवाल आंतरिक चिकित्सा विभाग। और आप अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से सीधे पूछ सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com इस मेल आईडी के माध्यम से, या फिर हमें डायल कीजिएगा 0522 2238 845 या फिर 0522 2238 852 पर। ये हमारे फ़ोन नंबर से याद रखिएगा। प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस कल यानी रविवार 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार, और अब आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपके रेडियो सेट पर।

दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई चीज दो पल का सुकून देती है ना, तो वो है अच्छा संगीत और अच्छी शायरी। कहते हैं कि हमने खामोशियों को भी पढ़ना सीख लिया, अब हर बात लफ्जों की मोहताज नहीं लगती। और सच कहूं तो कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जहां बातचीत बहुत कम लेकिन समझ बहुत गहरी होती है। हर वक्त हम बहुत सीरियस हों, बहुत गंभीर हों, ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी बस एक प्याली चाय, हल्की बारिश की खुशबू और एक अच्छी गज़ल काफ़ी होती है। मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस हौले से मुस्कुरा दिया हमने। यही तो है खूबसूरती ज़िंदगी की। हर बात को दिल पर ले ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी मुस्कुराकर बस यूं ही कुछ लम्हे जी लीजिए।

कभी गौर किया है आपने कि पुराने गानों और गजलों में एक अजीब सी गर्माहट होती है, जैसे कोई अपने पन से हाल पूछ रहा हो। दिल ने जब भी कोई खूबसूरत दुआ मांगी, हर दुआ में बस तेरा ही नाम आया। वैसे ये दुआएं भी बड़ी प्यारी चीज होती है ना। चलिए, गजलों की महफिल सजी हुई है आबशार। मैं हूँ आपकी हमनवा अंजू शुक्ला। वक्त हो गया है 8:38 और गजलों की महफिल में एक बात हमेशा महसूस होती है कि अच्छे अल्फाज कभी पुराने नहीं होते। ये जो हल्की सी फिक्र करते हो ना मेरी, बस यही बात हमें अपनी सी लगती है। सच्चे रिश्तों में दिखावा कम, एहसास ज्यादा होने चाहिए, है ना? क्योंकि दिल हमेशा सच्चाई पहचान लेता है, वरना इस बेचारे दिल को जलाने की बात तो हर कोई करता है। अब कहाँ तक बचाएं इस दिल को? बस ये जो अपने और सच्चे रिश्ते होते हैं ना, यही तो हिफाजत करते हैं हमारे एहसासों की, हमारे दिल की।

दोस्तों आज की हल्की फुल्की मुस्कुराहटों और खूबसूरत गज़लों से सजी महफिल यहीं तक। उम्मीद है आप शार की ये शाम आपके दिल को सुकून और चेहरों को छोटी सी मुस्कान ज़रूर दे गई होगी। महफिल से यूं गए वो जैसे कभी आए ही न थे, मगर दिल कह रहा है फिर मुलाकात होगी। जी हाँ।

दोस्तों आज की हल्की फुल्की मुस्कुराहटों और खूबसूरत गज़लों से सजी महफिल यहीं तक। उम्मीद है आबशार की ये शाम आपके दिल को सुकून और चेहरे को छोटी सी मुस्कान ज़रूर दे गई होगी। महफिल से यूं गए वो जैसे कभी आए ही न थे, मगर दिल कह रहा है फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी। ठीक 9 बजे प्रोग्राम रेनबो कैफ़े लेकर हाज़िर होती हूँ, रहूँगी आपके साथ रात 12 बजे तक। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लग

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने

0: गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक

प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घड़ी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, एक मिनट का वक्त हो गया भाई। बहुत तेज जो चेहरे पर स्माइल आई है ना।

ऐसे ही बनी रहेगी रात 12 बजे तक, मेरा ये विश्वास है, क्योंकि आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की। कैसे हैं भाई? बहुत अच्छे होंगे मुझे पता है, आप लोग अभी अभी ईमेल भेजना शुरू करेंगे और हमें मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग मस्ती में हैं और खूब इंजॉय करने वाले हैं आज की ये रात। जी 9 बजे से जो सफर शुरू होता है शनिवार राति, जी हाँ सैटरडे नाइट, वो होता है रेनबो कैफे का। खुल चुका है मस्ती संगीत और देसी रंगों से सजा आपका अपना रेनबो कैफे, जहां हर बीट में है जोश, हर गाने में है देसी तड़का और हर आवाज में है अपनापन। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले घंटे होगी भोजपुरी की प्यारी सी मिठास, हरियाणवी की ठसक, पंजाबी का स्वैग और राजस्थानी का खूबसूरत रंग सब मिलने वाले हैं। जी हाँ, एक ही छत के नीचे, मतलब छत के नीचे तो हम बैठे, आप सुनेंगे रेडियो पर। और आज की शाम एक खास शुभकामना के नाम भी, वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर सभी सुहागिन बहनों को, माताओं को अखंड सौभाग्य, खुशियों और प्रेम भरे जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे FM रेनबो की टीम की ओर से। सिंदूर की ये चमक कभी फीकी न पड़े, मांग का हर रंग खुशियों से भरा रहे, सावित्री सा प्रेम मिले हर जन्म में और हर सुहाग अमर, सदा के लिए अमर बना रहे। तो चलिए जनाब, इस खूबसूरत दुआ और मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं रेनबो कैफे का ये सुरीला सफर।

बस यही दुआ मांगी हम सब से, सावित्री मैया से, माता रानी से, कि सबके सिंदूरा चमकत रहा है और सबके सुहाग अमर रहा है। तो कहो प्यारे श्रोता लोग, रेनबो कैफे में रहुआ सबके स्वागत बा पूरे दिल से। एजा गाना ना बजेला, सीधा दिलवा नाचे लगेला, तो तैयार हो जाई कहे कि अब आवे वाला बा ईगो झन्ना अटेदार भोजपुरी गाना।

नमवा काफी बा भैया, रेनबो कैफे चलत बाटे। हाँ वैसे है आज है सैटरडे नाइट, और बाकी दिनों में तो आप सुनते हैं प्रोग्राम पॉप टाइम इसी वक्त, लेकिन ट्यूसडे एंड सैटरडे यानी मंगलवार और शनिवार ही होती है शाम रेनबो कैफे की, जहाँ पर जबरदस्त म्यूजिक आपका मन पसंद बजता है, हम बजाते हैं। जी हाँ, डीजे वीजे नहीं है यहाँ पर, आरजे हैं, लेकिन आरजे आपके दिल की बात पूरी तरह से समझते हैं, और क्योंकि आप अपने दिल की बात हमसे शेयर भी तो करते हैं पूरी शिद्दत के साथ, ईमेल आप हमें कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com से। बताने की आवश्यकता नहीं, नए लिसनर्स के लिए बता देते हैं, हमारे नए वाले जो दोस्त हैं जिन्होंने 100.7 FM रेनबो लखनऊ ट्यून किया है किसी भी जगह से। जी हाँ, अगर आप लाइव रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं, या फिर रेडियो पर अपनी गाड़ी में सुन रहे हैं, ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं कहीं से, तो बस आपका वेलकम है। इस वक्त को याद रखिएगा हमेशा, बहुत ही शानदार महफिल सजती है हर रात 9 बजे, और आप इस महफिल को पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर, और अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। कैसे? FMAKASHVANI, दैट इज FM आकाशवाणी, और लखनऊ की स्पेलिंग तो पता ही होगी, LUCKNOW, तो FMAKASHVANILAKHNOW@gmail.com ये हमारी मेल एड्रेस है, इस पर आप हमें मेल कीजिए और बताइए कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कहां से सुन रहे हैं, नाम पता जरूर लिखिएगा, लंबी बातें मत लिखिएगा क्योंकि पूरे मेल्स पढ़ने का वक्त नहीं होता है, गाने ज्यादा सुनाने होते हैं ना, गाने ज्यादा सुन रहे हैं या बकवास सुननी है ज्यादा, मतलब बकवास नहीं करते हम लोग, बकबक बहुत करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हरियाणा की तरफ, ये लगा हरियाणवी तड़का।

अभी 100-100 के नोट, 1000-1000 के, 500-500 के नोट जो कोई वारेगा तो फिर नाचेंगे तो जबरदस्त, लेकिन वो नोट हमको तो मिलने वाले नहीं है। बताओ जो बाकी लोग होते हैं ना, बच्चे बच्चे, वो सब लूट लेते हैं नोट, लेकिन नाचने में मजा बड़ा आता है जब कोई नोट वार रहा हो तो फिर उत्साह बढ़ जाता है। क्यों, और ऊपर से जब अगर हमारे सैया जी, राजा जी, मतलब पतिदेव जी वार रहे हो तो फिर क्या, फिर क्या सासू माँ, क्या चचिया सास, क्या बुआ सास, क्या ससुर जी, अरे सबको छोड़िए, हटाइए और बिंदास नाचिए मस्ती में।

जी मटक वटक ली हो तो थोड़ा बैठ जाइए, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा सुस्ता लीजिए, सांस ले लीजिए, है ना। मतलब आजकल वैसे कहा जाता है कि जब डीजे पे मटकना हो, कहीं डांस हो रहा हो, डीजे बज रहा हो, तो फिर मतलब सबके अंदर ऐसा जोश आ जाता है कि क्या ही कहा जाए। और फिर कहीं अगर सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो

फिर लगता है कि थोड़ी देर में जाएंगे, जब प्रसाद बंटने वाला होगा तब जाएंगे, वरना इतनी देर कौन बैठेगा ना, तब यहाँ दर्द वहाँ दर्द दुनिया भर के दर्द। खैर ये तो अपनी अपनी बात है। खैर बस जब मस्ती भरा मूड होता है, माहौल होता है, तो अपने आप एनर्जी से आ जाती है ना, और ये एनर्जी रेनबो कैफे आप तक पहुँचाने में पूरी मशक्कत करता है। पूरा हफ्ते हम सारे आरजेज आपको झुमाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए मेहनत करते हैं, और हमें पता है कि आपको पसंद भी आती है हमारी मेहनत, और इसीलिए जब इस तरफ नज़र डालते हैं, मतलब हमने गर्दन इधर घुमा ली है, गाना थोड़ी देर में सुनाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक में आपके ईमेल्स पढ़ते हैं। जी हाँ, जो ईमेल्स आपने हमें भेजे हैं, जो झड़ी लगी है उसकी क्या ही कहने है। मोनू भैया ने सबसे पहले मेल किया है और कहते हैं, अंजू बहन जी को राम राम नमस्ते, माटी की सुगंध में हमने और हमने हमारी नानी जी ने बहुत मिस कर किया आज, और नानी आज हमसे नाराज है। काहे नाराज भैया, नानी जी पर नाम नाराज राज ना हुआ है, हम आऊबे तो का मनाए ले, ठीक है नानी, बहुत नीक लागत जब मुस्कियात रहा तू है, नाराज रहा जरूरत ना है नानी, और देखा देखा नानी अभी मान जाइए मोनू भैया, चला कोनो बात नहीं। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट मेल पर। रॉयल अमित यादव जी यानी श्रेया यदवंशी है, गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नकटुआ बाराबंकी से हमें लिख रही है। हेलो डियर आरजे, माय रेनबो की का सुकून प्यारी से मैं मंजू, मॉर्निंग में मिस यू, और अब आप हुई है रूबरू, मिल गया है रात का सुकून, अमावस की रात है, हम सब रेनबो के पास है, अंजू मैम का साथ है, वाह वाह क्या बात है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच श्रेया इतना इतने प्यार के लिए और इतना प्यार भरा ईमेल भेजने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बस ऐसे हमारे साथ बनी रही है ना, फिर क्या ही कहने, और हमारी एनर्जी बरकरार रहती है जब आप लोगों का साथ रहता है। विजयपाल यादव भैया कहीं है कि आदरणीय दीदी सादर पाए छो, दीदी आपको समस्त श्रोताओं को वट सावित्री पूजा शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामना स्वीकार हूँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी कैसे हैं, काफी दिनों बाद आई इस कार्यक्रम में, जल्दी जल्दी आया करो, क्योंकि आप जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अच्छा कहा था कि दीदी आपसे निवेदन है कि हमारे ईमेल अवधि भाषा में पढ़ी हुआ है, क्योंकि आपकी अवधि बहुत लोकप्रिय बहुत प्रिय लागत है, तो भैया कहा थे आगे कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आप सर बहुत अच्छा प्रस्तुत किया आपने और बहुत अच्छा लगा, तो भैया विजयपाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम कही थे बस यही तरह हमने सबके साथ बना रहा सुनत रहा करा हमेशा सवेरे 6 बजे से रात 12 बजे ताई कार्यक्रम, आपके अपना पसंदीदा कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम एफएम रेनबो चैनल पर आए, ठीक है भैया। अब देखा अब आगे बढ़ी, देखा आगे बढ़ी तो ये कहती आवा हाँ रेनबो कैफे पेश करने वाले को हमारा आदाब, और ये आदाब आया है ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरून नूर अंसारी जी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद अदृशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बस ऐसे ही हमारे साथ रोज बने रहा करिए, थैंक यू सो मच। अशोक कुमार भैया आपको भी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, और आप हमें सुन रहे हैं रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी से, और आपके साथ हैं बैरिस्टर चाचा अजय राज, प्रदीप राज, सब सुन रहे हैं, सबको हमारा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। और नेक्स्ट मेल है हमारे पास वैभव प्रकाश जी का, इन्होंने भी सभी श्रोताओं को राम राम भेजा आज के प्रोग्राम में, मैं आगरा के समय के अपने कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं, रजत रस्तोगी सीतापुर, नूरुद्दीन सिद्दीकी रायबरेली से, यतिन बजाज दिल्ली से, अभिषेक तलूजा दुबे जी दिल्ली से, और कहते हैं कि आप लोगों के साथ बिताए गए खट्टे मीठे पल बहुत खूबसूरत थे, थैंक यू सो मच। आगे इन्होंने लिखा, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया, क्या बात है। वैभव प्रकाश सिंह नागपुर महाराष्ट्र से, वास्तव में आप बहुत लकी हैं जो आपके साथ इतने सारे प्यारे दोस्त हैं, वरना जो भीड़ होती है ना उसमें सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं, कद का होते हैं, लेकिन जिनके पास सच्चे दोस्त होते हैं ना वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं दोस्त। खैर थाना राम शर्मा जी हमें लिख रहे हैं, हेलो गुड इवनिंग, आफ्टर वेरी हॉट डे योर कूलिंग पॉप टाइम इज वेरी एंटरटेनिंग एंड रोमांटिक, इट रिफ्रेश अस फुली, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही रिफ्रेशिंग सॉन्ग्स आपको हम सुनाते रहेंगे, फिलहाल एक और भोजपुरी तड़का लगाने की हम कर चुके हैं तैयारी, तो सुन लीजिए हमारे साथ। और अब 9 बजकर हो गए हैं 20 मिनट, आप हमें मेल कर सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, लेकिन भाई छोटी छोटी बातें लिखिएगा ताकि आप सबके मेल्स शामिल हो और गाने ज्यादा से ज्यादा हम आप तक पहुंचा पाएं।

भैया ये तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था इसमें, बाकी जिससे आपने प्यार किया उसका क्या ही कसूर है ना, आप चाहे 100 खर्च करो चाहे उसके ऊपर 1000 खर्च करो। खैर मोहब्बत में ये सब चीजें मायने रखती हैं क्या? नहीं रखती ना, बिल्कुल कतई नहीं रखती भैया, किसी एंगल से नहीं रखती, क्योंकि सब कुछ बहुत बेशकीमती होता है मोहब्बत में, और उसके आगे जितनी भी चीजें होती हैं वो बिल्कुल उनकी कोई कीमत नहीं होती। बस एक दूसरे से प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाते रहिए, क्योंकि प्यार से ही तो ये जिंदगी चलती है। और विकास जी ने हमें प्यार भरा सलाम भेज दिया, चरण स्पर्श भेज दिया, जिला उन्नाव से, तहसील सफीपुर, गांव सलीद से हमें ये सुन रहे हैं। रात 12 बजे तक ये जुड़े रहेंगे, थैंक यू सो मच। और इनकी प्यारी सी बहन है प्रिया, और इनके मित्र हैं ब्रजेश सिंह, दीपू बहराइच से, आप सब इनके साथ सुन रहे हैं। प्रोग्राम की तारीफ की है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो जुड़े हुए हैं लगातार। क्या इतने सारे मेल हम शामिल कर पाएंगे, बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आगे। खैर जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। बाबू अंसारी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे भैया का डांस कर रहे हो, जबरदस्त, देखना जरा मोच वोच ना आ जाए पैर में, मतलब एक इन्होंने GIF भेज दिया उसमें डांस करते हुए। अच्छा ये कोट वोट पहन के टाई लगा के डांस करना भी बड़े मजेदार होता है ना, चलिए कोई नहीं, आप बस ऐसे लगे रहिए। और इन्होंने नमस्ते भेजा, प्रोग्राम की तारीफ की, नसीम अंसारी जी, मुन्नन अंसारी, फैज अंसारी और बाबू अंसारी जी, थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही सुनते रहे हमें। आप देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से सुन रहे हैं। नेक्स्ट मेल है रामराज जी का, और रामराज जी को हम राम राम कहते हैं, आप कहाँ से सुन रहे हैं? इन्होंने लिखा है कि अच्छा पॉप टाइम नहीं, आज रेनबो कैफे, शनिवार को रेनबो कैफे आता है और मंगलवार को रेनबो कैफे आता है, बाकी दिन इस वक्त आता है पॉप टाइम प्रोग्राम। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामशंकर भैया, पीर मोहम्मद वाले और पप्पू जी।

मनीष जी, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग साहब, और गाने तो आप लाजवाब सुनाते हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद आपको भी। मनोज विश्वकर्मा जी, राधे राधे, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू। आबशार का भी इन्होंने सुना, इनके पूरे परिवार ने सुना, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए। छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से आप हमें सुन रहे हैं, क्या बात है मोनू जी, काहे लिए अच्छा फिर से मेल किए। अब अंजू बहनी आई है तो प्रोग्राम में तो प्रोग्राम एकदम झमकौआ और झम झम झउआ होई, ईमा कोनो सक नहीं है, कितना झमाझम मेल भेज दियो है भैया। अरविंद कुमार दुबे भैया कहाँ से लिख रहे हैं, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं, अरविंद दुबे, ग्राम धर्मदेवा पोस्ट छठहा जिला मिर्जापुर से। और इन्होंने नमस्कार भेजा सभी श्रोताओं को, वट सावित्री पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, और ये 2009 से एफएम रेनबो सुनते हैं। रेडियो पर मिर्जापुर में कभी कभी फ्रिक्वेंसी मिल जाती थी, लेकिन अब तो देश विदेश के कोने कोने में हमारा एफएम रेनबो लखनऊ पहुंच चुका है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक है नहीं, क्योंकि हम मोबाइल पर, गूगल पर, ऑनलाइन लाइव रेडियो के माध्यम से या प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप सब तक पहुंचते हैं, तो बस हमें अपने पास ही रखिएगा। और इन्होंने ये कहा है कि क्षेत्रीय भाषा के गीतों की मिठास बहुत अच्छी है। अरविंद दुबे जी, गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा तन्वी दीपा श्याम कुमारी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच अरविंद जी। और आपको हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि एफएम रेनबो पर शनिवार सुबह 10 से 11 और बुधवार सुबह 10 से 11 एक प्रोग्राम आता है सुगंध माटी की, उसमें आप अलग अलग भाषाओं के लोकगीत सुन सकते हैं, लोक संस्कृति का आनंद ले सकते हैं, और शनिवार को तो सिर्फ अवधि खास तौर पर अवधि लोकगीत आपके लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जरूर सुनिएगा। शोभित शर्मा जी ने भी हमें मेल किया है, थैंक यू सो मच, आप कहाँ से सुन रहे हैं हमें ये नहीं बताया, और आपके मेल में कुछ अलग तरह का कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आचल जी कैसी हैं आप, राम राम, हम बिल्कुल अच्छे हैं, कहा थी यहाँ की प्रोग्राम जबरदस्त चलत बाटे, तो भैया जबरदस्त एक चले दे है। आचल अंकित सेठ रायबरेली से, बहुत जने हमका मेल करे हैं, नीलू शर्मा बहनी के भी मेल आ गया, लेकिन भैया चलो एक लगाते हैं पंजाबी तड़का, क्योंकि अगर पंजाब नहीं गए हम घूम फिर के तो फिर कहाँ गए भैया, मतलब हमारा ये सफर अधूरा रह जाएगा ना, तो चलिए पंजाबी, पंजाब से होकर आते हैं थोड़ा सा झूम कर मस्ती भरे अंदाज में, ठीक है, तो लगाइए भांगड़ा, थोड़ा सा बल्ले बल्ले कर लीजिए जी हमारे साथ, ये देखिए देखिए कितनी गल करती है भैया, गल ना करो, नाच दिखाओ, हाँ

0: ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ?
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, 32 मिनट का वक्त हो गया, 100.7 FM रेनबो ट्यून किया है और आज है सैटरडे नाइट और सैटरडे नाइट को होता है रेनबो कैफे और ये खूबसूरत महफिल आपके बिना कैसे पूरी हो सकती है। आप लोग जब आते हैं हमारे इस कैफे में तभी तो रंग जमता है भाई, और रंग हम जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अलग अलग राज्यों की जो खुशबू है वो आप तक पहुंचाएंगे और भोजपुरी के तो दीवाने हमारे पास हजारों हैं और भोजपुरी की फरमाइश भी आती रहती है तो भोजपुरी गाने मैक्सिमम आपको सुनने को मिलते रहेंगे। बीच बीच में फिलहाल जावेद अख्तर जी ने हमें मेल किया है, कहां से मेल कर रहे हैं ये? रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं और इन्होंने भी गुड इवनिंग भेजा है। अलग अलग रंग रूप सुनने को मिलेंगे क्योंकि आपकी मधुर आवाज में इस कार्यक्रम में जो मंत्र लगेगा वो गीतों का तड़का हमारे धड़कनों में बस जाएगा। क्या बात है, मतलब कहां कहां से आप लोग ये बातें कर लेते हैं। वैसे सबके सब आरजेज बन गए हैं, बोलते भी हैं, कविता भी कर लेते हैं, कवि शायर सब कुछ बन चुके हैं वैसे। अच्छा, अगला मेल हम पढ़ते हैं। गाना बजे तब पवा अपने आप थिरकेला, पवा थिरकेला तो गवा जवार के लोगवा सब देखेला, पर ना मंजू दीदी हम हाई मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरगुआ जिला लखीमपुर खीरी से। दीदी तो हर कार्यक्रम रेनबो पॉप टाइम का के का कही, हर घंटा एक से बढ़कर एक गाना बजावे लो दिल खुश हो जाला और हम तो हर रोज हर घंटा टाइम से रेडियो लगा के लाइव सुनेला और तुहार आवाज में ऐसा जादू बा की घर द्वार के काम छोड़ के सब सुन ही बैठ जाला। दीदी सहरज बा हमार फरमाइश के गाना रे दैया, यही पता इंडिया मात खाएगा भैया कि हम फरमाइश के गाना ही ना बजाऊबा है। तुहार छोटा भाई मुनेश कुमार राज, छोटा भाई आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद है, जय हो। बस फरमाइश वाला गाना ना कहा है हम, देखा वैसे जो ना प्लेलिस्ट पे बहुत मेहनत करी थे है? और प्लेलिस्ट हमारे जो ना एक से बढ़कर एक गाना लेके आई थे और उम्मीद करी थे कि आप सबका पसंदा हो आवे है, तो चला बस हमारी प्लेलिस्ट एंजॉय करिए। महेंद्र दीवान जी कैसे हैं आप, घड़ी कम्बा आपको भी और आपने भैया ये जो पोस्टर वोस्टर बना के भेज देते हो, एक फोटो हम खींच के वहीं लगा हुए अपनी स्टोरी पर, और लेकिन ये जो साड़ी है और गहना गुठी हमका पहराए दे है ना, और घड़ी हरी हरी, अरे वाह, हरी हरी साड़ी, मतलब पूरा सावन आएगा वहाँ हमारी फोटो में, और ये मतलब हमारे पास तो है नहीं, ये कहाँ से हेयर के लाया, अच्छा पहनाएं दे है तो मतलब भेजन दे है आपने दीदी के लिए है, ठीक है। वैसे आपने ये लिखा है कि हमारी फेवरेट आर्ट जंजू शुक्ला मैम सादर प्रणाम, और आप हमें मेल कर रहे हैं गाँव रूड जिला नागौर राजस्थान से और आपने AI के माध्यम से जो पोस्टर बनाकर हम सभी आरजेस का लगभग आप भेजते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। और इन्होंने लिखा है कि कल मुझे सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि आज रात 8 से 12 आपका कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी, तो मैं आज सुबह से ही सारे काम सुबह ही निपटा दिए, पूरे दिन इंतजार था, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने भी एक गाना लिख दिया है और कहते हैं कि मुझे पता है कि फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है लेकिन रेडियो सुनते सुनते मेरा मन एक बेहद खूबसूरत गाने के लिए मचल गया है, तो चलिए कोशिश रहेगी। लेकिन हम आपको बताएं ना कि ये जिस सिंगर के गाने हैं उनके गाने हम और भी अलग अलग गाने लेकर आए हैं और ये वाला गाना तो अक्सर सुनते रहते हैं आप लोग हैं, काहे लिए बता, मतलब हमको अपनी प्लेलिस्ट चेंज करने पे मजबूर मत किया करिए आप लोग, और इमोशनल ब्लैकमेल तो बिल्कुल मत किया करिए क्योंकि हम हैं भैया बहुत सेंसिटिव अंदर से हैं, हमारे आंसू आंसू बहुत जल्दी निकल जाते, क्यों नाराज नहीं करना चाहिए तुम। अच्छा वैसे देखिए नीलू शर्मा बहनी हमको मेल कर रही हैं और हमेशा की तरह इनके मेल में अकेले इनका नाम नहीं रहता है, बहुत सारे और लोग भी रहते हैं साथ में, जैसे कि मेरे साथ साथ सभी दोस्त आपको सुन रहे हैं, सारा, पीहू, मनु, पूजा, अनीता, रोशनी, बबिता, ऋचा दी, समरीन दी। अच्छा, ये समरीन और ऋचा को नमस्कार बोलने के लिए कह रही हैं, तो नमस्कार नीलू की ओर सबको। और ये रूपपुर चंदेला से हमें फोन कर मैसेज कर रही हैं और इन्होंने भी माँ सावित्री का आशीर्वाद सब पर बना रहे शुभकामनाएं दी हैं, थैंक यू सो मच, रात 12 बजे तक बने रहिएगा, इन्होंने लिख दिया है कि वादा है निभाएंगी, और वादा तोड़ने वालों में से है नहीं हमारे जो प्यारे लिसनर्स हैं ना। तो और एक मेल और, रेनबो कैफे सुपर प्रोग्राम और अंजू बहन जी हर प्रोग्राम में आप उन गानों को ढूंढ कर लाती हैं जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और फिलहाल अब हम चलते हैं गाना अगला, सांस ले लेती हूँ, पानी वानी।

के आते हैं, आप राजस्थान घूम कर आइए, ठीक है, एक बढ़िया सा मारवाड़ी सॉन्ग आपके लिए। मतलब मूड चेंज हो गया, स्टेप चेंज हो जाते हैं, ये वाला डांस ऐसे ऐसे किया जाता है ना, नाच के बताऊं रेडियो पे दिखाई नहीं पड़ेगा।

मजेदार गाना है और डांस तो भैया बहुत खूबसूरत होता है राजस्थानी गानों पर, और इतना प्यारा डांस लगता है कि खैर क्या बताएं। रेडियो है, नचा के तो नहीं दिखा सकते आप लोग को और ना आप लोग को देख सकते हैं, बस उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, इस प्रोग्राम को आप इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आरजे अंजू शुक्ला, आपने ट्यून किया 100.7 एफएम रेनबो और वक्त हो गया है 9:40। सोनू परवाना जी लिखते हैं कि आप सुपरफास्ट मेल की तरह सभी मेल पढ़ लेती हैं, आपसे मेल छूट जाए ये तो हो ही नहीं सका था। अरे दैया ये चैलेंज ना दे भैया, बहुत ही ज्यादा मेल आवत है और जो ना है कौनों न कौनों तो छूटे जाते, लेकिन कोशिश यही रहा था कि सब मेल पढ़ ले। और वैसे सारे मेल्स पढ़ने के लिए हमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अजय सिंह कुमार जी ने मेल किया है, गुड इवनिंग डेजा, कहते हैं आज आप रात के प्रोग्राम पेश कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं मैम, आज आपकी कमी इस प्रोग्राम सुगंध माटी में महसूस हो रही थी, खैर कोई

शिकायत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। देखिए शिकायत करिएगा भी नहीं, हमारे सारे आरजेज बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और आज तो हमने भी सुना का भैया, विनय यादव भैया और ओम भैया ने का रंग जमाया था ना सवेरे प्रोग्राम सुगम माटी की, में बड़ा मजा आया था। और थैंक यू सो मच अजय कुमार सिंह जी, आप हमें सीतापुर में सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। 12 बजे तक हमारे साथ रहेंगे, मेल वेल करते रहिएगा ताकि हमें पता रहे कि हमारे साथ है कोई, है ना, हम अकेले नहीं यहाँ पर। रेणु देवी जी वेरी गुड इवनिंग, और आपने भी हमें मेल किया, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, पूरे प्रोग्राम के पूरे परिवार के साथ सुन रही राम सेवक रेणु आयुषी उषा नीलू, और कहाँ से सुन रही ये आपने नहीं लिखा है, थैंक यू सो मच। आगे अच्छा ये औरास उन्नाव से सुन रही है, थैंक यू। और हिस्टोरिया यानी ओम प्रकाश उजाला जी भी हमें सुन रहे हैं, बस इन्होंने लिखा, जानते हैं क्या लिखा, आए हाय आए हाय। चलिए नेहा वर्मा गुड इवनिंग कहती है, मुझे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनने में अच्छे लगते हैं, प्रोग्राम बेहतरीन लग रहा है, गानों का सिलेक्शन मस्त है। नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि सुधाकर, कोमल सियाराम, गौरपुर और बमना खेड़ा जिला हरदोई से आपका मेल आया है, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रजेश सिंह, दीपू भैया कहाँ थे आप, अच्छा हमारा इंतजार कर रहे थे, आपका कार्यक्रम सुनने का कल से इंतजार कर रहे थे दीदी, जब ये कार्यक्रम

पर रेणु देवी जी, वेरी गुड इवनिंग. और आपने भी हमें मेल किया है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है. पूरे प्रोग्राम के पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं राम सेवक रेणु, आयुषी, उषा, नीलू. और कहाँ से सुन रही हैं ये आपने नहीं लिखा है. थैंक यू सो मच. आगे अच्छा, ये औरास उन्नाव से सुन रही हैं, थैंक यू. और हिस्टोरिया यानी ओम प्रकाश उजाला जी भी हमें सुन रहे हैं. बस इन्होंने लिखा, जानते हैं क्या लिखा, आए हाय आए हाय. चलिए, नेहा वर्मा गुड इवनिंग कहती है, मुझे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनने में अच्छे लगते हैं, प्रोग्राम बेहतरीन लग रहा है, गानों का सिलेक्शन मस्त है. नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सियाराम, गौरपुर और बमना खेड़ा, जिला हरदोई से आपका मेल आया है. थैंक यू सो मच. बस ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ. विजय सिंह, दीपू भैया, कहाँ थे आप? अच्छा, हमारा इंतजार कर रहे थे, आपका कार्यक्रम सुनने का कल से इंतजार कर रहे थे. दीदी, जब ये कार्यक्रम सुनना छोड़ दिया था, जब से बदला हुआ था, मनपसंद आरजे को सुन लेता हूँ बस. तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. आप हैं तो कार्यक्रम में कोई कमी नहीं होगी, उम्मीद है. अच्छा, कोई कमी अगर लग रही होगी तो बताइएगा. कैसरगंज बहराइच से आप हमें सुन रहे हैं, नमस्ते आपको भी. सुनील सिंह जी, कैसे हैं आप? इन्होंने भी राम राम भेजा है. ब्रजेश सिंह, दीपू का छोटा भाई विपुल सिंह, चाचा शैलेंद्र सिंह, इन सब के नाम लिखे हैं. अच्छा, आप सुनील सिंह जी जो है दीपू जी के छोटे भाई हैं शायद. इटहुआ कैसरगंज बहराइच से आपने लिखा है, थैंक यू. तालिब अंसारी जी, कैसे हैं आप? आप हमें आज अंजुमन, ऐसा लगता है कि हम बारात में आ गए हैं. क्या गीत हैं आज, और हम म्यूजिक सिस्टम पे सुन रहे हैं तो बारात वाली फीलिंग आएगी. आपशार बहुत अच्छा लगा, थैंक यू. 12 बजे तक आप भी हमारे साथ रहने का वादा करते हैं. और आपने कुछ फोटो भेजी है, अरे है कितने सारे कॉइन्स, सिक्के, ये बटोर के क्या बारात में नाच रहे थे, तो जो लोग उड़ाते हैं फेंकते हैं वो सब तालिब अंसारी जी बटोरने जाते हैं लगता है. मतलब चादर पे सब सजा के हमें फोटो भेजे, अरे मजाक कर रहे हैं भैया. चलिए, राजा कटरा बाराबंकी से आप इंजॉय कर रहे हैं, बस ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा. और इसके बाद हमारे पास महिला सोनू भार्गव जी का गुड इवनिंग भेजा इन्होंने, चक उमरी झरेखापुर जिला सीतापुर से, और बुंदेली गाने की फरमाइश की है. तो भाई आज के लिए माफी चाहते हैं, आज हमारी लिस्ट में बुंदेली गाने नहीं है, लेकिन अगली बार जरूर लेकर आएंगे, वादा है हमारा आपसे. और आकाश लोधी जी, मलिहाबादी जी लिखते हैं कि सर्वे भवन तो सुखिना, माँ सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने, और यही तो दुआ मांगते हैं ना. और आज वट सावित्री महापर्व है आज, और आज सब परिवारों के लिए, परिवार की सलामती के लिए जो व्रती महिलाएं, उन्होंने पूजा अर्चना की है. तो बस हम सबकी भी यही दुआ है कि सब सुखी रहें, सब सलामत रहें. विनीत कुमार जी, कहाँ से हैं आप? अर्थापुर पोस्ट, रामगढ़ चीनी मिल, जिला सीतापुर से. और रेनबो कैफे प्रोग्राम जकास लग रहा है, शुभरात्रि, गुड इवनिंग. अरे भैने, अरे भैया, रात 12 बजे तक बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है? हम भी मेहनत करते हैं, तो आप लोग की भी नींद थोड़ी सी खराब करना जरूरी है ना. कोई बात नहीं, देर तक सो लीजिएगा, कल संडे है. विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, संडीला हरदोई से, सांडी जनपद हरदोई से. मैम, आज FM पता नहीं क्यों रेडियो पर सुनाई नहीं दे रहा है. कोई बात नहीं, मोबाइल पर 100.7 गूगल पर टाइप कीजिए और झट से हमारे साथ जुड़ जाइए. बिल्कुल क्लियर आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, ठीक है? चलिए, बढ़िया वाला गाना आप तक पहुंचा रहे हैं. गाना सुनिएगा, बताइएगा कैसा लगा.

हाँ तो भैया नाजुक कमर है, अगर तो थोड़ा संभाल के नाचिए कूदिएगा, ऐसा ना हो कहीं लचक जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे ना, फिर दवाई लगाइएगा, फिर दर्द निवारक दवा के भरोसे चलना पड़ेगा। वैसे रोशनी रावत जी क्या लिख रही हैं, इन्होंने नमस्ते भेजा है, कल से इंतजार कर रहे थे आपका आपचार प्रोग्राम, अच्छा लगा आज की सारी जो प्लेलिस्ट है वो बहुत अच्छी है, गर्दा उड़ा रहे दल गर्दा वर्दा नहीं तहलका मचा दिया ये अच्छा है। और आगे ये लिखती कि 12:02 तक सुनेंगे, वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, हम जय हिंद बोलेंगे तब आप भी सोइएगा ठीक है अपना रेडियो बंद करके। और रोशनी हमें चंडीगढ़ में सुन रही है, ग्राम व पोस्ट बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव की रहने वाली हैं। सदा शिव जी हमें सुन रहे हैं ग्राम सलीमपुर पोस्ट मुंडेरी जिला सीतापुर से मेल कर रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ की है इन्होंने, थैंक यू सो मच, रोज सुनते हैं लेकिन मेल नहीं कर पाते, कोई बात नहीं आज आपका मेल आया हमें अच्छा लगा, और एफएम पर जब गाना बजता है तो पैर अपने आप थिरक जाते हैं, क्या बात है, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है ना। अर्पित शर्मा जी हमें लिख रहे हैं, हेलो गुड इवनिंग, आफ्टर अ वेरी हॉट डे योर कूलिंग प्रोग्राम इज वेरी एंटरटेनिंग एंड रोमांटिक, इट रिफ्रेश अस फुल्ली। वैसे ये मेल हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान से आप हमें मेल कर रहे हैं, क्या बात है, बस ऐसे ही सुनते रहिए। तालिब अंसारी जी आपका मेल शामिल हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल अमित यादव जी ने भी हमें लिखा है, रात सुबह का इंतजार नहीं करती खुशबू, मौसम का इंतजार नहीं करती, जो भी मिले उसका आनंद लिया करो क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती, और कुछ आरजे आरजे नहीं दिल का सुकून होते हैं, जैसे कि अंजू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत तारीफें आपने लिखकर भेज दी हैं। और प्रोग्राम में मेरी नाम वाली फीलिंग ए ए मतलब आ रही है, एकदम रॉयल अंदाज में प्रोग्राम है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। कृष्णकांत जी कैसे हैं, इन्होंने लिखा है, जब भी आप इस प्रोग्राम को होस्ट करती हैं तो गाने जबरदस्त बजते हैं, साथ साथ चटपटी गपशप का जो तड़का आप बीच बीच में पेश करती हैं वो लाजवाब लगता है, ऐसे ही स्वस्थ बेहतरीन मनोरंजन करती रही, हम सभी श्रोताओं का भरपूर प्यार और स्नेह आपको सदैव मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार आपका कृष्णकांत जी। कैसरगंज बहराइच से आपने हमें मेल किया है। और नेक्स्ट मेल है हमारे पास इंद्रपाल मिश्रा जी का, और इन्होंने कहां से मेल किया, अमृता महोली सीतापुर से, इंद्रपाल मिश्रा, नरबीर, आशा, अवनीश, विनीश, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और सारे ग्रामीण श्रोता मिलकर सुन रहे हैं, इन्होंने सबकी तरफ से धन्यवाद बोला है, इन्होंने दोबारा मेल करके भी धन्यवाद बोला। कोमल तिवारी जी भी कैसरगंज बहराइच से हैं, और वेरी नाइस सॉन्ग सिलेक्शन, आप बहुत दिनों बाद शाम को प्रोग्राम में आई हैं कोमल तिवारी कैसरगंज बहराइच जी, हाँ शनिवार सुबह मिलते हैं ना, और वैसे अब अगले शनिवार को सुबह मिलेंगे, और शाम के प्रोग्राम में आने को हम भी दिल से बेताब थे, और इसीलिए देखिए आ गए आपके पास है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी, बहुत दिनों बाद इस प्रोग्राम में और रात के प्रोग्राम में हम आए। विनीत कुमार जी आपका मेल हम पढ़ चुके हैं, थैंक यू सो मच, पहले भी आपका मेल शामिल कर चुके हैं, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ से आपने हमें मेल किया है। पिंकी बारी जी का भी मेल आ गया है, चेहरे पर सादगी बातों में प्यार है, अंजू जी का अंदाज सबसे खास और शानदार है, क्या बात है, जो एक बार सुन ले उनकी मीठी आवाज उसके दिल में बस जाता है, उनका एहसास है शब्दों में मिठास, चेहरे पर नूर है, आज अंजू शुक्ला जी का अंदाज बड़ा मशहूर है, जहां भी जाए खुशियां बिखेर देती हैं, उनकी बातें दिल को सुकून देती हैं, और अंजू शुक्ला जी जब गाने सुनाती हैं रेडियो की महफिल में जान ले आती हैं, उनकी आवाज में ऐसा प्यारा सा नूर है, हर गीत सुनना जैसे दिल का सुरूर है, वी लव यू। ओहो सच में मेरा दिल मतलब बाग बाग हो चुका है, अमीनाबाद से हमें पिंकी इतना सारा प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। आकाश लोधी मलिहाबादी जी ओके, आपने भी गाने की फरमाइश लिखी लेकिन ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हमारे साथ बने रहिए। वकील अहमद जी ने भी प्रोग्राम की तारीफ लिखी है, और आपके साथ आपने मसूरी अहमद मसूरी जी हैं, वकील अहमद मसूरी, कटका हतूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, सबके नाम लिखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। कृषि आकाश का भी मेल आया है, गुड इवनिंग, आपको भी प्रोग्राम आज अच्छा लग रहा है, मलिहाबाद से आप हमें सुन रहे हैं। राजेश कुमार जी कहते हैं, जब हम उनके घर गए कहने दिल से लगा, दिल से दिल लगा लो, उनकी माँ ने खोला दरवाजा, हम घबरा कर बोले आंटी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवा लो। जी राजेश कुमार विद्यार्थी, शोध छात्र एग्रीकल्चर, सुपर फास्ट एक्सप्रेस दीदी को प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्यार। सुल्तान रजा जी वालेकुम सलाम, आपको भी सुल्तान एक

रजा अफजल भाई, मोनिश रजा, सादिक रजा, जीशान भाई, मम्मी पापा, छोटा सा अमान, अय हाय छोटे से अमान को प्यार, क्या कहें, कुछ नहीं है जाता, दर्द मीठा है, सहा नहीं जाता, इस कदर मोहब्बत हो गई हमको एफएम रेनबो से, इसको सुने बिना रहा नहीं जाता है, खाना खा रहे थे इसलिए लेट हो गए मेल करने में, कोई बात नहीं अभी वक्त था, आपका मेल हमें मिल गया है, फिलहाल एक गाना इंतजार कर रहा है, बड़ा ही धमाकेदार गाना है, सुना दूँ, चलिए सुनाती हूँ, पहले थोड़ा सा म्यूजिक है ना, चेक कर लें वही वाला गाना है कि नहीं है। आ गया भैया, आ गया गाना, सुनिए बताइएगा गाना कैसा लगा, है ना, मजेदार गाना है वैसे, एंजॉय कीजिएगा।

फिलहाल हमारा दिल तो आप सब ले जा रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे मेल्स इतनी तारीफों के साथ आप हमें भेजते हैं, थैंक यू सो मच. आपका दिल हम तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे लोगों के मेल्स हम पढ़ नहीं पाएंगे, शॉर्ट में जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं. अमर सिंह यादव जी ने हमें मेल किया है, गुड इवनिंग भेजा, मलिहाबाद से है, प्रोग्राम की तारीफ लिखी है, थैंक यू सो मच. सावित्री देवी जी ने हमें मेल किया है, भरतपुर बरगदी सीतापुर माफ कीजिएगा अर्जुनपुर लखनऊ से हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं. इन्होंने भी लिखा है, पहली बार आपको सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में. अरे बहुत बार आ चुके हैं इस प्रोग्राम में. और गुड इवनिंग आपको भी. अनुराग गुप्ता जी ने अभी अभी एक मेल भेज दिया है, काजल प्रमोद लक्ष्मी गुप्ता अंश गुप्ता यश गुप्ता अनुराग गुप्ता, और इन्होंने लिखा है वैसे छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट मिलना चाहिए इंस्टाग्राम पर. अच्छा, वैसे नाम इन्होंने लिखे हैं कुछ, थैंक यू सो मच. और लिखते हैं कि आज के गाने सच में दिल को छू गए, आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है, थैंक यू. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी. और इसके अलावा अनुज जी का भी मेल है, गुड इवनिंग भेजा है इन्होंने, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से प्रोग्राम की तारीफ की है, थैंक यू. देखिए फरमाइशी गाने तो बजाना बड़ा मुश्किल होता है, इस प्रोग्राम में तो बिल्कुल कतई नहीं शामिल हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट पहले से रेडी रहती है. और रणधीर गुप्ता जी का भी मेल आया है, बबीता रानी सत्यम सुंदरम सबका, सारे लोग हमें सुन रहे हैं कहाँ से, रेडियो सखी अंजू शुक्ला जी को नमस्कार भेजा है इन्होंने, कहाँ से आप सुन रहे हैं, अच्छा ओखला संगम विहार दिल्ली से, बहुत बहुत शुभ संध्या आपको भी, बस ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा. इसके अलावा बबीता राव जी वेरी गुड इवनिंग, 8 बजे से सुन रहे प्रोग्राम, सारे अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम कोई भी हो जलवा तो

भी हंजू मैम का ही रहता है 100.7 के सभी आरजेस टैलेंटेड नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड है. आपका प्रोग्राम होम थिएटर पर रेडियो की फुल आवाज में सुन रहे हैं प्रोग्राम चारों तरफ. ओके थैंक यू. और अवधि अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी तारीफों के लिए. और साथ ही साथ नीलू ने कहा कि पूजा जी ने बताया है कि उनके मोहल्ले में होम थिएटर पर हमारा प्रोग्राम धूम मचा रहा है. थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कहिएगा हमारी तरफ से इनको भी, यानी पूजा जी को भी थैंक यू. और साथ ही साथ इन्होंने भारत सिंह चंदेल और उनकी पूरी फैमिली निष्ठा रौनक कार्तिक खुशबू सिंह चंदेल और टीएस चंदेल जी शिवराजपुर लालपुर डेवन तालाब से हमें सुन रहे हैं, आप सबको भी नमस्कार. प्रिंसी सिंह विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी आपका मेल हम पढ़ चुके हैं. ओके और मनोज कुमार राज जी ने फिर से मेल कर दिया है, रैम्बो कैफे हो गया. अरे भैया रेनबो कैफे, ये रैम्बो वैम्बो ना बनाओ इसको. राजेश कुमार ने कहा है कि आपका मेल मैंने पढ़ दिया राजेश जी. ओके और बड़ा प्यारा मेल आपने लिखा था. गुलफशा सिद्दीकी थैंक यू, आपको भी, आप संडीला से भी सुन रही हैं. सुल्तान रजा जी आपका भी मेल हम शामिल कर चुके हैं. अरे आपने सुना नहीं क्या, देखिए आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके थे. अगर किसी का मेल छूट गया हो तो भाई माफी चाहते हैं. अनुपम कुमार जी का भी मेल आया है, कहते हैं ओके दिस इज सुरभि मैडम, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th. मैडम योर प्रोग्राम इज सो गुड, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स मैडम, एंड यू टू गुड. थैंक यू सो मच डियर. डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आप हमें सुन रही हैं सुरभि, बहुत बहुत शुक्रिया. और एक लास्ट ट्रैक के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ. और भैया ये वाला गाना भी आपको पसंद आएगा आई एम श्योर. उसके बाद वापस आइए तो रजनीगंधा में पुराने गीतों की खूबसूरत महफिल आपका इंतजार कर रही है. अंजू की ओर से प्रोग्राम रेनबो कहकर आज वसंता इतना ही. प्रोग्राम रजनीगंधा में रात 12 बजे तक आपके साथ रहूंगी, तो सुनते जरूर रहिएगा और अपनी हाजिरी लगाते रहिएगा ईमेल्स के माध्यम से.

0: बात चलो
1: नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने वाराणसी में नगर विकास विभाग एवं ऊर्जा विभाग की अलग अलग समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नगर से संबंधित सभी विकास कार्यों जैसे रोड, नाली, दीवारों की पेंटिंग, पार्कों का रखरखाव, पार्कों का सौंदर्यीकरण, इंटरलॉकिंग तथा रोड के किनारे सुंदरीकरण के कार्यों को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए। 15 मई की रात्रि में नगर विकास मंत्री ने नगर आयुक्त के साथ शहर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने शहर की सड़कों, नालियों, सौंदर्यीकरण कार्यों तथा दीवारों की पेंटिंग का जायजा लिया। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य चलते हुए पाए गए।

जहां मंत्री श्री शर्मा ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की जानकारी ली। प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज जुपिटर ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित कृष्ण राधा से रणभूमि तक नाट्य प्रस्तुति का अवलोकन किया। उन्होंने नाट्य प्रस्तुति की सराहना करते हुए निर्माता श्रीमती नीलम मुंतशिर को बधाई दी तथा कहा कि महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। जब समाज में महिलाओं का सम्मान होता है तभी राष्ट्र प्रगति कर सकता है। राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र समाज को जीवन मूल्यों, कर्तव्य निष्ठा एवं धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने नाटक में प्रस्तुत कर्ण प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रसंग महाभारत के अभिमन्यु प्रसंग की भी याद दिलाता है। कर्ण और अर्जुन दोनों भाई थे लेकिन उनके जीवन और कर्मों में कितना बड़ा अंतर था, यह हमें जीवन की दिशा चुनने का संदेश देता है। महोबा में हमीरपुर तिंदवारी सपा सांसद अर्जेंद्र सिंह लोधी ने के प्रधानमंत्री मोदी पर कथित आपत्तिजनक बयान मामले में नया मोड़ आ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सांसद अर्जेंद्र सिंह ने दावा किया है कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और AI तकनीक के जरिए उनके शब्दों से छेड़छाड़ कर इसे बदनाम करने की साजिश रची गई है। जनपद जौनपुर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम है डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढकें। डेंगू दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि जनमानस को डेंगू के कारण, लक्षण, बचाव आदि के प्रति जागरूक किया जाए। इसके वाहक मच्छरों के रोकथाम, प्रभावित लोगों के जांच उपचार में सहयोग की प्रति जन भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके जांच उपचार के प्रति लोगों को संवेदीकृत किया जाए ताकि समय से लोग जांच उपचार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम है रजनीगंधा।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बनके पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी अपनी आरजे अंजु शुक्ला और आप सुन रहे हैं रात की नरम खुशबुओं से महकता हुआ कार्यक्रम रजनीगंधा। वक्त हुआ है 10:05। रजनीगंधा, जहां पुराने गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज की रात थोड़ी खामोश है, थोड़ी गहरी है, क्योंकि आज है अमावस की रात। लेकिन दिलों में है यादों की रोशनी जो बाकी है, और इन यादों, मोहब्बत, तन्हाई, मुस्कुराहट और जिंदगी के खूबसूरत एहसासों के साथ रात 12 बजे तक हम सुनेंगे पुराने दौर के वो नगमे जो वक्त के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। कुछ रातें गुजरती नहीं, दिल में उतर जाती हैं, और आज की रात वैसी ही मालूम होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज रजनीगंधा की ये खूबसूरत महफिल।

पुराने फिल्म में गीतों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है जानते हैं? ये सिर्फ सुने नहीं जाते, जिए जाते हैं। हर धुन के पीछे कोई चेहरा, कोई मौसम, कोई अधूरी बात छिपी होती है। कुछ गाने वक्त नहीं बताते, बस बस वो पुराना वाला दौर वापस ले आते हैं। शैलेंद्र साहब, साहिर लुधियानवी, शकील मदायूनी, आनंद बख्शी जैसे तमाम दिग्गज गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखते थे, वो जिंदगी लिखा करते थे। मोहब्बत कैसी होती है, इंतज़ार क्या होता है, जुदाई चुपचाप कितना दर्द देती है, ये सब उनके अल्फाज बड़ी आसानी से कह जाते थे। और जब उन शब्दों को नौशाद साहब, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रवि साहब जैसे तमाम होनहार संगीतकारों की धुनें मिलती थी ना, तो वो गीत सीधा दिल में उतर जाता था। अमावस की इस रात में जब बाहर सन्नाटा होता है तो दिल के अंदर बहुत शोर होता है। अक्सर कभी किसी की हंसी याद आती है, कभी कोई आखिरी मुलाकात, और कभी वो बातें जो कहनी तो बहुत थी मगर कह नहीं पाए। लफ्ज थक गए थे शायद, तभी तो खामोशियों ने चुपचाप रिश्ता संभाल लिया था।

शकील बदायूनी साहब के लिखे हुए अल्फाज, नौशाद साहब का रूहानी संगीत और मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़। इस गीत को सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत सजदा बन गई हो। कितनी तहजीब थी ना उस दौर की मोहब्बत में, आज की तरह जल्दबाजी नहीं थी। लोग इंतज़ार में भी प्यार ढूंढ लेते थे और यही वजह है कि उस दौर के गीत आज भी जब सुनते हैं ना तो दिल को सुकून देते हैं। क्या गजब की नफासत थी उस दौर में, मोहब्बत को भी अदब से पेश किया जाता था। आज भी जब ये गीत सुनते हैं तो दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आती है। इश्क अगर सच्चा हो तो आवाज भी मानो दुआ सी लगती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा 100.7 FM रेनबो पर, जिसे आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की। वक्त हुआ है 10:21 और मैं हूं आपके साथ आपकी हमनवा अंजू शुक्ला।

हर अमावस के बाद चांद फिर लौटता है और शायद जिंदगी भी ऐसी है। कुछ रातें बहुत अंधेरी होती हैं, मगर वही रातें हमें सिखाती हैं कि छोटी सी रोशनी की कीमत क्या होती है। और उस रोशनी के इंतजार में रात का ये वक्त दिल को बड़ा ईमानदार बना देता है। दिन में जिन एहसासों को हम छुपा लेते हैं, रात उन्हें धीरे धीरे आवाज देने लगती है। पुराने गीत भी शायद इसीलिए रात में ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें दिल की बात होती है। कुछ यादें सोती नहीं, बस सारी रात चुपचाप जागती रहती हैं। दिल की दहलीज पर खड़ी आहिस्ता आहिस्ता दस्तक देती रहती हैं, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हैं। इस एक रात में अपने दिल का हर हाल बयां कर देना चाहती हैं।

किशोरदा को जब सुनते हैं ना तो लगता है जैसे कोई अपना मुस्कुराते हुए दिल की बात कह रहा हो, है ना। वक्त हो रहा है 10:31, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अंजू शुक्ला और आप सुन रहे हैं रात की नरम खुशबुओं से सजा कार्यक्रम रजनीगंधा, जहाँ पुराने गीत सिर्फ सुनाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, जिए जाते हैं। पुराने दौर का संगीत इसलिए आज भी दिलों पर राज करता है क्योंकि इसमें शोर नहीं था, सुकून था, अल्फाज में तहजीब थी, धुनों में मिठास थी और सबसे बड़ी बात उसमें इंसानी जज्बातों की सच्चाई थी।

वैसे आप सब भी अपने रेनबो के साथ पूरी सच्चाई पूरी शिद्दत के साथ जुड़े होते हैं। इस वक्त ईमेल पर मुझे पता चल रहा है कि हमें कौन कौन सुन रहा है। अतुल कुमार यादव जी हमें सुन रहे हैं, कुलदीप मौर्या मितौली लखीमपुर खीरी से, अनुराग गुप्ता सीतापुर से, नीरज कुमार लखीमपुर खीरी से, एमन नवाब भी हमें सुन रही हैं, शैलेश कुमार, नीलू शर्मा, विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब वो गीत जो किशोरदा का एक और अंदाज आप तक पहुंचाएगा। बहुत दिनों बाद इस गाने को सुनवा रही हूँ और सुन रही हूँ साथ।

पुराने गीतों की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि गीतकार सिर्फ शब्द नहीं लिखते थे, वो एहसास लिखा करते थे, और यही पुराने संगीत की खासियत थी। एक हल्की सी शिकायत भी इतनी नफासत के साथ कह दी जाती थी, गा दी जाती थी कि सुनने वाला भी मुस्कुरा दे और थोड़ा थोड़ा भावुक भी हो जाए। इन गीतों में चंचलता है, मासूमियत है, इतना अपनापन है जैसे कोई दोस्त हमारे दिल की बात कह रहा हो।

पुराने गीतों में जो नफासत थी वो सीधे रूह तक उतर जाती है ना, जैसे कोई पुराना खत जिसे बार बार पढ़ने का मन करता है। और शायद इसीलिए रात के इस पहर में ये पुराने गाने ज्यादा अपने लगते हैं। शमा जलती रही रात भर रोशनी के लिए, और परवाना मिटता रहा सिर्फ मोहब्बत के लिए। इश्क की यही रवायत सदियों से चली आई है। कोई जलकर चमकता है तो कोई जलकर फना हो जाता है।

रात में जब शमा जलती है, परवाना उस पर कुर्बान होता है, और अमावस की ये रात हमें सिखाती है कि हर रोशनी हमेशा आसमान में नहीं होती, कुछ उजाले दिलों के अंदर पलते हैं, किसी की दुआ में, किसी की याद में, तो किसी के इंतज़ार में, और ये सब भी तो रोशनी ही है। दिल अगर उम्मीद से भरा हो तो अंधेरा भी रास्ता बन जाता है। और शमा की महफिल में तो हर कोई उजाला चाहता है, मगर सिर्फ एक परवाना ही है जो जलकर खुश होता है। और यहाँ पर तो खुशी अलग ही तरह की है भाई।

शैलेंद्र साहब हों, साहिर लुधियानवी साहब, मजरू सुल्तानपुरी, शकील मदायनी या आनंद बख्शी, इन तमाम लोगों ने, इन तमाम दिग्गज गीतकारों ने मोहब्बत को सिर्फ इश्क तक सीमित नहीं रखा। जिंदगी, तन्हाई, इंतजार, दर्द, उम्मीद, विरह, हर रंग को गीतों में पिरोया है। और फिर उन अल्फाजों को जब नौशाद साहब, एस डी बर्मन, मदन मोहन रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ऐसे तमाम होनहार संगीतकारों की धुनें मिलती थी ना, तो गीत सिर्फ गीत नहीं रहता था, एक एहसास बन जाता था। रफ़ी साहब की आवाज़ में दर्द भी दुआ जैसा लगता है, तो किशोर कुमार साहब की आवाज़ में शरारत भी है और तन्हाई भी है। मुकेश साहब की आवाज़ के तो क्या ही कहने। और आशा जी, लता जी जब गाती थी तो ऐसा लगता था कोई दुआ गा रही हूँ। कभी कभी सोचिए कितनी सादगी से ये लोग जिंदगी का फलसफा कह जाते थे, बिना भारी शब्दों के सीधे दिल में उतर जाने वाली बात। और इन्हीं बातों से सजे हैं अगले घंटे प्रस्तुत होने वाले कुछ चुनिंदा गीत। रजनीगंधा में इस घंटे का सफर यहीं तक। मिलते हैं समाचार के उस पार रजनीगंधा का अगला घंटा लेकर। रात 12 बजे तक ये सफर यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात्रि के ठीक 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं का आह्वान किया है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष सहित वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के प्रति समाज में अलग जगाएं। सभी संस्थाओं के शिक्षक और कर्मचारी वर्तमान समय में अति आवश्यक ईंधन संरक्षण और विदेशी मुद्रा व्यय कम करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का अनुसरण करें। ऊर्जा संरक्षण को लेकर विद्यार्थियों के जरिए उनके परिवारों और समूचे समाज को जागरूक करने का व्यापक अभियान शुरू करें। सबके मन राष्ट्र प्रथम का भाव होगा तो हर चुनौती का आसानी से सामना किया जा सकेगा। जनपद मैनपुरी के डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने तहसील करहल में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों का स्वयं संज्ञान लेकर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी केवल अधीनस्थों की रिपोर्ट पर निर्भर न रहें, बल्कि मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी अधिकारी आईजीआरएस पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग करें और कोई भी गुणवत्ताहीन आख्या पोर्टल पर अपलोड न होने पाए। उन्होंने भूमि विवादों के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे हटाए जाएं तथा दोबारा कब्जा करने वालों को भूमि माफिया चिन्हित कर एफआईआर दर्ज की जाए। आज जनपद सुल्तानपुर के तहसील सदर सभागार में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चारू निगम एवं मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह ने भी आम जन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपरक निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी विभागीय अधिकारी प्रातः 10:14 से अपराह्न 2:14 तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आम जन की सेवा है। वाराणसी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्वर्णकार संघ व ज्वेलरी कारोबारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, साइबर अपराध और टैक्स संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। व्यापारियों को अफवाहों से दूर रहकर केवल अधिकृत सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी गई। ज्वेलरी संस्थानों में सीसीटीवी, डिजिटल लॉकर और कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन पर जोर देते हुए चोरी के सामान की

खरीद फरोख्त से बचने की चेतावनी दी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन मध्य रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर जारी है प्रोग्राम रजनीगंधा।

दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
3: चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो।
4: आज की रात कुछ अलग है। आज अमावस है, एक ऐसी रात जहां आसमान में चांद नहीं लेकिन दिलों में यादों की रोशनी फिर भी बाकी है। कभी कभी जिंदगी भी अमावस जैसी लगती है ना, सब कुछ पास होकर भी कुछ अधूरा सा, कुछ खामोश सा। और ऐसे ही लम्हों में पुराने गीत मरहम बनकर दिल के पास बैठ जाते हैं। रात खामोश सही, दिल में हलचल तो रहे, चांद गुम है तो क्या, यादों की ये महफिल तो रहे। 11:04 का वक्त, इस घंटे तन्हाई की इस मुलायम चादर में यादों, मोहब्बत और कुछ अलग तरह के इंतजार के साथ पुराने सदाबहार गीत आप तक पहुंचने को बेताब हैं। बने रहिए 100.7 FM रेनबो पर। मैं हूं आरजे अंजू शुक्ला।

कभी कभी जिंदगी भी किसी पुराने गीत जैसी मालूम होती है। कुछ अंतरे अधूरे रह जाते हैं तो कुछ दुने हमेशा साथ रहती हैं। अक्सर जब हम तन्हाई में बैठते हैं, अकेले होते हैं, तो वो धुने आसपास बजती हुई मालूम होती हैं। और कुछ लोग दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते हैं। कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस खामोश हो जाते हैं। और रात का जब ये हिस्सा आता है तो नींद आंखों से दूर होती है और यादें बिल्कुल आपके जहन के पास। खिड़की से आती हवा जैसे पुराने दिनों की खुशबू लेकर आती है। वो कुछ लोग जो हमारी यादों में हैं, वो जाते नहीं जिंदगी से, बस सामने दिखाई देना बंद हो जाते हैं। लेकिन राहत का ये हिस्सा हमसे कहता है कि आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। क्या पता आज सपनों में उनसे मुलाकात हो जाए।

हम सफ़र तो वो हैं जो सपने भी साथ देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने का सफ़र भी साथ तय करते हैं। हम सफ़र वो नहीं जो बस साथ चल दे, हम सफ़र वो है जो रास्ता मुश्किल होने पर भी आपका हाथ ना छोड़े। पुराने दौर की मोहब्बत में एक बहुत ही खूबसूरत बात हुआ करती थी। लोग हमेशा कहने से पहले रिश्ते निभाना सीखते थे। वादे सिर्फ किए नहीं जाते थे, निभाए भी जाते थे, और इसीलिए उस दौर के गीतों में इतनी सच्चाई महसूस होती है। तेरे साथ चलूं तो सफर आसान सा लगता है, तेरे बिना ये दिल बड़ा वीरान सा लगता है। तू साथ रहे तो हर मौसम खूबसूरत है, तू साथ रहे तो हर मौसम खूबसूरत है, वरना खुशी का हर रंग अनजान सा लगता है। कुछ ऐसा ही एहसास छिपा है इस अगले गीत में, और आप भी तो हमारे सच्चे हमसफर हैं। आशा पांडे जी अमरावती महाराष्ट्र से, रॉयल अमित यादव बाराबंकी से, नीलू शर्मा उन्नाव से, सुल्तान रजा बरेली से, अशोक कुमार जी लखीमपुर खीरी से, रोशनी रावत चंडीगढ़ से, मनोज कुमार लखीमपुर खीरी से, विकास उन्नाव से, उमा शंकर शर्मा जी, बहुत सारे हमारे श्रोता जो लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ और इस सफ़र में हमारा साथ निभा रहे हैं। उमा शंकर जी हिसार हरियाणा से, वारिस अली खान साहब, रोशनी रावत, आप सबके मेल दिख रहे हैं और आपने जो कुछ भी लिखकर भेजा है वो हम तक पहुंच रहा है। फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप तक लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में।

ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये उस मोहब्बत की आवाज़ है जो दूरियों से टूटती नहीं बल्कि इंतज़ार में और गहरी होती जाती है। सफ़र में साथ चलने वाले हमसफ़र कभी कभी हालातों की वजह से बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो दूरियां सिर्फ रास्तों में आती हैं, दिलों में नहीं। क्योंकि सच्ची मोहब्बत वक्त से हारती नहीं, वो इंतज़ार करना जानती है। मुलाकातें कम हो जाएं तो मोहब्बत कम नहीं होती, जो दिल में बस जाए वो दूर रहकर भी दूर नहीं होता।

पुराने दौर की मोहब्बत में सब्र था, लोग इंतजार में भी प्यार ढूंढ लेते थे। एक खत आने में महीनों लग जाते थे, लेकिन भरोसा भरोसा फिर भी बना रहता था। और शायद इसी वजह से वो रिश्ते उम्र भर महका करते थे। तेरा इंतजार भी इबादत सा लगता है, हर गुजरता लम्हा तेरी आहट सा लगता है। यकीन है एक दिन फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद में दिल अब तक धड़कता है। कभी कभी जिंदगी लोगों को अलग रास्तों पर ले जाती है, लेकिन अगर दुआओं में सच्चाई होना तो बिछड़े हुए लोग भी वापस आते हैं और एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं।

इंतज़ार अगर सच्चा हो तो एक वक्त के बाद शिकायतें भी दुआ बन जाती हैं। फिर इंसान भीड़ में नहीं, बस एक चेहरे में पूरी दुनिया ढूंढने लग जाता है। और जब मोहब्बत इतनी गहरी हो जाए तो दूर रहकर भी किसी की निगाहों का साया साथ चलता रहता है। कुछ लोग दिल में यूं उतर जाते हैं कि हर रास्ते पर उनका एहसास साथ चलता है। ना आवाज़ आती है, ना आहट होती है, फिर भी लगता है कोई चुपचाप पास चल रहा है, अपनी मौजूदगी महसूस करा रहा है। कम शब्दों में बहुत सारी गहरी बात कह रहा है

मोहब्बत का सफर हमेशा आसान नहीं होता। प्यार, इंतजार, उम्मीद और फिर उसी इंतजार में एक दिन मिलने की चाह, इन सब के बीच कई बार कुछ ऐसी गलतफहमियां भी आ जाती हैं जो दो करीब दिलों के बीच एक खामोश दीवार खड़ी कर देती हैं। कभी कोई बात अधूरी रह जाती है तो कभी हालात बदल जाते हैं और कभी वक्त इतना सख्त हो जाता है कि मोहब्बत होते हुए भी लोग दूर हो जाते हैं। तब दिल यही सोचने लगता है कि क्या सचमुच प्यार बदल गया या फिर वफा कम पड़ गई। कभी कभी रिश्ता टूटता नहीं, बस वो थक

बेवफाई का इल्ज़ाम शायद मोहब्बत का सबसे भारी दर्द होता है, क्योंकि तकलीफ सिर्फ बिछड़ने की नहीं होती, तकलीफ इस बात की होती कि जिस दिल ने सबसे ज़्यादा चाहा उसी पर वफा ना करने का इल्ज़ाम लग गया। कई बार लोग हालातों से हार जाते हैं, लेकिन दुनिया उसे बेवफाई समझ लेती है। कोई ये नहीं देखता कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस वो मजबूर हो जाते हैं। इल्ज़ाम बेवफाई भी कितना अजीब होता है, दिल टूट कर भी उसी इंसान को सफाई देना चाहता है और उसी इंसान को ताउम्र चाहता है।

0: वाला हूँ।
1: कुछ यादें उम्र के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती हैं। वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन दिल कभी कभी अचानक जब पीछे मुड़कर देखता है ना, तो सोचता है कितने खूबसूरत थे वो दिन, जब छोटी छोटी बातों में खुशी मिल जाती थी, जब किसी की एक मुस्कान पर पूरा दिन रोशन कर देते थे। कुछ लम्हे कभी पुराने नहीं होते, वो बस याद बनकर दिल में हमेशा महकते रहते हैं। आप हमारे साथ बने हैं लगातार, अच्छा लग रहा है। 11:41 का वक्त हो गया है। 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा और मैं हूं अंजू शुक्ला। महेंद्र दीपन जी की यादें, बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, जिक्र किया है उन्होंने। रोशनी रावत, बबीता राव, आप सब सुन रहे हैं, हमें साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अतुल कुमार यादव जी भी हमारे साथ हैं, जग रहे हैं। विकास अभी भी जाग रहे हैं, सफीपुर उन्नाव से सुन रहे हैं। और सुल्तान रजा कहते हैं आप अकेली नहीं हैं, हम भी सुन रहे हैं। आशा पांडे जी, रात, रेडियो और ये गाना बस दिल को कहीं और ही ले गया। अमरावती महाराष्ट्र से आप, और तेज बहादुर यादव गुरुग्राम हरियाणा से हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। वारिस अली खान साहब भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वक्त की रेत कुछ इस तरह हाथों से निकल गई। वक्त

रेत कुछ इस तरह हाथों से निकल गई, जिंदगी समझते, जिंदगी समझते तब तक जिंदगी निकल गई।

वो रास्ते, वो गलियां, वो मोड़ जहां कभी साथ चला गया हूं, सब अपने से लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए दिल बहुत धीरे से धड़कता है, जैसे हर हवा में कोई पुरानी आहट अब भी बाकी है। कुछ शहर सिर्फ शहर नहीं होते, वहां किसी की यादें बसी होती हैं। और सिर्फ शहर ही क्यों, गांव में, गलियों में, चौबारों पर, घर के किसी कोने में। मोहब्बत का असर यही तो होता है, किसी एक इंसान की वजह से पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। और उसी इंसान की मोहब्बत में अगर बीच में कोई रुसवाई आए, कोई बेवफाई आए, तो फिर सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है।

अब आवस की रातें अक्सर डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कितनी बातें हैं जो हम कभी किसी से कह ही नहीं पाए, कितने लोग हैं जो दूर होकर भी हर रात पास महसूस होते हैं। कुछ रिश्ते दीपक की तरह होते हैं, रोशनी कम हो फिर भी वो अंधेरों में रास्ता दिखाते रहते हैं। हर रात रात जितनी गहरी होती जाती है यादें उतनी साफ सुनाई देने लगती हैं। दिन का शोर थम जाता है और दिल धीरे धीरे अपनी बात कहने लगता है। तन्हाइयों का भी अपना एक सुकून होता है ना, ये हर किसी को नहीं सिर्फ महसूस करने वालों को मिलती हैं। क्योंकि हर रात की किस्मत में सवेरा लिखा है, अंधेरा फिर चाहे जितना गहरा क्यों ना हो।

रात तो हर रोज आती है। स्तुति वाजपेयी, पिंकी बारी, वारिस अली खान, सुल्तान, विकास, अतुल जी, आशा जी, तेज बहादुर यादव, महेंद्र दीपन जी, बहुत सारे ऐसे नाम, बबिता, रोशनी, आप सब हमारे साथ बने रहे, हमारा साथ दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। 11:55 का वक्त हो गया है। अब अगर नींद आपको अपनी आगोश में लेने को तैयार है, पलकें बोझिल हो रही हैं, तो बस आंखें बंद कीजिए और खो जाइए सपनों की सुंदर दुनिया में। उम्मीद से भरा एक सवेरा कल फिर आपके जीवन को रोशन करेगा। आज अमावस की इस शांत, गहरी और एहसासों से भरी रात में आपके साथ ये सफ़र बेहद खूबसूरत रहा। मुझे बहुत आनंद आया। पुराने गीतों की खुशबू, यादों की नरमी और दिल की खामोश बातें उम्मीद है कि आपके दिल तक पहुंची होंगी, ज़रूर। मैं हूं आपकी अपनी आरजे अंजू शुक्ला। अब इजाज़त चाहूंगी, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल में एक छोटा सा दीपक हमेशा जलता रहता है, और उस दीपक को जलाए रखिएगा, उसकी लौ ज़रूर आपकी ज़िंदगी को रोशन करेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अंजू की ओर से आज बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

नमस्कार, 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान आज गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित अपने आवास पर प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना का डिजिटल ऑनलाइन प्रपत्र भरा। इस अवसर पर उन्होंने 21 मई तक चलने वाली डिजिटल स्वगणना की प्रक्रिया में सभी नागरिकों से हिस्सेदारी की अपील की। मुख्यमंत्री ने स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी सभी जानकारियों के कॉलम को पूर्ण किया। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा विकास की भावना के साथ सटीक आंकड़े जुटाकर प्रदेश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। जनपद शाहजहांपुर में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के और नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी के साथ सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कार्य में देरी के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनपद वाराणसी में मई 2026 के दौरान आए आंधी तूफान, बेमौसम बारिश और अत्यधिक तापमान जैसी मौसमी घटनाओं से प्रभावित किसानों के लिए उद्यान विभाग ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों की फसलें जैसे आम, अमरूद, केला, ड्रैगन फ्रूट आदि प्रतिकूल मौसम के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, वे अपनी फसल क्षति के फोटो, भूलेख, अभिलेख और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ 3 कार्य दिवस के भीतर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय वाराणसी में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि समय से आवेदन करने पर विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:18 और सूर्यास्त 6:47 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की FM रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। मध्यरात्रि के 12:02